बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: आइए आप भी भागीदार बनिए, वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 से जुड़िए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
2: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
3: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
2: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
3: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
4: मुरादाबाद
2: से संपर्क कीजिए।
3: नियम और शर्तें लागू।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
1: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
0: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
1: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
0: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
2: मुरादाबाद
0: से संपर्क कीजिए।
1: नियम और शर्तें लागू।
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर। 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

तो छत

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
2: NAC द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
1: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
2: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
1: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
2: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
0: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।

0: फिर से आप सभी का स्वागत है। आपने ट्यून इन किया है FM मुरादाबाद 89.6। आप सुन रहे हैं आपके शहर का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन। आनंद के साथ हैं आप और इस वक्त हमारे स्टूडियो में एक खास स्पेशल गेस्ट को हमने इनवाइट किया है। श्रोताओं, देखिए आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में ना बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती है हमारे साथ जिनको हम अक्सर अवॉइड कर देते हैं, स्पेशली छोटे छोटे दर्द जिन्हें हम कहते हैं कुछ नहीं है, हाथ में हल्का से दर्द तो है, कुछ नहीं है, मैं एक मेडिकल से गोली लाऊंगा, खाऊंगा, मेरे को आराम मिल जाएगा। पर वही चीज कभी कभी ना जब हम खा रहे होते हैं तो हमें लगता है हाँ आसान है, तो बहुत इजी है, बट जब आगे चल के वो चीज बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है फिर हमें समझ में आता है काश यार उस टाइम पे हम उस एक्सपर्ट को दिखा देते, उस डॉक्टर से मिल लेते तो शायद हमारे लिए ये इतनी बड़ी समस्या नहीं बनती। और आज बहुत सारी ऐसी समस्या है जैसे मैंने आते जिक्र किया शुरुआत की दर्द के साथ। तो आज हमने एक बहुत ही कमाल की स्पेशलिस्ट को अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है। श्री साई हॉस्पिटल के बारे में ऑफकोर्स आप जानते हैं, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट हमारे रेडियो पे आप सुनते हैं। डॉक्टर निदा नसीम मैम को ही इन्वाइट किया जाए, बहुत सारी जो दर्दों के हमने चिट्ठा बना रखे ना जिससे भी बात करते हैं। तो मैम का वार्म वेलकम करते हैं। मैम हाउ आर यू, कैसे हैं आप? जोरदार तालियों से वेलकम टू FM मुरादाबाद।
1: थैंक यू सो मच। मैं हूं डॉक्टर निदा नसीम, इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट फ्रॉम श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद।
0: थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। पहले ही बताइए आपको रेडियो पे आके कैसा लग रहा है?
1: बहुत अमेजिंग,
0: मतलब वो हॉस्पिटैलिटी से निकल के दूसरी हॉस्पिटैलिटी में आप आज आ गए हो,
1: डिफरेंट एरा।
0: या तो मतलब थोड़ा सा कूल लग रहा है, ये कुछ नया सा है।
1: या एग्जैक्टली, इट्स वेरी एक्साइटिंग, a new thing, something new thing is.
0: थैंक यू सो मच मैम। तो देखिए हम जो डॉक्टर्स होते हैं ना उनसे भी हैपनिंग बातें करवाई लेते हैं, ये यही तो खासियत होती है एक रेडियो जॉकी की। सो मेरे स्टूडियो में मैं मैम के साथ अकेला नहीं हूँ, दो लोग और भी हैं, उनके लिए भी मैं तालियां बजा देता हूँ। उनकी आवाज आप भले ही नहीं सुनोगे अलग है। सो सी आगे बढ़ते हैं मैम। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल जो मेरे को लगता है कि मुझे पर्सनली आपसे पूछना है, ये दर्द विशेषज्ञ डॉक्टर कौन होते हैं पहले तो मुझे बताओ मैम,
1: क्योंकि बहुत लोगों का सवाल है ये कौन हो गए, कहाँ से आ गए ये। अभी एक्चुअली देखिए दर्द दो तीन तरह का दर्द होता है, ठीक है। एक होता है अक्यूट पेन, एक होता है सब अक्यूट पेन, और फिर आता है हमारा क्रॉनिक पेन। अक्यूट पेन तो वो हो गया जो कि चार हफ्ते या चार हफ्तों से कम का दर्द हुआ, जो कि कोई जैसे चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, ऑपरेशन के होने वाले बाद वाला जो दर्द होता है,
0: हाँ जी
1: वो अक्यूट में आता है।
0: ओके।
1: फिर हम आते हैं सब अक्यूट पेन में, जो कि चार हफ्ते से लेकर हमारा छह हफ्ते या आठ हफ्ते तक रहता है, ठीक है। फिर हमारा आता है क्रॉनिक पेन। अब दर्द और ज्यादा बढ़ता बढ़ता हमारा क्रॉनिक में आ गया है, जो कि 12 हफ्ते तीन महीने से ज्यादा होने वाले दर्द को क्रॉनिक पेन बोलते हैं। अब इसमें ऑपरेशन वाले पेशेंट भी आते हैं कि भाई ऑपरेशन तो हो गया है लेकिन दर्द हमारा जा नहीं रहा है ना, जैसे गठिया हो गया कि घुटना हमने बदलवा लिया है बट उसका दर्द अभी भी चल ही रहा है, दर्द हमारा नहीं जा रहा है, तो वो दर्द हो गया। या फिर कोई पहले से कोई पेन हो गया, माइग्रेन हो गया, कैंसर से जुड़ा दर्द हो गया, कमर का, एड़ियों में होने वाला दर्द, कूल्हे का दर्द। तो जैसा कि मैंने बताया क्रॉनिक पेन जो तीन महीने से होने वाले बाद होने वाला जो दर्द होता है वो क्रॉनिक में आता है।
0: ओके।
1: और उसी के हम विशेषज्ञ हैं, उसके लिए हम दवाइयां देते हैं और कुछ और भी फर्दर मैनेजमेंट होते हैं जो कि इंटरवेंशनल मैनेजमेंट में आते हैं, वो हम करते हैं।
0: ओके, बहुत ही बढ़िया। तो गाइस ये जो दर्दों का खेल है ना आज आपको पता लगेगा होता क्या है। छोटे छोटे दर्द होते हैं, वैसे इतने सारे भी दर्द होते हैं मुझे पता नहीं था मैम, आज मेरे को पता लग गया कि इतने सारे दर्द भी होते हैं, दो तीन ही सुने थे मैंने बट ये थोड़े बड़े लिस्ट आ गई है। एग्जैक्टली। सो दोस्तों अब आपको ना सारे दर्दों के बारे में तो पता चल गया है, अब जो एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो होता है मैम कमर दर्द। कमर दर्द एक ऐसा दर्द होता है जो किसी को भी हो सकता है, तो कमर दर्द के जो मुख्य कारण होते हैं, उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, अगर आप थोड़ा विस्तार से आप बताएं।
1: देखिए कमर दर्द के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं हमारा पोस्चर, हम कैसे बैठे हैं, कितनी देर बैठे हैं, हमारा प्रोफेशन क्या है, ज्यादा जैसे फॉर एग्जाम्पल आईटी प्रोफेशनल हो गए जिनको डेस्कटॉप पे बैठे रहना पड़ता है, तो उनमें क्या होता है गर्दन में होने वाला दर्द और कमर दर्द, क्योंकि दबाव पूरे शरीर का जो वेट है हमारा उस पार्ट में जाता है, तो उन लोगों में ज्यादा होते हैं, ठीक। फिर आता है हमारा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, हमारा डाइट प्रॉपर नहीं है, मोस्टली फीमेल्स में होता है बिकॉज ऑफ साइक्लिकल लॉसेस एंड ऑल, तो क्या होता है कि एनीमिया होना क्रॉनिक, और विटामिन डी डेफिशिएंसी होना जो कि बोन्स को चाहिए, ठीक है, B12 डेफिशिएंसी होना, तो इन सारी अब आते हैं। इसके बाद होता है हमारा मांसपेशियों में होने वाला दर्द, ठीक है, हमारी मसल्स वीक हो जाती हैं, फिर आता है हमारी बोन, बोन में होने वाले जो दर्द होते हैं, जैसे कि फैसेट ज्वाइंट आर्थ्रोपैथी, जो बोन में भी बहुत सारे हमारे ज्वाइंट्स होते हैं, तो उन ज्वाइंट का क्या बोलते हैं, अर्थराइट बोलते हैं, फैसेट आर्थ्रोपैथी हो गया, डिस्क का पीछे की तरफ जाना जिसकी वजह से नसों में दबाव पड़ना, तो वो जो दर्द है वो कमर के साथ साथ पाँव में भी जाएगा। जो आपने सुना होगा शैटिका होती है, पाँव में झंझनाहट होना, कमर से पाँव में जाना, तो वो सारे हमारे कमर के दर्द के कारण होते हैं। चीज मैं ऐड करना चाहूंगी इसमें, आई जस्ट फॉरगॉट, कुछ पेशेंट क्या होते हैं ना, ओबेज होते हैं, मॉर्बिड ओबेसिटी, वजन जरूरत से ज्यादा बढ़ना, तो वो भी एक कारण इसमें आता है कि हमारा जो स्पाइन है वो मैक्सिमम लोडिंग के साथ में गुजर रहा है, तो जब ओवरलोडिंग हो जाती है वजन ज्यादा बढ़ने की वजह से, तो उसकी वजह से ये दर्द और ज्यादा बढ़ने लगते हैं, क्योंकि दबाव जो है डिस्क पे, हमारे स्पाइन पे, मांसपेशियों पे, वो और बढ़ जाता है। दूसरा आता है कि पेशेंट कोई और बीमारियों से जूझ रहा है, जैसे कि हमारा डायबिटीज हो गया, थायराइड हो गया, ये सारी बीमारियां क्या करती हैं कि हमारी मांसपेशियों की जो नर्व की जो क्षमता होती है दर्द बर्दाश्त करने की, वो कम हो जाती है। थोड़ा सा भी दर्द उसको बहुत ज्यादा लगता है।
0: ओके मैम, ये तो हमने बात के लिए सिम्टम्स की, अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की।
1: ट्रीटमेंट देखिए, ट्रीटमेंट डिपेंड करता है पहले पेशेंट कितने टाइम से पेशेंट को दर्द है, और दर्द किस तरह का दर्द है। नसों का दर्द में क्या होता है, पेशेंट बोलेगा कि मुझे भाई झंझनाहट हो रही है, आग सी निकल रही है, मेरा घुटना या पांव पूरा सुन हो गया है, तो ट्रीटमेंट पहले तो हमारा हम मेडिसिन देते हैं, न्यूरोपैथिक, नोसिसेप्टिव, दोनों की अलग अलग दवाइयां होती हैं, वो देने के बाद में हम आते हैं जांचें कराते हैं, MRI में प्रॉपर पता चलेगा कि भाई कौन सा डिस्क है, कौन से लेवल पे कितना कंप्रेशन है, कितना डायमीटर है, कैनाल डायमीटर, उसके बाद में हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं इंटरवेंशन की। अब इंटरवेंशन क्या होता है, लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि भाई कमर में सुई लगाएंगे डॉक्टर साहब तो उससे तो और भी ज्यादा दर्द बढ़ जाएगा। ये बहुत ही बोलते हैं ना कि मिथ है, ये इट्स अ मिथ कि स्पाइनल देने की वजह से दर्द हमारा और ज्यादा बढ़ गया, आपने भी सुना होगा, है ना, ये बहुत ही बड़ा मिथ है। मैं आज ये क्लियर करना चाहती हूँ सब लोगों के साथ में। तो क्या होता है कि जो हम इंजेक्शन देते हैं, अच्छा वो जो दर्द होता था वो बहुत पहले सुइयां दूसरी आती थी, जो हम कमर में टीका लगाते थे वो सुइयां दूसरी थी, आज के जमाने में मॉडर्न एनेस्थीसिया में हम बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ नीडल यूज करते हैं जिसकी वजह से दर्द नहीं होता। वो जो दर्द है वो मांसपेशियों का क्या बोलते हैं ना, वीकनेस की वजह से वो दर्द होता है।
0: तो मतलब इसमें डॉक्टर की और इंजेक्शन की कोई गलती नहीं है,
1: बिल्कुल भी नहीं।

0: गाइडेंस में हम उस पर्टिकुलर नर्व को टारगेट करते हैं, जिस भी लेवल का कंप्रेशन होगा हम उस नर्व को टारगेट करते हैं, तो ये इसका इलाज है।
1: मैम आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया इसको, थैंक यू वेरी मच। अच्छा मैम, आजकल कुछ दर्द के रीजन ये स्ट्रेस और ये तनाव भी है क्या?
0: बिल्कुल,
1: मतलब मेरे को पर्सनली ऐसा आ रहा है, कई बार मेरे को भी जब कभी कभी प्रेशर आ जाता है ना काम का, तो मेरे को दर्द सर में होने लगता है।
0: बिल्कुल।
1: तो क्या मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि दिस इज नॉर्मली होगा, तो क्या एक्चुअली इसका रीजन ये भी हो सकता है?
0: बिल्कुल हो सकता है। देखिए, जो भी दर्द 3 महीने से ज्यादा लॉन्ग प्रोग्रेस करता है तो उसमें क्या होता है कि दर्द तो है
1: जी।
0: अब क्या है कि मैंने कोई गर्म प्लेट छुई,
1: हाँ।
0: वो सर मेरे दिमाग पे आ, मुझे पता चला कि भाई दर्द हो रहा है, मैंने अपना हाथ पीछे कर लिया। ठीक है, मैं एग्जांपल बहुत छोटा सा मैं ऐसे दे रही हूँ आपको। क्या अब क्रॉनिक पेन में होता है, बार बार वो सिग्नल ब्रेन पे जा रहे हैं। ब्रेन में क्या हो रहा है, ट्रिगर हो रहा है बार बार ना, इम्पल्स जनरेट हो रही है। अब 3 महीने से कोई भी दर्द ज्यादा प्रोग्रेस करता है तो वो जो ट्रिगर जो फैक्टर्स हैं वो बाकी जो ब्रेन में लिम्बिक सिस्टम होता है जो हमारा इमोशंस को कंट्रोल करता है,
1: जी जी,
0: ठीक है, इमोशंस को कंट्रोल करता है, उस पे जाके वो ट्रिगर करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, दर्द हमें और भी ज्यादा पता चलता है, पेशेंट को लगेगा कि थकान हो रही है बहुत ज्यादा, बेड से उठने की इच्छा नहीं हो रही है, मन नहीं कर रहा है, मेमोरी लॉस होना, हमने कुछ बोला सामने वाला भूल जाएगा, बार बार चीजों का भूलना, क्या बोलते हैं ना, जिस काम में मन लगता था, सपोज आपका काम है ये रेडियो जॉकी पे काम करना आपको अच्छा लगता है, तो आपका लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा वट एवर द वर्क यू लाइक।
1: ओके,
0: ऐसे।
1: ओके मैम, सो मतलब मुझे ना ऐसा भी लगता है कई बार कि आजकल का लाइफस्टाइल भी इसका कारण बनता जा रहा है क्या?
0: डेफिनेटली।
1: जैसे आजकल तो खैर सोशल मीडिया की तो बात ही नहीं करेंगे, ये तो है ही सबसे बड़ा सरदर्द, बट फिर भी इसके अलावा आजकल लोगों का रूटीन भी बहुत चेंज हो गया है, तो क्या इसकी वजह से भी कुछ चीजें, कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो दर्द को कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं? मैम
0: बिल्कुल, क्या होता है कि हमारा जो लाइफस्टाइल आजकल बहुत ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो गया है, सोशल मीडिया, AI आ गया है, लोगों का जो ध्यान है, इवन नॉट अडल्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट जो बच्चे हैं, जो जेनजी हैं, जेन अल्फा है,
1: बीटा है,
0: अब बहुत सारी जनरेशन आ गई है, तो क्या होता है कि इनका ध्यान सोशल मीडिया पे ज्यादा हो गया है। मैं अपने घरों में भी देखती हूँ बच्चों क्या है कि फोन देखते हैं, तो पोस्चर उनका खराब हो रहा है। पुराने जमाने में क्या होता था कि बच्चे फिजिकल एक्टिविटी करते थे, आजकल वो फिजिकल एक्टिविटी हो नहीं रही है। लोग जो हैं, जो यंग जनरेशन के हैं, वो गैजेट्स में इन्वॉल्व हैं, कुछ लोग अपने वर्क रिलेटेड उनको गैजेट में इन्वॉल्व होना पड़ रहा है, दे हैव टू गिव प्रोलॉन्ग सिटिंग, तो ये वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा ना इम्बैलेंस चल रहा है बेसिकली, तो जिसकी वजह से कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर नहीं पा रहा है, तो हम अपने आप को, अपने शरीर को टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं।
1: Exactly.
0: तो क्रॉनिक पेन का सबसे पहला इलाज मैं ये बोलूंगी कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, आप किस टाइम पे क्या खा रहे हो वो आपने ध्यान में रखना है, किस समय पर खा रहे हो ये इम्पोर्टेंट है।
1: बिल्कुल मैम,
0: और टाइम ऑफ स्लीप, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होना, तो हर एक चीज फैक्टर ये बहुत बड़ा रीजन है क्रॉनिक पेन का, और इलाज भी इसका यही है। जो भी पेशेंट मेरी ओपीडी में आते, सबसे पहले मैं उनको ये बोलती हूँ, डाइट मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज करो, यही सब मैं बोलती हूँ।
1: मतलब लाइक मुझे भी ऐसा लगता है जैसे आजकल की जनरेशन, अब ऑलरेडी हम पूरा दिन काम कर रहे होते हैं, उसके बाद हम रात को भी अपना मोबाइल देखना चाहते हैं थोड़ी देर के लिए, हमारी आंखें जो
0: बीच में भी हम देखते हैं,
1: फिर भी हम देख रहे होते हैं, करेक्ट, तो कहीं ना कहीं आंखों पे उसका जब इम्पैक्ट पड़ता है तो वो सरदर्द भी बनता है।
0: बिल्कुल, माइग्रेन, हेडेक होना,
1: करेक्ट। तो मैं वहीं पर आ रहा था कि माइग्रेन और सामान्य सरदर्द में क्या फर्क होता है? मैम
0: देखिए, माइग्रेन और सामान्य सरदर्द, माइग्रेन क्या होगा, एपिसोड पे डिपेंड करता है, ठीक है, कितने एपिसोड दिन में आ रहे हैं और हफ्तों में कितने एपिसोड्स आ रहे हैं, दवाइयाँ आप कौन सी खा रहे हो, ठीक है, और प्लस आपका लाइफस्टाइल हो गया, कितनी बार आपको हो रहा है अगर, और फिर आते हैं आपके साइंस जो हम पूछते हैं पेशेंट को कि भाई अगर माइग्रेन है आपको, तो माइग्रेन में पेशेंट को फड़फड़ाता हुआ, कुछ हेडेक होता है, पल्सेटाइल जिसे हम बोलते हैं, फोटोफोबिया होगा, ग्लेयर होगा, किसी को नॉइस से होता है कि भाई तेज साउंड से भी माइग्रेन। सामान्य सरदर्द में ये सारे सिम्टम्स लक्षण नहीं होंगे, माइग्रेन में ये फड़कता हुआ दर्द होना, लाइट से, साउंड से, किसी भी तेज चीख से, इनफैक्ट एसी की हवा से भी कभी कभी होता है ट्रिगरिंग फैक्टर। और ये तो हम माइग्रेन की बात कर रहे हैं, माइग्रेन के अलावा भी एटिपिकल फेशियल पेन्स होते हैं, जैसे कि ऑसिपिटल न्यूरलजिया, पेशेंट बोलेगा कि भाई सीधी मेरे पीछे के हिस्से में दर्द है, जिसे बोलते हैं ऑसिपिट, पीछे से वो आंखों की तरफ दबाव पड़ता है, तो हमारी पीछे की नस होती है ऑसिपिटल, ऑसिपिटल नर्व, तो उसका नस का घूम जाना मांसपेशियों में, या उसकी सराउंडिंग जो मांसपेशियां हैं का घूम जाना, तो उसकी वजह से ये दर्द होता है। तो दर्द के बहुत सारे कारण हैं,

0: बिल्कुल, डॉक्टर निदा नसीम हमारे साथ मौजूद है श्री साई हॉस्पिटल से, और आज हम उनसे बहुत सारे दर्द के ऊपर बात कर रहे हैं। निदा मैम, कई बार ऐसा होता है, डॉक्टर साहब आपने भी देखा होगा, यू नो यूजुअली आज भी ग्रामीण इलाकों में भी ऐसा होता है, हम भी कई बार करते हैं कि छोटा सा दर्द हुआ हम अवॉइड कर देते हैं, और ये दर्द लगातार भी हो रहा होता है, कहीं बहुत टाइम से चल रहा होता है, बट हम बहुत टाइम से इसे अवॉइड करते हैं कि हमने पेन किलर लिया, मेडिकल पे गए, हमने एक पेन किलर लिया, रिलीफ मिला, देन हमने अवॉइड कर दिया, फिर दो तीन दिन बाद रिपीट हो रहा है। तो अगर ये केस में लोग ये चीज रिपीटेड कर रहे हैं तो क्या ये करना चाहिए या फिर
1: बिल्कुल नहीं करना चाहिए? ये आपका बहुत अच्छा सवाल आपने किया और ये बहुत कॉमन सवाल है हमारे आसपास के एरिया में, ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि भाई दर्द की दवाई खा ली और भाई अपना दर्द चला गया,
0: काम पे
1: फिर अपना काम पे चले गए, बिकॉज दे आर टू मच ऑक्यूपाइड इन देयर वर्क। फीमेल्स को मैं बोलूंगी वो अपने घरों में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गई, उनके पास अपने लिए टाइम निकालने का वक्त ही नहीं है।
0: करेक्ट।
1: तो क्या होता है कि दर्द की दवाइयाँ कब खानी है वो इम्पोर्टेंट है। कभी कभार अगर आपके एपिसोड्स हो रहे हैं, आप दवाइयाँ खा रहे हो, ठीक हो जा रहे, दैट इज प्योरली ओके। कभी कभी क्या होता है, हम ज्यादा ओवर वर्क कर लेते हैं, कुछ भारी सामान उठा लिया, कुछ एक्स्ट्रा वर्कआउट कर लिया, तो जिसकी वजह से हमारा दर्द होता है वो ठीक हो जाता है।
0: ठीक है।
1: अब क्या होता है कि एपिसोड्स हमारे बढ़ रहे हैं, हम अगर पूरे हफ्ते अगर हम पेन किलर खा रहे हैं और जिसकी वजह से दर्द हमारा जा ही नहीं रहा है, या फिर 10-20% हमें रिलीफ मिल रहा है लेकिन हम पेन किलर के सहारे कैसे जैसे हम अपना टाइम काट रहे हैं, वो चीज बिल्कुल सही नहीं है।
0: तो मतलब ऐसे
1: बिकॉज क्या होता है कि क्रॉनिक ये जो दवाइयाँ होती हैं, इन दवाइयों से हमारा जो इम्पैक्ट है, मैक्सिमम इम्पैक्ट, जैसे हम जीरो डॉल सुना होगा आप लोगों ने भी ना कि खा लेते हैं, अब इनका असर क्या होता है कि किडनी पे पड़ता है। लंबे समय तक अगर हम ये दवाई खाएंगे तो किडनी पे और बल्कि हमारा जो गट है उस पे हमारा असर पड़ता है, तो वो चीज बहुत गलत है।
0: डॉक्टर निदा नसीम जी हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, ढेर सारी बातचीत चल रही है उनसे आज, दर्द को लेके हम काफी सारे डिस्कशंस कर रहे हैं। देखिए जो दर्द होता है ना, जितना आसान आपको लगता है कि एक गोली खा के हम उसको एकदम से जो है छू मंतर करा देंगे, उतना आसान होता नहीं है। वही दर्द का बड़ी जो है गंभीर रूप ले सकता है और बड़ी समस्या बन सकता है, ये आप और मैं सोच भी नहीं सकते, और उन्हीं पर आज डिस्कस करने के लिए डॉक्टर निदा नसीम जी हमारे साथ मौजूद है श्री साई हॉस्पिटल से। मैम एक बार फिर से आपका स्वागत है, और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन, कि जैसे कई बार दर्द होता है तो हम लोग ना होम रेमेडी में भी बिलीव करते हैं, घरेलू उपाय जैसे सिकाई कर लो सर के दर्द की, मम्मी ने कहा हल्दी वाला दूध पी ले कुछ नहीं होगा, ये पिएगा तो ठीक हो जाएगा, या फिर मतलब हल्की सी स्ट्रेचिंग कर ले, बाहर घूम के आ जा थोड़ा सा, इन सब से भी सर दर्द ठीक हो जाएगा, तो क्या ये चीजें वर्क करती है जेन्युइनली?
1: देखिए डिपेंड करता है अगेन ड्यूरेशन कितना है।
0: ऑलराइट,
1: ठीक है।
0: अच्छा,
1: जो अगर मैंने बोला कि हड्डियों का होने वाला दर्द है जो कि डैमेज बहुत ज्यादा हो गया है, तो उसमें इसका कोई भी इलाज नहीं है।
0: ओके,
1: मतलब जो इनिशियल स्टेज होती है जो कि मायोफेशियल पेन, जो कि मसल्स वाला जो मांसपेशियों का जो दर्द होता है, वो हम इससे ट्रीट कर सकते हैं कि लोकल सिकाई कर लिया, थोड़ा सा बाम लगा लिया, या ऑयल जो ऑर्थो का तेल आता है, तेल लगा लिया, वो सब हम कर सकते हैं, उसमें ट्रांजिएंट पीरियड के लिए रिलीफ मिलेगा।
0: ओके,
1: लेकिन पेन अगर क्रॉनिक हो गया है, वही मैं बोल रही हूँ बार बार, क्रॉनिक पेन 3 महीने से ज्यादा होने वाला दर्द में बहुत ही ट्रांजिएंट रिलीफ मिलेगा, उसमें बस सिकाई कर सकते हैं।
0: ओके,
1: हॉट फर्मेंटेशन,
0: मतलब कोई और फिर उसका कोई अल्टरनेट तरीका है ही नहीं ना?
1: बिल्कुल नहीं है।
0: करेक्ट, वही तो दोस्तों, अगली बार अगर आपको कुछ ऐसा महसूस हो तो ये सब चीजें फॉलो करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर मिलें, बहुत जरूरी है, क्योंकि मैम मुझे लगता है कि सही डॉक्टर से जब तक हम सही तरीके से कंसल्टेशन नहीं लेंगे, सही इन्फॉर्मेशन नहीं लेंगे, तब तक हम उस चीज को जड़ से खत्म नहीं कर पाएंगे।
1: बिल्कुल,
0: है ना? तो अगर आप चाहते हैं कि उस चीज से आपको जड़ से उसकी जो है भाई साहब वो टाटा बाय बाय हो जाए,
1: पेन में पेन को ठीक नहीं करते हम, बीमारी को ढूंढते हैं।
0: एग्जैक्टली,
1: तो पेन का मैनेजमेंट का जो तरीका है वो होलिस्टिक अप्रोच है, माइंड बॉडी एंड सोल, और ट्रीटमेंट भी माइंड बॉडी एंड सोल पे ही काम करता है।
0: ओके, मैम कई बार बहुत सारे लोगों को ना ऐसा होता है कि सर में ना पूरे सर में दर्द नहीं होता, उनके आधे सर में दर्द होता है।
1: बिल्कुल,
0: बहुत बड़ी ऐसे आपके पास केसेस आते होंगे, तो उसका क्या रीजन है, मतलब पूरे सर में दर्द ना होके आधे सर में दर्द होता है, सर के आधे हिस्से में दर्द कई बार होने लगता है?
1: देखिए सर के आधे हिस्से में होने वाला दर्द राइट साइडेड या लेफ्ट साइडेड, तो डिपेंड करता है कि कौन से एरिया में कब दर्द हो रहा है। कुछ होता है कि हम स्ट्रेस रिलेटेड जो होता है कि हम जब काम करते हैं उस टाइम पे दर्द हो रहा है, बाकी सब ठीक है।
0: ठीक है,
1: ठीक है,
0: ठीक है।
1: और जो मांसपेशियों का जो दर्द होता है वो भी हो सकता है कि हम जैसे होता है कि राइट साइड ऑफ द बॉडी हम कन्वर्ट लेके जैसे सोते हैं, तो हो सकता है कि हम राइट साइड में सो रहे हैं, हमारा पॉस्चर ठीक नहीं है। तो ये सारी चीजें रूल आउट करने के बाद अगर पेन की सीवियरिटी बहुत ज्यादा है, जैसे हमारा मैंने बोला कि ऑसिपिटल न्यूरेल्जिया जो कि पीछे से होता है और आगे की तरफ आता है,
0: ओके,
1: और ऐसा लगता है मरीज बोलेगा कि मेरे को आंख ऐसे लग रहा है कि निकल जाएगी, इतना ज्यादा पीछे से आगे की तरफ दर्द हो रहा है। ऑसिपिटल न्यूरेल्जिया वाला जो दर्द होता है, एक पेशेंट अभी आई थी मेरे पास यहाँ पे, तो ये सारे कारण होते हैं। तो उसका इलाज डिपेंड करता है कि ड्यूरेशन कितना है, कौन से टाइप का वो है, पेन किस प्रकार का पेन है। जैसे कि पेन तो क्या है कि पेशेंट बोलेगा कि बर्निंग सेंसेशन या फिर चुभने वाला दर्द है, चुभने के साथ में उसको लगता है करंट भी दौड़ रहा है। तो ये सारे सिम्टम्स वगैरह हम पूरे अच्छे से असेस करते हैं, उसके बाद ही ट्रीटमेंट उसका स्टार्ट।
0: दर्द का मानसिक तनाव से भी कुछ लेना देना है?
1: बिल्कुल है,
0: थोड़ा सा इस विषय में भी हम सोच रहे हैं आपसे बात कर लें।
1: बिल्कुल है, मानसिक तनाव देखिए, स्ट्रेस मैंने बताया ना कि स्ट्रेस जब 3 महीने से ज्यादा दर्द अगर बढ़ेगा तो वो ट्रिगरिंग फैक्टर्स जो है वो हमारे लिम्बिक जो हमारा इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है उस पे इम्पैक्ट करता है।
0: ठीक है,
1: तो जब पेन जो है क्रॉनिक हो जाएगा वो उस पे इम्पैक्ट करेगा, तो उसकी वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स और ये सारे लक्षण जो है मरीज में ज्यादा आएंगे उस टाइम पे।
0: ठीक है मैम, हमने बहुत सारे दर्द के ऊपर डिस्कशन की आपसे और आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया सारे दर्द के बारे में, सारी चीजें बहुत अच्छे से बताई। लेकिन अब जो मेन पॉइंट है वो ये कि अभी जो लोग इस चीज से जूझ रहे हैं कहीं ना कहीं, अब उनको डॉक्टर से कब मिलना है एक्चुअली, क्या उनको तुरंत जाके डॉक्टर से कंसल्ट करना है, कौन सी सिचुएशन में डॉक्टर से मिलना चाहिए?
1: देखिए, आपका कोई भी दर्द जो कि दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है या फिर आपको ये लग रहा है कि मेरा जो है पूरा दिन आप पूरा महीना आपका दवाइयों से ही खा के आपका गुजर रहा है, आई एम ऑन रेगुलर मेडिकेशन,
0: ठीक है
1: मैं छोड़ ही नहीं पा रही हूँ, तो आपने डॉक्टर को संपर्क करना है। या फिर आपका कोई भी दर्द जो कि 3 महीने से ज्यादा आपका प्रोग्रेस कर रहा है,
0: ठीक है,
1: उसमें आपने अपने पेन फिजिशियन को कंसल्ट करना है।
0: ठीक है, ओके मैम बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, थैंक यू वेरी मच। तमाम लोग आपको सुन रहे हैं, उनको आप क्या अपनी तरफ से सलाह देना चाहेंगी, क्या आप एडवाइस देना चाहेंगी जो लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं रेडियो पर?
1: देखिए, मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप दर्द को बर्दाश्त ना करें, नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें
0: जी।
1: अगर 3 महीने से ज्यादा दर्द, क्योंकि दर्द एक ऐसा चीज है कि हर किसी के साथ होता है, हर घर में एक दर्द का मरीज जरूर होगा,
0: बिल्कुल
1: ऐसा मैं शायद एक्सपेक्ट कर रही हूँ,
0: बिल्कुल
1: ऐसा ही है
0: मैम। एक्चुअली ऐसा इसलिए भी क्योंकि आजकल मोबाइल की वजह से भी
1: क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल, हमारा जो बोलते ना कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है या फिर वर्क लाइफ बैलेंस इतना ज्यादा इम्बैलेंस हो गया है कि हम अपने आप को टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं।
0: बिल्कुल मैम सही बोला, इनफैक्ट मैम मुझे ऐसा लगता है कि आजकल दर्द का रीजन मोबाइल तो सबसे ज्यादा हो गया, क्योंकि ऐसे अगर हम ऑफिस में बैठे हैं तो हमारा जो गर्दन है वो पूरा मोबाइल में घुसा होता है, तो कहने की उसकी वजह से भी हमारे
1: सर्वाइकल पेन, नेक पेन, मायोफेशियल पेन, ये वाला जो है ये हमारा जो आईटी, मैंने बोला आईटी प्रोफेशनल जो बैठे रहने का काम ज्यादा है, डेस्कटॉप पे काम ज्यादा कर रहे हैं, या फिर फोन में लो बच्चे
0: जी,
1: बच्चों को भी आजकल ये प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है।
0: बिल्कुल,
1: क्या होता है कि हमारा जो गर्दन है वो एकदम आगे की तरफ झुक जाता है जब हमारा
0: फोन
1: अनइंटेंशनल हो जाता है, हमें नहीं पता होता, या महिलाओं में जो किचन में काम कर रही है वो शॉपिंग किचन में काम करते हुए गर्दन नीचे झुक जाती है, तो जो सर का भार है वो तो आगे की तरफ हैंग हो रहा है,
0: बिल्कुल,
1: लेकिन जो उसका वेट स्ट्रेस है वो हमारे लोअर नेक पे जा रहा है,
0: ओके,
1: जिसकी वजह से मांसपेशियों में दर्द होना, सर्वाइकल की प्रॉब्लम बढ़ जाना, ये सब इसके कारण हैं।
0: ओके, सो दोस्तों आपको तमाम, उम्मीद करता हूँ तमाम जानकारियां आपको मिली होंगी इस इंटरव्यू के माध्यम से। थैंक यू सो मच डॉक्टर निदा मैम, आपने तमाम सारी इन्फॉर्मेशन दी, हमारे स्टेशन पे आप आए, आपने इतना सारा टाइम निकाला उसके लिए थैंक यू सो मच मैम। कुछ और जाते जाते जो आपको लगता है कि आप हमारे रेडियो लिसनर्स को बता सकती हैं जो आपको सुन रहे हैं इस वक्त, कोई एक मैसेज जो आप चाहती हैं कि सबको देना चाहिए? बिल्कुल, स्पेशली वो मेडिकल से जाके हम एकदम पेन किलर ले लेते हैं,
1: बिल्कुल दर्द की दवाइयां आप लोग, मैं यही बोलना चाहूंगी कि मेडिकल स्टोर से लेना बंद करें।
0: इवन आजकल लोग ये भी कर रहे हैं कि गूगल पे जाके, चैट जीपीटी पे जाके भी कर रहे हैं लोग,
1: AI
0: इसका इस्तेमाल भी करते हैं सर दर्द को भगाने के लिए, तो उसके लिए भी आप प्लीज कुछ इंक्लूड करिएगा।
1: नहीं, सर दर्द देखिए, गूगल आपको आधी नॉलेज देता है, ठीक है, जो डॉक्टर इतनी पढ़ाई करके, फेलोशिप की ट्रेनिंग करके, एक्सपर्टाइज होके अब वो आया है, अगर आपको वो बोल रहा है कि भाई दर्द की जो दवाइयां हैं वो लंबे समय तक नहीं खानी चाहिए, कभी कभार आप खा लो, लंबे समय तक खाएंगे तो उसका किडनी पे, आपकी आंतों पे आपका असर पड़ेगा,
0: बिल्कुल,
1: जो आपको अभी नहीं, मे बी लेटर ऑन आप जब 40-50 साल की जब उम्र हो जाएगी तब पता चलेगा, वो अभी हमें पता नहीं चल रहा है। तो वो खाना बिल्कुल बंद करें, अपने लाइफस्टाइल पे काम करें, किस टाइम पे आप क्या खा रहे हो दैट इज इम्पोर्टेंट। अपनी 8 घंटे की प्रॉपर नींद लें, और अगर आप 3 महीने से या फिर ज्यादा दर्द से जूझ रहे हैं तो अपने नियरेस्ट पेन फिजिशियन को जल्द से जल्द संपर्क करें, मैं यही बोलूँ।
0: थैंक यू सो मच मैम, इतना अच्छा आपने जो है सारी इन्फॉर्मेशन दी और इतने अच्छे से आपने बताया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और हम आशा करते हैं कि थैंक यू मैम, हम आशा करते हैं आप अगली बार भी जरूर जल्द आएंगे, फिर कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम, बहुत अच्छा लगा। और गाइज आप कहीं मत जाइए, ऐसी अच्छी अच्छी जानकारियों के लिए, अच्छी अच्छी हेल्थ की बातों के लिए प्लीज ट्यून रखिए आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। अभी के लिए मैं लेता हूँ डॉक्टर निदा मैम से इजाजत। मैम थैंक यू सो मच, और गाइज आपसे भी इजाजत, फिर जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।

0: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
1: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में
1: चाहे फार्मेसी हो मैनेजमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी लॉ एग्रीकल्चर साइंस एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077
3: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद कॉल 7055011681
4: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट
5: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है
4: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद मोबाइल नंबर 7055070552

स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल, मुरादाबाद, 7983153386।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
4: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
5: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
4: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
6: हेलो दोस्तों, आज हमारे बीच में खास मेहमान विदिशा सिंह, जो एक काउंसलर, पीयर सपोर्टर एवं पॉजिटिव साइकोलॉजी कोच हैं, जो बच्चों के साथ उनके माता पिता और महिलाओं के इमोशनल वेलबींग, सेल्फ ग्रोथ और सेल्फ लव के क्षेत्र में निरंतर कार्यरत हैं। दोस्तों उनका मानना है कि सशक्त मन ही सशक्त जीवन की नींव होता है। माइंडफुलनेस और मोटिवेशन के माध्यम से वह बच्चों को आत्म जागरूकता, भावनात्मक संतुलन और आत्मविश्वास की दिशा में प्रेरित करती हैं। उनका कार्य केवल काउंसलिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विश्वास, आत्म स्वीकृति और सकारात्मक परिवर्तन की एक सतत यात्रा है। मैं हूं भावना और मेरे साथ है मेरे साथी आशीष। हमारे बीच में स्वागत करते हैं दोनों मिलके विदिशा सिंह जी का। हेलो मैम।
7: हेलो भावना जी।
8: और जैसा हम लोग हमेशा से किसी न किसी विषय पर चर्चा करते हैं, तो आज आपके साथ विशेष चर्चा हम बच्चों को लेकर करना चाहेंगे कि जब हम बच्चों के एग्जाम्स के रूटीन में जा रहे होते हैं तो बच्चों पर बहुत ज्यादा प्रेशर काम कर रहा होता है, और भले ही पेरेंट्स उनको ये समझाएं कि बेटा तुम बहुत मेहनत से पढ़ो, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर बहुत सारे डर घर कर गए होते हैं, क्योंकि उनको अच्छे मार्क्स चाहिए। तो ऐसे में आप उन्हें क्या यहां से कोच करना चाहेंगी और कैसे उनके अंदर की ये एंग्जाइटी, ये डर हम दूर कर पाएंगे मैम?
7: जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं हम बड़े ही उस डर की शुरुआत करते हैं। आम तौर पर कभी भी आपने देखा होगा जब बोर्ड एग्जाम्स या नॉर्मल एग्जाम्स की शुरुआत होती है, तो हम हमेशा बच्चों को सिर्फ एग्जाम्स आ रहे हैं नहीं बोलते, एक तरह से एक एनवायरमेंट सेटअप कर देते हैं जिसमें कि हम बोलते हैं एग्जाम फीवर, एग्जाम स्ट्रेस,
8: फोबिया।
7: Exactly. तो कहीं ना कहीं हमने ऑलरेडी बच्चों को ये बता दिया कि ये जो एग्जाम है ये आपको स्ट्रेस देगा ही देगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर शुरुआत से हम थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान दें कि एग्जाम्स हैं, साल भर आपने जो पढ़ा है वो बस एक तरह से आपका एक टेस्ट लेने की उसमें कोशिश है कि आपने कितना सीखा, कैसे सीखा और उसको आप कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे अपनी लाइफ में।
8: फटाफट उठो, पढ़ाई करो, रात में जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी जाग जाना क्योंकि तुम्हें पढ़ाई करनी है, सुबह का पढ़ा हुआ बच्चों को याद ज्यादा रहता है, तो उसको हम कैसे क्या ऐसा बताएं कि वो उनके लिए स्ट्रेस बस्टर का काम करें और वो अपने उस फ्लो चार्ट पर काम करें, उस पैटर्न पे काम करें जिससे उनके मार्क्स पर उसका असर दिखाई पड़े।
7: एग्जैक्टली। अब मैं आपको आप ही के इस लाइन से एक चीज बताना चाहूंगी कि ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही एग्जाम्स के बारे में बात आती है तुरंत उसका जो रिलेशन होता है वो मार्क्स कितने स्कोर करोगे, कैसा परफॉर्म करोगे, उसके ऊपर हो जाता है।
8: एग्जैक्टली।
7: सबसे पहले मैं हर माता पिता को ये बोलना चाहूंगी कि जब एग्जाम है तो उसको आप एक पर्टिकुलर चीज लेकर के चलिए। आज टाइम है कि बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम पूरा फोकस दे देते हैं जैसा अभी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करोगे वैसा ही रिजल्ट आएगा।
8: एग्जैक्टली।
7: रिजल्ट एक सेकेंडरी ऑप्शन है जो एग्जाम्स देने के बाद आता है। आई अंडरस्टैंड कि एग्जाम है तो रिजल्ट आएगा ही आएगा, लेकिन अभी जो फोकस है वो सिर्फ इस पे होना चाहिए कि हमारे बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं तो उस वक्त हम क्या ऐसा कुछ करें कि जिससे हमारे बच्चे जो हैं वो थोड़े से शांत मन से रहे, एंग्जाइटी कम रहे उनके अंदर और एक जो डर है वो खत्म हो। और उसके लिए इस वक्त मैं आपको बताऊं कि माता पिता के लिए बहुत ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि आपका बच्चा ऑलरेडी परेशान है, और खास करके ये बात मैं माओं के लिए कहना चाहूंगी कि जितना बच्चा परेशान नहीं होता, शायद उससे 50-60% ज्यादा उनकी माताएं परेशान हो जाती हैं। आप एक ऐसा एनवायरमेंट ऑलरेडी अपने घर में सेटअप कर दे रहे हैं, टीवी नहीं चलेगा, खेलने नहीं जाना है, हम बाहर खाना नहीं खाने जा सकते, किसी की वेडिंग अगर, क्योंकि देखिए मार्च ही सीजन होता है, फरवरी मार्च जिस टाइम पे शादियां भी हो रही होती हैं और इसी टाइम पे एग्जाम्स भी आ रहे होते हैं, ऑल ऑफ अ सडन घर में कर्फ्यू जैसा माहौल बन जाता है। ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं इस बात पे भी हमें थोड़ा सा रुककर सोचने की जरूरत है कि अब आपके बच्चे बड़े हो गए हैं और जितना उनको पढ़ना था उन्होंने ऑलरेडी अपनी पढ़ाई अब पूरे साल भर कर ली है।
8: एग्जैक्टली
7: अब खाली जो उन्होंने पढ़ा हुआ है उस चीज को वो कितना याद कर पा रहे हैं, उस चीज को रिवाइज कितना कर पा रहे हैं, उसके ऊपर पूरा फोकस होना चाहिए।
8: लेकिन नहीं लगता भावना कि एक साइकोलॉजी ऐसी है जो कहीं ना कहीं बच्चों की कंडीशनिंग के साथ में आती है, क्योंकि हम जब बच्चा छोटा है, जैसे अभी आपने कहा कि बड़े बच्चे हैं वो अपनी पढ़ाई कर चुके हैं, उनको भी पता है कि उन्हें क्या तैयार करना है, लेकिन कंडीशनिंग वैसी हुई है ना फ्रॉम द रूट्स, तो वो फ्रॉम द रूट वाली कंडीशनिंग का कहीं ना कहीं एक ओवर शेडो बनता उनके हायर क्लासेस में भी दिखाई पड़ता है, और वो एक फोबिया उनके चारों तरफ क्रिएट करके हम रख देते हैं। और मुझे लगता है कि अगर वो स्वतंत्र होकर दिमाग से काम करें जैसे आपने कहा,
9: और आशीष एक बात और मैं कहूं कि बड़े बच्चे के साथ साथ अब हम लोग छोटे बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर डालने लगे हैं कि आपका बच्चा नर्सरी या फर्स्ट में ही रहता है, फिर भी आप उससे इतनी ज्यादा उम्मीदें करने लगते हैं कि हमारा बच्चा जितने भी क्षेत्र है उसमें बिल्कुल अव्वल ही आए, और वो बच्चा पीठ पर बोझ लादे किताबों का, वो कहां से बढ़ता साइकोलॉजिकल चेंजेस कहां से शुरू हो रहे हैं?
7: बहुत समय लगेगा, और कहीं ना कहीं मेरा जो काम है, मेरी भी कोशिश इसी क्षेत्र में है कि सबसे पहले ये जो कंडीशनिंग हो गई है कि एग्जाम्स चाहे सेकेंड थर्ड फोर्थ क्लास के बच्चे का हो या क्लास टेंथ और ट्वेल्थ के बच्चे का हो, एक कंडीशनिंग के साथ हमने ये मान लिया है कि एग्जाम्स हैं तो हमें वो प्रेशर बनाना ही है, हमें पढ़ाना ही है और बच्चों को अच्छा स्कोर करना ही है। इसमें आपको पता है मैं एक बात बहुत इम्पोर्टेंट ये करना चाहूंगी कि आपको सबसे पहले अपने बच्चे का जो शेड्यूल है ना उसके ऊपर ध्यान देना शुरू करना होगा कि क्या आपका बच्चा जिस चीज को आप पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट ले रहा है
8: जी।
7: क्या वो कभी भी एग्जाम आने से पहले, एक अलग बात हो गई, लेकिन पूरे साल में क्या वो पूरे दिन भर में एक बार भी उन किताबों को, अगर उसको होमवर्क नहीं मिला है उसके अलावा भी क्या वो उन किताबों को खुद कभी उठा करके बैठता है या सिर्फ उन पन्नों को खुद पलट करके ऐसे देखने की कोशिश करता है कि आज मुझे स्कूल में क्या पढ़ाया गया? तो शुरुआत हमें वहां से करनी है
8: जी।
7: ये नहीं कि जब बच्चा क्लास टेंथ में आ गया तो उस चीज को आपने एक फोबिया बना दिया कि अब आपके बोझ आ गए हैं और आपको बिल्कुल करो या मरो की स्थिति को में पहुंच चुके हैं और इसको आपको पूरा करना ही करना है
8: जी।
7: कहीं ना कहीं एक और बात मैं बोलना चाहूंगी दोबारा से कि ये जो मार्क्स है ना ये इतना बच्चों के लिए ट्रॉफी सिंबल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं माता पिता के लिए एक बहुत बड़ा ट्रॉफी सिंबल है कि मेरे बच्चे ने 99% स्कोर किया, 95% स्कोर किया। आप अपने बच्चों से उम्मीदें रखते हैं, हर माँ बाप रखते हैं और ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस उम्मीद को पूरा करने के लिए कब आपने उसका हाथ पकड़कर साथ उसके बैठ करके ये बताया कि कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, कितने भी नंबर आ जाएं,
9: बिल्कुल
7: तुम लाइफ में कुछ बन पाओ नहीं बन पाओ, आगे बढ़ पाओ नहीं बढ़ पाओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं। सिर्फ ये एक लाइन एक बच्चे को जो आत्मविश्वास दे सकती है वो कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं दे सकता, कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं दे सकता, कोई काउंसलर नहीं दे सकता
8: जी।
7: क्योंकि ये एक ऐसा कनेक्शन फॉर्म करता है जहां बच्चे को ये एहसास होता है कि मुझे ये पढ़ाई किसी को दिखाने के लिए नहीं करनी है, लेकिन Correct. एक विश्वास जो मेरे माँ बाप का मेरे ऊपर है, जो माता पिता ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है उसे मुझे आगे बढ़ाना है,
8: उसे प्रूव करना है कहीं। लेकिन नहीं लगता आपको कि ये एक स्टिग्मा हो चुका है सोसाइटी लेवल पर, या जैसे आपने पेरेंट्स का जिक्र किया, तो एक मजबूरी भी है शायद पेरेंट्स की, क्योंकि जब बच्चों का परसेंटाइल देखे जाते हैं, परसेंटेज देखे जाते हैं, पता चला कि साहब किसी का 92% आ रहा है, किसी के 95, अब तो 99% नंबर भी मिलने लगे बच्चों को, हालांकि हमारे टाइम पे ऐसे हम लोगों को तो नहीं मिलते थे, लेकिन जहां 99 के स्कोर तक कुछ बच्चे पहुंच रहे हैं और वहां पर अगर कोई बच्चा 90% भी ला रहा है तो ये माहौल बन जाता है कि अरे इसके तो 90% आए, मतलब इतने कम ये क्या कर पाएगा। ये पेरेंट्स में जो बना हुआ एक डर है, आपको नहीं लगता कि पहले ये निकल जाए?
7: ये जो डर है ना, ये कलेक्टिवली नहीं निकल पाएगा, क्योंकि जब कलेक्टिवली हम इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं तो आप भी ये मानेंगे कि हर अभिभावक जो होता है ना, वो हामी जरूर भरता है कि हाँ आप सही कह रहे हैं, परेशान होने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे ही वो भीड़ से अपने घर के दरवाजे के अंदर पहुंचता है तो उसको अगर आंख बंद करके वो सोचे ना, तो वो कह सच में ये बात बोलता होगा अपने आप से, बात तो सही कह रहे हैं लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया।
10: करेक्ट, वही तो वही चीज। हाँ।
7: यहाँ मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये जो सोच बदलने की बात हो रही है, ये हमें इंडिविजुअल स्तर पे करनी पड़ेगी। हर एक पेरेंट जब इस विश्वास के साथ अपने बच्चे से बात करेगा कि जो कंपटीशन का माहौल हो रहा है, जिस तरह से हमें आगे बढ़ना है, जिस तरह से चीजें चल रही हैं, उसमें एवरेज होकर के भी आप कुछ अलग कर सकते हैं, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको पता लगाना पड़ेगा। देखिए बहुत नॉर्मल सी बात है, हर कोई इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन सकता।
10: राइट।
7: आजकल के टाइम में भी जिस तरह से कंपटीशन है, या बहुत पहले से चला आ रहा है, जितनी सीट्स हैं, जिस हिसाब से बच्चे परफॉर्म करते हैं, जो लोग निकलते हैं, लेकिन मेरा आज भी ये मानना है कि अगर आप 99% नहीं स्कोर कर पा रहे तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि आप कुछ लाइफ में कर नहीं पाएंगे।
10: एग्जैक्टली और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं हमारे आपके बीच में, जहां पर बहुत कम स्कोर करने वाले भी इतिहास रच के चले गए। क्यों भावना?
11: बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी मैम आपने अभी कहा है कि ना कि 99% के बावजूद भी 90% लाने वाले भी लोग बेस्ट हो सकते हैं, लेकिन ये बात जो है माता पिता के मन में ये कैसे बिठाए जाए, क्योंकि वो इतना प्रेशर कर देते हैं कि बच्चा इंटर किया नहीं। आप आज हर माँ बाप ये चाहता है कि उसका बच्चा सरकारी नौकरी में आए ही आए, क्या इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है? ये माता पिता के दिमाग में कैसे लाई जाए ये बात?
7: भावना जी, ये जो मार्क्स है ना, कब तक? जब तक आप ग्रेजुएशन करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड की पोजीशन कब तक?
11: जी,
7: जब तक आप वहां पर पहुंच रहे हैं, ठीक है, उसके बाद जो चेंजेस आपके अंदर आने वाले हैं, कहीं ना कहीं लाइफ में, आज मैं फिर इस बात को बोलूंगी कि वही इंसान सक्सेसफुल हो पाता है जो उस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा होता है कि कोई बात नहीं, ये नहीं हुआ तो क्या, मैं कुछ और जरूर तलाश लूंगा अपने लिए। फेल हो जाना या नंबर कम लाना, वो आपको एक दूसरी अपॉर्चुनिटी भी उसके साथ साथ देते हैं कि ये एक पर्टिकुलर चीज है जहां मैं अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाया, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि अब समय मेरे लिए रुक गया। इनफैक्ट अब तो जिंदगी की शुरुआत हुई है, असली समय तो अब शुरू हुआ है जब वो आपके घर के उन बाउंड्रीज, उन सेफ स्पेस से आगे निकलेगा।
10: एग्जैक्टली,
11: बहुत अच्छी बात आप बोल रही हैं मैम, और ये बात सिर्फ और सिर्फ माता पिता के लिए ही नहीं है, ये बात उन सारे बच्चों के लिए है कि सिर्फ जिंदगी यहीं खत्म नहीं हो जाती। बहुत ही अच्छी बात आप बोल रही, क्योंकि ये बात सिर्फ माता पिता ही नहीं समझा सकते, ये बात आप जैसे काउंसलर भी समझा सकते हैं।
7: एक माता पिता अपने बच्चे का सबसे बड़ा सपोर्टर होता है।
11: जी,
7: विश्वास मानिए, आज भी हर बच्चा जो मेहनत करता है और जब उसके पिताजी घर में आ रहे होते हैं और एक नजर जब उस बच्चे की अपने पिताजी पे, अपने माताजी पे पड़ती है, तो उसे आज भी ये लगता है मुझे दुनिया को नहीं, मुझे इनको प्रूव करना है।
10: Correct.
7: और सिर्फ उस वक्त अगर आप अपने बच्चे के कंधे पे हाथ रख के ये कह देंगे ना कि बेटा मुझे पता है तुमने मेहनत की है, चाहे जितनी भी की हो, जितना पढ़ लिया है उतना ही परफॉर्म कर लो। यकीन मानिए, अगर बच्चे ने अपना सिर्फ 60% कोर्स भी पूरा करा हुआ है ना, और उस 60% को वो अगर 100% लगन से रिवाइज कर लेगा, जो टाइम पीरियड इस वक्त चल रहा है, बिल्कुल एग्जाम्स 2-3 दिन ही बाद हैं, शुरू होने वाले हैं, उसके परफॉर्मेंस में 70-80% इम्प्रूवमेंट आ जाएगा।
10: करेक्ट, और वैसे भी देखिए स्काई इज द लिमिट, आपके पास खुला आसमान है, आप अपने आप को जैसा भी मोल्ड करना चाहते हैं ढाल सकते हैं, बशर्ते आपको एक अच्छा गाइडेंस मिले और शायद रेडियो खीरी 88.4 मेगाहर्ट्ज़ अपने तमाम लिसनर्स को इसी तरीके से गाइडेंस देने की कोशिश कर रहा है। अगर आप पेरेंट्स हैं तो बीइंग अ पेरेंट आप हमारे शो को सुनिए, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो बीइंग अ स्टूडेंट आप हमारे शो को सुनिए, और कुछ ऐसी बातें अपने अंदर बदलने की कोशिश कीजिए जो आपके फ्यूचर को और बेहतर तरीके से डिजाइन कर सकती हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान विदिशा सिंह जी हमारे साथ में हैं, जो काउंसलर हैं और जो आपको ये बता सकती हैं कि एक साइकोलॉजी कौन सी काम कर रही होती है कि बच्चा उस फोबिया को अपने अंदर से निकाल सके। लेकिन विदिशा जी, आपने कामनेस की बात की कि पेरेंट्स जब आए तो एक बच्चों को कंसोल करते हुए कामनेस दें कि बेटा तुम चिंता मत करो। हमें भी ऐसा लगता है कि अगर हम लोग अपने थोड़ा सा जिंदगी में थोड़ा सा पीछे जाकर देखें तो जब हमारे माता पिता हमारे सामने आते तो हमें डर ये लगता था कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, कि डांट पड़ जाए। लेकिन आज बच्चे मुझे लगता है कि उस गलती के बारे में नहीं सोचते कि डांट पड़ेगी अगर कुछ गलत करेंगे, लेकिन हाँ उनके दिमाग में ये जरूर है स्कोर अच्छा नहीं हुआ तो जरूर हमारी खिंचाई होने वाली है, डांट पड़ने वाली है। साइकोलॉजी जो काम कर रही होती है, क्योंकि मैं आपसे थोड़ा सा टेक्निकली जानना चाहूंगा कि ऐसा क्या होता है कि हम बच्चे के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं और अपने ऊपर भी क्रिएट करते हैं, और उसका रिजल्टेंट क्या होता है कि हमने देखा बहुत सारे कोटा में बच्चों को देख लीजिए जो डेथ कर जाते हैं, सुसाइडल अटेम्प्ट्स कर लेते हैं, और छोटे छोटे बच्चों के अंदर आज के डेट में आप देखिए डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं बच्चे, जबकि ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारियों के बाद होता था। तो इसको कैसे कैसे दूर करें, इसके लिए क्या फ्लो चार्ट बना के चलें, क्या क्या हमको सेगमेंटाइज करना होगा अपनी चीजों को?
7: बहुत दुख होता है जब ऐसी कोई खबरें मैं सुनती हूँ, या कभी कभी ऐसा होता है कि ऑलरेडी मैं कुछ ऐसे पेरेंट्स से डील कर रही होती हूँ जिनको मैं समझाने में बहुत असमर्थ रहती हूँ कि इतनी प्रेशर की जरूरत नहीं है।

0: समय में ये होना बहुत आम बात है। जब बच्चा जो फील कर रहा है, जो भी उसके डर, भय या एक तरह से आत्मविश्वास नहीं आ पाना, जो भी उसके इमोशंस हैं, अगर आप उन इमोशंस पे ध्यान दें और उनको एक्सेप्ट करें कि हाँ मेरा बच्चा ऐसा फील कर रहा है। और इनफैक्ट ये बात मैं बच्चों के लिए भी बोलूंगी कि जब आपको ऐसा फील हो कि मुझे घबराहट हो, तो बिल्कुल ही जैसे जिसको हम अपने टर्म्स में एक फेक पॉजिटिविटी भी कहते हैं
1: जी,
0: जिसमें हम कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं फील हो रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब आप कुछ फील कर रहे हैं और आप अगर उसको दबाते जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो इमोशन शूट अप करेगा।
1: एग्जैक्टली।
0: तो जब आपको डर लगे, जब आपको एंग्जाइटी हो, हर बच्चे से भी मैं ये बोलूंगी, उनके माता पिता को भी ये बोलूंगी कि आप एक्सेप्ट करिए कि आपके बच्चे को डर लग रहा है
1: जी।
0: बहुत नॉर्मल है, एंग्जाइटी हो रही है, हार्ट बीट्स बढ़ रही हैं, घबराहट हो रही है। आप अपने बच्चे को बताइए कि हाँ ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसके लिए बच्चों को मैं एक बहुत क्विक टिप देना चाहूंगी
1: प्लीज,
0: कि सबसे पहले तो जब आप अपने रिविजन के टाइम पे या नॉर्मल भी अगर आप पढ़ाई करने बैठते हैं, तो हमने देखा होगा कि बच्चे अमूमन क्या करते हैं कि वो 1.5 से 2 घंटे का पूरा शेड्यूल बना करके रखते हैं, और अगर 2 घंटे से पहले बच्चा कमरे से बाहर आ गया तो उसको घर के सारे लोग ऐसी निगाहों से देखते हैं जैसे कि उसने कितनी बड़ी कोई गलती कर दी। बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन स्पैन सिर्फ 35 मैक्सिमम 40 मिनट्स का होता है। उसके बाद अगर आपका बच्चा बैठ के पढ़ भी रहा है तो यकीन मानिए वो डिस्ट्रैक्टेड है, जिसमें उसको भी नहीं पता होता कि वो ऑलरेडी डिस्ट्रैक्शन में जा चुका है। बच्चों के लिए क्विक टिप ये है कि हर 30 मिनट पे एक अलार्म क्लॉक रखिए और उसमें अलार्म सेट करिए। जैसे ही 30 मिनट्स का टाइम पीरियड चला जाएगा, आपका अलार्म बजेगा, आप उसको बंद करिए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए और क्विकली आप अपने आप को ये एक ऐसे फेज में ला करके रखिए कि आप यहाँ पे रिवाइज कर पाए, देख पाए कि आप जब आपने अलार्म बंद किया तो आप पढ़ रहे थे या आपका माइंड कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्टेड था। ये एक अवेयरनेस क्रिएट करता है।
1: ठीक है।
0: बच्चा जितनी ज्यादा 35 to 40 मिनट्स के बाद जब एक क्विक राउंड लेके आएगा, घर में एक अच्छा माहौल देखेगा, माता पिता भाई बहनों या आजू बाजू थोड़ा सा वो बाहर निकल के आएगा, तो वो दोबारा से रेडी होगा अपने कॉन्सेंट्रेशन स्पैन को शुरू करने के लिए।
1: बहुत ज्यादा बच्चों पर लोग बोलते हैं कड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे जमाने में तो कहा था समझावन लाल होते थे, समझावन लाल छड़ी को बोलते थे हमारे मास्टर्स की, जब तक तुम्हारे ऊपर छड़ी नहीं पड़ेगी तब तक तुमको आएगी नहीं, कहते मुक्का पड़े घमाघम विद्याए झमाझम, ऐसा बोलते थे। तो अब कहीं ना कहीं वो नैरेटिव्स बदल चुके हैं पढ़ाई के,
0: और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा भी है, क्योंकि बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ इसके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी को आप डरा करके बिठा तो सकते हैं लेकिन पढ़ा नहीं सकते।
1: बहुत बढ़िया, करेक्ट।
0: और जैसे आपने मुझे बोला कि ऐसा क्यों माँ बाप को लगता है कि अगर वो डांटेंगे नहीं, अपनी आवाज को ऊंचा करके नहीं बोलेंगे तो उनकी बात सुनी नहीं जाएगी। हमेशा हमें अपनी बात बोलने के टाइम पे अपने टोन पे ध्यान देना चाहिए
1: जी।
0: आवाज ऊंची करके, चिल्ला करके, यकीन मानिए आप उस टाइम बच्चे को, जैसे ही आप चिल्लाना शुरू करते हैं बच्चा का दिमाग ऑलरेडी बंद हो जाता है, उसे सुनाई देना, समझना सब कम हो जाता है। उससे ज्यादा बेहतर ये है कि आप अपनी एक फिक्स्ड टोन रखिए, सीरियसली, बेटा मैंने तुम्हें बता दिया है ये समय पढ़ने का है, जाओ कमरे में बैठो पढ़ो, बात खत्म हो जाती है।
1: ठीक है, जैसे मान लिया अगर वो फिर भी नहीं मान रहा है, देन
0: ये कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के साथ आता है। आप ये एक्सपेक्ट करें कि एग्जाम्स के पहले बिल्कुल आपने अपने बच्चे के ऊपर प्रेशर करना शुरू कर दिया, यही मैं बोलना चाहूंगी कि आपका बच्चा किसी भी क्लास में हो इस वक्त, ये टाइम है एज अ पेरेंट आपको ऑब्जर्व करने का।
1: ठीक है,
0: कि आपका बच्चा जो है वो बोलने पे भी पढ़ने जा रहा है या नहीं जा रहा, ये आपको रियलाइज कराएगा कि अब समय जो है अभी वाला रुक चुका है, फिर मैं बोलूंगी समय खत्म नहीं हुआ है।
1: एग्जैक्टली।
0: ये वाले साल का जो समय था वो पूरा हो चुका है, अगला साल फिर आएगा। शुरुआत से ही आप एक कंसिस्टेंट प्रैक्टिस जो है अपने बच्चे का जो शेड्यूल है उसके ऊपर काम करिए। अमूमन हम लोग क्या करते हैं, हम सबसे बड़ी गलती यहाँ करते हैं कि हम हमेशा बहुत हड़बड़ाहट में रहते हैं। जब समय आ गया तभी करना है,
1: लास्ट आवर,
0: लास्ट स्टार मतलब जब से सेशन शुरू होता

0: रहा है तब से हम पढ़ाई exactly. बच्चों के लिए आपने अप्रैल मई में सारी चीजें फिर से पढ़ाई एक बार शुरू हो जाती है और जुलाई से तो सभी फिर से कंटिन्यू हो जाते हैं, अब तो जून में ही क्लासेस शुरू होने लगी हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए उनका शेड्यूल अभी से बनाना शुरू कर दे, चाहे वो 2 घंटे का हो या 3 घंटे का हो। और कहीं ना कहीं मैम ये भी जरूरी है कि बच्चों के साथ माता पिता को खुद भी बैठ के पढ़ना चाहिए या पढ़ाना चाहिए, क्योंकि मोबाइल का आज जो समय है
1: करेक्ट
0: वो कहीं ना कहीं बच्चों और माता पिता को डिस्ट्रैक्ट कर दे रहा है। आशीष जी आपका क्या कहना है?
2: नहीं बिल्कुल सही कहा, स्क्रीन टाइमिंग बच्चों की बहुत कोऑर्डिनेटेड होनी चाहिए। मुझे लगता है कि रैंडमली अगर बच्चा फोन उठा ले रहा है तो मुझे लगता है उसको एक, जैसे आपने बोला कि फिक्स टाइम होना चाहिए कि बेटा अब उठिए, अब आपका टाइम हो गया, जाइए पढ़िए। इसी तरीके से अगर उनको मोबाइल देखना है या टीवी देखना है, क्योंकि आप रोक तो नहीं सकते उन्हें कि ऐसा मत करो क्योंकि आप उन्हीं के सामने मोबाइल देख रहे हो। तो बच्चों के आजकल अक्सर सवाल भी होते हैं भावना, आप तो कर रहे हो मुझे रोक रहे हो। तो
3: कैटेगरी के लिए देखिए, क्योंकि इसका जवाब हर एज ग्रुप के लिए बहुत डिफरेंट, मतलब जैसे जब हम छोटे बच्चों को केटर करेंगे तो अलग होगा, बड़े बच्चों के लिए इसलिए अलग हो जाता है क्योंकि आजकल काफी ज्यादा स्कूल्स भी डिपेंडेंट हो गए हैं मोबाइल फोन्स पे ही, बहुत सारे मैसेजेस हो गए, जो भी पढ़ना है ये सारी चीजें भी
2: कंटेंट आता है उसपे
3: एग्जैक्टली, और कहीं ना कहीं बच्चों ने भी एक ही आदत बना ली है कि मैं मोबाइल पे पढ़ूंगा, मेरा ये पर्सनली मानना है। वैसे
2: कोविड ने तो ये सिखा दिया है कि पढ़ो
0: मोबाइल से पढ़ो,
3: लेकिन मेरा फिर मैं बोलूंगी मेरा ये एक बहुत पर्सनल ओपिनियन यही है कि जो भी पढ़ाई हो रही है जितनी अच्छी पढ़ाई आप बुक से कर सकते हैं उतनी अच्छी पढ़ाई शॉर्ट नोट्स की तरह आप एक क्विक रिविजन तो YouTube पे कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, आपको बैठ कर ये कंसिस्टेंटली पढ़ना है। जब हम किसी चीज को विजुअली देखते हैं तो देखिए ये तो बहुत डेफिनेट है कि विजुअल देखने में हमें वो चीज दिमाग में बैठ जाती है, लेकिन आपको एग्जाम्स ओरली नहीं देने होते राइट, आपको बड़े बड़े लॉन्ग आंसर्स, शॉर्ट आंसर्स या मैं कहूंगी MCQs भी आपको करने होते हैं। उसके लिए अगर आप प्रॉपर ब्रीफली पढ़ाई नहीं करेंगे, आप पैराग्राफ वाइज रीडिंग्स अगर नहीं करेंगे तो आपको उन आंसर्स को लिखने में परेशानी डेफिनेटली आएगी।
2: करेक्ट,
3: आप अपना जो टाइम शेड्यूल है अगर आप 1 घंटे में 45 मिनट्स बुक्स को दे रहे हैं तो 15 मिनट का टाइम आप मोबाइल फोन से, यूट्यूब से उसके रेफरेंसेस को पढ़ने के लिए दे लीजिए, लेकिन आजकल शायद इससे ऑपोजिट चीजें चल रही हैं कि 45 मिनट्स स्क्रीन टाइम देखते हैं और 15 मिनट आप उसके बाद उन किताब के जो भी आपके टॉपिक्स हैं उन पेजेस को आप आगे पीछे करके देख लेते हैं।
2: मुझे लगता है कि बच्चों को इस तरीके की यूटिलिटी या फैसिलिटीज देनी चाहिए, लेकिन उसको मॉनिटर आप करते रहें, बीइंग अ पेरेंट बहुत जरूरी है।
3: मैं फिर बोलूंगी कि अगर बच्चा इतना बड़ा है कि आपने मोबाइल फोन उसके हाथ में दिया, ऐसा तो होगा नहीं कि बच्चे ने
2: नहीं, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पर्सनल मोबाइल फोन्स नहीं है लेकिन अपने पेरेंट के मोबाइल फोन तो यूज कर रहे हैं,
3: परफेक्ट परफेक्ट।
2: और जैसे आपने यूट्यूब का जिक्र किया या वो यूट्यूब पे हो सकता है कुछ कार्टून्स देख रहे हो या कुछ पोएम सीख रहे हो या कुछ इस तरीके के इंटरेक्टिव सेशंस लर्न कर रहे हो, तो ऐसे में हमें कम से कम ये मॉनिटर तो करना जरूरी है ना कि वो देख क्या रहे हैं।
3: एग्जैक्टली, इसके लिए तो मैं हमेशा बोलूंगी कि वो देख क्या रहे हैं ये हमेशा पेरेंटल कंट्रोल में होना चाहिए, क्योंकि ये भी आपके माध्यम से इस बात को भी मैं अवगत सच में कराना चाहूंगी कि जो बच्चे YouTube किड्स करके आता है उस पर भी आप मेरी बात मानिए, ऐसे ऐसे कंटेंट आते हैं जो शायद बच्चों को नहीं देखने चाहिए, जो उनकी नजरों के, लेकिन वो एनिमेटेड होते हैं, बच्चों को भी नहीं पता होता कई बार, मुझे लगता है कि
2: बिल्कुल सही कह रही हैं।
3: देखिए मैं आपको बहुत छोटे, क्योंकि मैं बहुत सारे स्कूल्स भी विजिट करती हूँ, ऑनलाइन पेरेंटिंग सेशंस भी लेती हूँ, मदर्स से भी स्पेशली मेरी बहुत बात होती है, हमेशा एक सवाल आता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे बच्चे को इसके बारे में पता कहाँ से चला।
2: अगर
3: मतलब यहाँ क्योंकि हम एक नॉर्मल पेरेंटिंग के ऊपर भी बात कर रहे हैं, तो मेरा दोबारा से ये कहना है कि अगर आपको ये पता चल भी गया कि आपके बच्चे को किसी एक पर्टिकुलर ऐसे टॉपिक के बारे में पता चला है जिसको आपको लगता है कि इस एज ग्रुप में उसे नहीं पता
2: जो
3: होना चाहिए
2: लगता है हमें,
3: बिठाइए, डांटने से पहले अपने बच्चे से उसके बारे में बात करिए
2: जी,
3: ये बिल्कुल मत पूछिए कहां से पता लगा, क्योंकि यकीन मानिए अगर वो किसी दोस्त ने बताया होगा तो आपका बच्चा आपको कभी नहीं बताने वाला कि मुझे मेरे दोस्त ने बताया है।
0: जी
2: जी,
3: लेकिन जब आप बोलेंगे कोई बात नहीं मुझे नहीं फर्क पड़ता तुमने ये कहां से सीखा, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास अवेलेबल है वो आधी अधूरी है। मैं कह रही हूँ शायद अगर वो अमूमन बोलचाल की भाषा में गाली के बारे में ही क्यों ना हो, जिस दिन आपने अपने बच्चे को ये परमिशन दे दी कि मैं ही तुम्हारा गूगल हूँ, मैं ही तुम्हारी टीचर हूँ, मैं ही तुम्हारे लिए यहाँ अवेलेबल हूँ।
0: बिल्कुल,
3: आओ उस सवाल को मुझसे पूछो, हम दोनों साथ मिलके देखेंगे कि तुम्हारी एज ग्रुप के हिसाब से कौन सी चीज कितनी चाहिए।
2: जी, सही बात है। वो कहीं ना कहीं बच्चों को भी इस बात के लिए उनका नर्चर करना जरूरी है कि आप भी समझें क्या आपके लिए ठीक है क्या नहीं ठीक है।
3: एग्जैक्टली,
2: ठीक है। जहां तक बात हम लोग कर रहे हैं पेरेंटिंग को लेकर भी कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम्स के खासकर टाइम पर बच्चे बहुत सारी उलझनों में होते हैं अपने नोट्स को लेकर, अपने कंटेंट को लेकर। तो ऐसे में हम चाहेंगे कि थोड़ा आप सेगमेंट वॉइस उनको बता सकें कि आप अपने पढ़ाई के फ्लो चार्ट को कैसे बनाएं, ताकि अपने फोबिया भी दूर करें, और अगर आपको लगता है कि आपके अंदर एक डर है तो उस डर को धीरे धीरे निकालें और अच्छा परफॉर्म करें।
3: सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत जो है एक स्ट्रेस वाले माहौल से मत करिए। जैसे ही आप उठे, बॉक्स ब्रीदिंग करके एक टेक्निक होती है जिसमें आपने ब्रीद लिया, 1 2 3 4 4 सेकेंड्स के लिए ब्रीद को रोकिए और एक्सहेल करिए मुंह से जोर से। वो एक्सहेल भी 1 2 3 4 आपने रोका और दोबारा आपने इनहेल किया, तो एक तरह से साइकिल की तरह फॉर्म हो गया, एक बॉक्स फॉर्म हो गया। आपने इनहेल किया और आपने एक्सहेल किया और उस बीच में आपने 4 सेकेंड का
2: स्टे किया,
3: स्टे रखा। इससे आपकी जो स्ट्रेस है, आप जब सुबह उठे हैं तो आपका जो एनवायरमेंट है वो आपको अपने कंट्रोल में फील होगा।
2: ओके।
3: दूसरा, अपने दिन की शुरुआत एफर्मेशन से कीजिए। दिन भर आप ये सुनते होंगे कि बेकार है, कुछ नहीं कर पाएगा। थोड़ा सा बदलते हैं, दुनिया नहीं बोल रही, लेकिन मेरी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप बहुत जोर से अपने आप को गले लगाइए, हक करिए जैसे कहते हैं। जैसे जब मैं ये बात बोलती हूँ तो हर बच्चा बहुत सरप्राइज्ड होता है, हम अपने आप को कैसे हक कर सकते हैं। करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है। हक करिए और बोलिए आई एम इनफ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है।
2: करेक्ट,
3: मैं आत्मविश्वास से भरी हुई हूँ। सुनने में ये बातें बहुत नॉर्मल रहती हैं, लगती हैं, लेकिन जैसे कहते हैं कि जब आपको क्लास स्कूल में क्यों होता है कि एक टाइम टेबल सेट किया जाता है, तो ये समझ लीजिए कि आप अपने एनर्जी फील्ड का एक टाइम टेबल सेट कर रहे हैं इन दो चीजों को करके।
2: जी।
3: तीसरा पॉइंट आता है, हाइड्रेटेड रहिए। पानी आपको स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन फील कराता है, बहुत लगातार नहीं, लेकिन एक पानी की बोतल अपने पास हमेशा भर के रखिए और दिन भर पढ़ते वक्त भी आप उसको जरूर पीजिए।
2: ठीक है।
3: खाने की बात करें तो प्लीज जंक फूड से इस वक्त बिल्कुल दूर रहिए। मैं मानती हूँ बहुत टेस्टी लगता है बच्चों को, इस वक्त मन भी बहुत करता है, कुछ चटपटा बना दो मम्मा, एग्जाम चल रहे हैं, अच्छा लगेगा, लेकिन फ्रूट्स खाइए, अच्छी चीजें खाइए जो आपको एक्टिव रहने में बहुत मदद करेंगे।
2: एग्जैक्टली।
3: और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आजकल मुझे लगता है 90% बच्चे नहीं करते हैं, प्लीज प्लीज समय पे सोना शुरू कर दीजिए। मैक्सिमम मैं कह रही हूँ 11:00, 11:30 इसको खींच लीजिए, लेकिन टाइम पे सोना शुरू करिए। जब आप अपना टाइम थोड़ा सा सेट करेंगे तो आप ये देखेंगे कि मॉर्निंग में अगर आप 7 बजे उठ रहे हैं, तो अगर आपने 11 बजे सोना शुरू कर दिया तो आप अगर 6 से 6:30 बजे उठना शुरू कर देंगे, वो आपको फोकस करने में बहुत हेल्प करेगा।
2: मतलब एक फिक्स स्लीप साइकिल आपका होना चाहिए,
3: आपको टाइम शेड्यूल कहते हैं ना, बहुत ज्यादा बच्चे जो हैं ये बात बोलते हैं कि अरे 24 घंटे निकल गए पता ही नहीं चला।
2: जी।
3: क्योंकि आपने अपने दिन की शुरुआत बहुत देर से की है।
0: बिल्कुल सही बात है। मेरा एक प्रश्न ये है कि हमारे जो ज्यादातर श्रोता हैं, रेडियो खीरी के सुनने वाले श्रोता, वो ज्यादातर ग्रामीण समुदाय से हैं, और जब हमारी टीम विजिट करने जाती है तो आमतौर पे माता पिता का एक सवाल होता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के करी है का, हम क्यों पढ़ाएं उन्हें। आपको पता है बहुत ज्यादातर बच्चे यहाँ पे एनरोल हैं सरकारी स्कूल में, वहाँ की पढ़ाई की वजह से कि क्या वजह है वो बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं, और जो भेजना भी चाहते हैं तो वो उनका यही प्रश्न रहता है कि आधे समय में बच्चा वापस आ जाता है, उनको पढ़ाई की ऐसे माता पिता के लिए एक ऐसा संदेश कुछ दीजिए कि उनके अंदर भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने की एक ललक हो, पढ़ाई के प्रति भी वहाँ के जो माहौल है एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, उनके घर का माहौल नहीं बन पाता है, आखिर क्या वजह है
3: भावना जी? क्योंकि आपको पता है आज भी हम जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ पर हम पढ़ाई को सीधे सीधे नौकरी से ही जोड़ते हैं
0: जी,
2: बिल्कुल,
3: कहीं ना कहीं हम,
2: और वो भी सरकारी नौकरी से,
3: कहीं ना कहीं हम बहुत असफल हैं ये बताने में कि अगर आपका बच्चा आज पढ़ लेता है तो वो अपने लिए एक बदलाव ला सकता है, जिस माहौल में आप रह रहे हैं वो आगे चल के अपने बच्चों के उस माहौल को बदल सकता है। जैसे हमेशा एक बात होती है कि ये महिलाओं के लिए भी कहा जाता है, इतना पढ़ लिख करके घर संभाल रही हो, लेकिन एक पढ़ी लिखी महिला जिस तरह से अपने घर को संभाल रही होगी
2: या संभाल सकती है,
3: या जैसे संभाल सकती है, और एक ऐसी महिला जिसको नहीं पता है कि क्या करना चाहिए, अच्छा सेहतमंद खाने के लिए किस तरह से क्या बनाना चाहिए, घर का माहौल कैसे रखना चाहिए, उसमें और जो पढ़ी लिखी है जिसको जानकारी है इन सारी चीजों के बारे में, बहुत ज्यादा अंतर होगा। तो बस सबसे पहले तो माता पिता को ये समझना चाहिए कि अगर मेरा बच्चा पढ़ लिख लेगा तो वो अपने लिए एक ऐसा जीवन खोज सकता है या ऐसे एक जीवन को तैयार कर सकता है जिसमें उन्हें प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है कि वो खाएगा क्या।
0: बिल्कुल
2: ठीक है, बहुत सारी चर्चा हुई है मुझे लगता है कि, लेकिन एक बहुत अगर रैपिड राउंड में मैं जाऊं तो मैं कुछ कुछ चीजें आपसे पूछना चाहूंगा कि बच्चों को डांटना चाहिए?
3: डांटना चाहिए लेकिन अपने शब्दों पे काबू रखना चाहिए।
2: ठीक है, बच्चों को पढ़ाई में हम कैसे लगाएं और क्या ऐसा कह दें कि वो तुरंत जुट जाएं?
3: सबसे पहले पढ़ाई बहुत जरूरी है, ये एक जो फोकस है वो आपको बच्चों को हमेशा बता करके रखना चाहिए, एक एनवायरमेंट, एक डिसिप्लिन, एक रूटीन बच्चों को आपको सेट करके देना ही पड़ेगा।
2: बच्चों को मोबाइल से कितना जल्दी दूर करें?
3: बहुत जल्दी।
0: कितने घंटे देखें मोबाइल?
3: अमूमन पूरे दिन भर में शायद 1 से 2 घंटा सफिशिएंट है, छोटे बच्चों की बात में।
0: माँ बाप कितने घंटे देखें?
3: ये उनकी पर्सनल चॉइस है कि वो मोबाइल फोन के अलावा अपने आप को और दूसरे किन चीजों में इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये तो देखिए एक ब्लेम गेम हो गया फिर।
2: Correct.
3: आपने देखा, मैंने देखा, मैंने नहीं देखा, आपने देखा, और इस लड़ाई में हम कहीं भी कभी भी कहीं पहुंच नहीं पाएंगे।
2: करेक्ट। टीचर्स को क्या ऐसे में करना चाहिए अपने स्टूडेंट्स के लिए?
3: टीचर्स को अवेलेबल रहना चाहिए, उन्हें बच्चों के ऊपर ये विश्वास जताना चाहिए कि जो भी आपने किया है सब कुछ बहुत अच्छा होगा और ये सिर्फ एक एग्जाम है। और पेरेंट्स के साथ साथ जो रिलेटिव्स हैं, मैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जब बच्चा एग्जाम देके आ जाए तो प्लीज मत पूछिए एग्जाम कैसा गया, दे आया, अच्छा ही गया,
2: जो होगा
3: वो देखा जाएगा।
2: ठीक है, बहुत सारी पीटीएम्स होती हैं जिसमें पेरेंट टीचर्स मीटिंग होती है, लेकिन आपको क्या लगता है कि किस पॉइंट को सबसे ज्यादा पीटीएम में डिस्कस होना चाहिए इन बिटवीन पेरेंट एंड टीचर?
3: बच्चे का बिहेवियर कैसा है क्लास में, मेरा बच्चा इन्वॉल्व रहता है कि नहीं रहता है, क्या कुछ ऐसा है जो आपको बच्चे के बिहेवियर में एज अ टीचर लगता है कि घर के माहौल में कुछ ऐसे चेंजेस करने चाहिए?
2: योगा करना चाहिए?
3: बिल्कुल करना चाहिए।
2: बच्चों के लिए कितना फिट है करना योगा?
3: बच्चों के लिए 110% फिट है, डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए, इनफैक्ट क्लास में भी जब बच्चे पहुंचे या जब दिन की शुरुआत हो तो एक अच्छी ब्रीदिंग टेक्निक से अगर आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं तो उससे बेहतर कुछ नहीं है।
2: क्या एग्जामिनेशन के टाइम पर उनको खेलने का मौका देना चाहिए?
3: बिल्कुल देना चाहिए।
2: कितने टाइम का?
3: ये डिपेंड करता है कि बच्चा कितना प्रिपेयर्ड है, लेकिन जैसे मैंने बोला कि 35 to 40 मिनट्स के बाद आप, अगर आपका बच्चा खुद कमरे से बाहर नहीं निकल रहा तो आप वहां जाकर के कोई एक जोक सुना के चले आइए, कुछ एक ऐसा एनवायरमेंट वो कर लीजिए, बच्चे का हाथ पकड़ करके टेबल चेयर से उठाइए और बोलिए आओ एक राउंड लगा करके आते हैं।
2: ठीक है, तो बहुत सारी चर्चा हमने की है और निश्चित रूप से ये चर्चाएं हमें लगता है कि हमारे लिसनर्स के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होने वाली हैं।
0: बहुत ज्यादा आशीष, बहुत ज्यादा, और खासकर स्टूडेंट्स के साथ साथ पेरेंट्स के लिए भी।
3: और मेरी तरफ से भी एक रिक्वेस्ट दोबारा है पेरेंट्स के लिए, जिन्होंने भी ये सुना हो, जहां से भी वो सुन रहे हैं, जब वापस आप घर जाइए तो एक बार बहुत जोर से अपने बच्चे को गले लगाइए और बोलिएगा कि मुझे तुम पे पूरा विश्वास है, मुझे पता है तुम कुछ ना कुछ तो बेटा कर ही लोगे। ये बहुत जरूरी है कि आपका बच्चा क्या करना चाह रहा है, अगर आप उस चीज पे आत्मविश्वास नहीं दिखाएंगे और अगर आपका बच्चा थोड़ा सा जिद्दी है तो वो उस चीज को करेगा ही करेगा।
2: Exactly.
3: बस आपसे डिस्कनेक्ट होके करेगा और उसके बाद फिर मुझे लगता है कि सिर्फ परेशानियां के अलावा कुछ और हाथ नहीं आता
0: जी।
3: है। तो बेहतर है, एक परिवार है तो हाथ पकड़ करके आगे सब लोग जब बढ़ेंगे तो सबको वो खुशी मिलेगी और सब उस चीज को, उस सक्सेस को एंजॉय कर पाएंगे।
0: बिल्कुल श्रोताओं, पूरा आसमान आपका है।
2: बिल्कुल, एक लास्ट सवाल, रेडियो खीरी में आप आए, कैसा लगा?
3: बहुत अच्छा और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और मैं चाहूंगी कि आगे और इस तरह के सेशंस होते रहें ताकि लोगों को सुनने का भी मौका मिले और ग्रेजुअली वो समझ भी पाएंगे कि ये सेशंस हम क्यों कर रहे हैं और एक्चुअली इसके पीछे का रीजन क्या है।
1: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद,
4: NAC द्वारा ए ग्रेड, NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक,
1: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
4: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई,
1: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी,
4: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
1: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
5: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
6: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है ZIG प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। ZIG करो, स्वच्छता की जिद करो।
7: कह दूं तुम्हें
8: हाँ
7: या चुप रहूं
8: ना,
7: दिल में मेरे आज क्या है?

0: घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681। 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
1: NAC द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
1: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
0: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।

0: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
2: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
3: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
2: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
4: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: ही खूबसूरत मैसेज, एक बहुत ही खूबसूरत ट्रैक अभी आपने एंजॉय किया। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। बहुत ही बेहतरीन गीत। श्रोताओं, आप सभी का स्वागत अभिनंदन। एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ जब हमारा आवागमन हो, हमारी एंट्री हो, तो और भी खूबसूरत हो जाती है बात। देखिए, मौसम बहुत खूबसूरत है, दिन बहुत खूबसूरत है, तारीख बहुत खूबसूरत है और समय भी बहुत ही खूबसूरत है। हेलो जी, नमस्कार, सुप्रभात, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप कैसे हैं? आप इस वक्त जुड़ चुके हैं आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। आपका अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन है, आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन है, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। हाय, मॉर्निंग मॉर्निंग। देखो यार, मेरी एंट्री हुई है, 10:15 हो गए हैं संडे की सुबह। बहुत ही प्यारे गाने के साथ हुई है यहाँ पर हमारी और आपकी मुलाकात। वैसे मैंने सोचा नहीं था 19 जुलाई की सुबह मुझे भी रेडियो पर आना पड़ेगा, बिकॉज अभी थोड़ी थोड़ी आदत जो होगी ना आपसे बातचीत करने की। हाय व्हाट्सएप गाइस, क्या हालचाल, माय नेम इज आनंद। इस वक्त आप जुड़ चुके हैं आपके देश की धड़कन के साथ, आपके मुरादाबाद की धड़कन के साथ। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत बात आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं इस वक्त जो हूँ कांच रोड से निकल के आ रहा हूँ, और मैं जब देख रहा था, भैया बारिश तो देखिए झमाझम हो ही रही है, लेकिन बड़ा खूबसूरत वाक्य आज मेरे साथ हुआ। मैं किसी काम से गया था कांच रोड और वो काम तो मेरा नहीं हो पाया, लेकिन मैं जाकर वापस जब आ रहा था तो मैंने सोचा शायद इसमें भी कुछ अच्छा छुपा होगा। कई बार हमारे साथ, आपके साथ ऐसा कई मरतबा होता है कि हम किसी चीज़ के लिए निकलते हैं और वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं हो पाती तो हमारे मन में बड़ी उदासी छा जाती है, लेकिन हम चाहें तो उसको पॉजिटिविटी में ले सकते हैं, सकारात्मकता तरफ लेकर जा सकते हैं कि शायद ईश्वर की इसमें कुछ अच्छाई छुपी हो, शायद ईश्वर ने हमारे लिए कुछ अच्छा सोचा हो। वो कहते हैं ना, अगर आपके मन का हो तो बहुत अच्छा, और अगर आपके मन का ना हो तो समझ लीजिए वो ईश्वर के मन का हो रहा है। और जब ईश्वर के मन का होता है, अल्लाह वाहेगुरु खुदा के मन का होता है, तो यकीन मानिए वो बहुत ही खूबसूरत होता है। हाँ जी, कैसे हालचाल है, सब बढ़िया चल रहा है ना जिंदगी में? देखो यार, सब बढ़िया ही चलना चाहिए। 10:16 हो गए हैं। आज का प्यारा सा विचार अभी शेयर करता हूँ इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप कहीं मत जाइए, आरजे आनंद के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, चिपके रहिए और सुनते रहिए आपका मॉर्निंग मैगजीन शो। वैसे तो देखिए, संडे को अलग शो आता है, मंडे को अलग शो आता है, ऑफकोर्स हर दिन यहाँ पर नए नए शोज ही होते हैं आपके लिए, लेकिन आज का शो है संडे मस्ती, तो कुछ मस्ती तो करूंगा मैं आपके साथ आज।
1: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिला।
2: अरे तो भाई, गुस्सा क्यों होते हो, यहाँ इंसाफ भी मिलेगा और एंटरटेनमेंट भी, एंटरटेनमेंट भी, क्योंकि आप सुन रहे हैं आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, जो कहता है रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और दिल से कहिए जियो बिंदास।
3: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
4: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
5: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
4: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
5: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
4: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
3: मुरादाबाद
4: से संपर्क कीजिए।
5: नियम और शर्तें लागू।
0: दोस्तों, जिंदगी में अगर कुछ बड़ा हासिल है ना, तो उसके लिए थोड़ी सी बड़ी तमन्नाएं और बड़ी ख्वाहिशों को जगाना पड़ेगा, और ख्वाहिशें जगाने से कुछ नहीं होगा, कुछ बड़ा करने के लिए कुछ बड़ी मेहनत भी प्लान करनी पड़ेगी। आने वाला गाना KKN वसुंधरा दास की आवाज, चले जैसे हवाएं। जैसे हवाएं चलती है ना, हवाओं का रुख जिधर होता है ना, उधर ही आनंद आ जाता है। वैसे हमें अपने आप को रखना चाहिए, हमारे अंदर की पॉजिटिविटी को रखना चाहिए। यार, आप जुड़ चुके हैं आरजे आनंद के साथ संडे की सुबह, एक बेहतरीन गाने के साथ करते हैं आज के सफर की बेहतरीन शुरुआत। तो मैंने कहा जी 3 2 1 गो एंड स्टार्ट, शुरू हो जाओ मैडम जी।

0: तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलान।
1: अरे तो भाई गुस्सा क्यों होते हो, यहाँ इंसाफ भी मिलेगा और एंटरटेनमेंट भी, क्योंकि आप सुन रहे हैं आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, जो कहता है रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और दिल से कहिए जियो बिंदास।
2: ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
3: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
1: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना, आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
3: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
4: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
4: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना, पुराना सोना लाओ नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद, कॉल करें 7055070552।
5: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

हाय मॉर्निंग मॉर्निंग वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जी, ढेर सारे लिसनर्स मेरे साथ जुड़ चुके हैं आज की सुबह. थैंक यू सो मच. मौसम एब्सोल्युटली ऑसम. 10:26 स्टेशन क्लॉक में 10:26 हो रहे हैं और आज 19 जुलाई की सुबह. आप जहां भी जा रहे हैं ऑल द बेस्ट. अगर आप गाड़ियों में आनंद को सुन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बस रफ्तार गाड़ी की जरा हल्की रखिएगा, बारिश हो रही है. और अपने ध्यान को जो है रोड पर रखिए और अपने कानों को रेडियो पर रखिए, क्योंकि आनंद का जो साथ है वो लगातार 12 बजे तक रहेगा आपके साथ इस स्टेशन ऑफ द नेशन पर. अच्छा, मैंने कहा था ना, मैं अभी आपका आपके साथ आज का थॉट डेफिनेटली शेयर करने वाला हूँ. सो दिस इज वेरी वेरी इजी एंड बहुत ही प्यारा है आज का विचार. कहते हैं आज जो कठिन है वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा. जो आज आपको लग रहा है ना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा टिपिकल हो रहा है, आनंद ये मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, ये मेरे से हो ही नहीं पाता है, मैं ट्राई करता हूँ अपना 100% देना चाहता हूँ बट हो ही नहीं पाता है, तो मेरी जान आप इसको ट्राई कीजिए, कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखिए. डेफिनेटली दोस्तों ये जरूर होगा और जरूर होगा. और जो आज आपको बहुत ज्यादा कठिन, बहुत ज्यादा ऐसा चैलेंजिंग लग रहा है ना, यकीन मानिए यही कल सबसे बड़ी आपकी ताकत भी बनेगा. हाय, बहुत सारी जानकारियां हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है एंड बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपके साथ करनी है, लेकिन आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9837896896 पे. आज आपके साथ एक छोटा सा चैलेंज करने वाले हैं एंड बहुत मजा आएगा. एक अच्छा सा टंग ट्विस्टर लेकर आया हूँ, तो जितने लोग मुझे सुन रहे हैं फटाफट मैसेज करो हेलो हाय की गुड मॉर्निंग वाले, और साथ ही साथ आप मुझे कॉल भी कर सकते हो. आज की सुबह थोड़ा फन करते हैं, मस्ती करते हैं. एक टंग ट्विस्टर है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही ईजी टंग ट्विस्टर है एंड दिस इज ब्रांड न्यू टंग ट्विस्टर. आज की मॉर्निंग आप सुनोगे तो आपको मजा आ जाएगा. आपको क्या करना है, आप मुझे कॉल कर सकते हो संडे मस्ती में बातें करने के लिए, थोड़ी बातचीत भी हो जाएगी मेरी और आपकी. 9837896896 9837896896 दिस इज माय कॉलिंग नंबर. मैसेज मेरे पास पहुंचा है यहाँ पे मनप्रीत का, लिखते हैं हाय गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह संडे में आपको सुन के बड़ा मजा आ रहा है आनंद, गुड कैसे हालचाल है, वेरी गुड मॉर्निंग. यार मैं बहुत ही बढ़िया हूँ. शबीना खान रहमत नगर से जुड़ी है, हाय गुड मॉर्निंग, गली नंबर 1 से लिखी है. ये मायने नहीं रखता कि आप किस मुकाम पर हैं, वाह, ये मायने नहीं रखता कि आप किस मुकाम पर हैं, मायने ये रखता है कि आप इंसान कैसे हैं. वाह वाह, कमाल कर दिया है जी आपने तो, मतलब मैं तो मेरे नाम की तरह आनंदित हूँ यार. अगर आप मेरे साथ बातचीत करना चाहते हैं, मेरे साथ एक टंग ट्विस्टर खेलना चाहते हैं तो प्लीज यू हैव टू कॉल मी 9837896896. ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे फटाक से कॉल कर सकते हो. मैं इंतजार कर रहा हूँ आपके प्यारे प्यारे फोन कॉल्स का. देखो यार, अब कोई एक्सक्यूजेस मत देना, आज संडे की सुबह है, सारे लोग फ्री बैठे होंगे आई एम श्योर, अपनी फैमिली के साथ मतलब कुछ ना कुछ तो कर ही रहूंगा, आई नो दैट, बट कहीं ना कहीं दिन तो संडे वाला है, तो एक्सक्यूजेस से अच्छा है कि मुझे कॉल कर लो यार, मिलके थोड़ा फन करते हैं, ढेर सारी बातचीत करते हैं और सेशन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. आने वाला गाना बहुत ही प्यारा है, शहनाज गिल, क्या लगी थी इस गाने में. चलो आई एम वेटिंग फॉर यू कॉल. कॉल सिर्फ गाने सुनने के लिए नहीं करना है आपने, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको कॉल गाना सुनने के लिए नहीं करना है. अभी गाना तो मैं चलाऊंगा ही आपके लिए, बट आपको मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करना है. एक टंग ट्विस्टर लेकर आया हूँ, बहुत ईजी, आप मुझे कॉल तो करो, बताता हूँ. गुड मॉर्निंग.

और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

बजता रिंग रिंग रारा, बहुत ही प्यारा गाना है। नकाश अजीज की आवाज में एंजॉय कर रहे हैं आप, साथ में जॉनिता गांधी ड्रीम गर्ल का गाना सुन रहे हैं आनंद के साथ संडे की सुबह। मैंने कहा आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9837896896, बातों का रास्ता आपके साथ होगा।

इस गाने के बाद आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। संडे की सुबह है, अगर अभी आप सो रहे हो तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि उठो, आंखें खोलो मेरे यार, पानी लेकर आया हूँ, जरा मुंह तो धो लो मेरे लाल। हेलो जी, मॉर्निंग मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज 19 जुलाई 2026 स्पेशल संडे की सुबह, 19 जुलाई हो गई भैया, ये कहना चाह रहे हैं उठ जाओ, संडे का दिन है, ज्यादा लेट मत सो। 10:35 हो गए यार। जो लोग अभी रेडियो खोल रहे हैं उनका भी स्वागत है, आप सभी का इस्तकबाल करते हैं जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग है आपको भी जनाब। आप जुड़ चुके हैं आरजे आनंद के साथ, ये है आपके शहर का अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन। मौसम एब्सोल्युटली ऑसम है, और इस ऑसम वाले मौसम में अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं आज की सुबह, एंड आप मेरे साथ एक मजेदार गेम खेलना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मुझे कॉल करना होगा। यानी कॉलर निशा जी मेरे साथ जुड़ी थी, बट अनफॉर्चुनेटली कोई नेटवर्क इशू था जिसकी वजह से कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, आप हमें फोन कर सकते हैं, आपके पास भी गोल्डन चांस है आज की सुबह। एक बहुत इजी टंग ट्विस्टर लेकर आया हूँ, चलिए मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। कितने लोग एक्साइटेड हैं ये तो मुझे नहीं पता, बट आप लोग डेफिनेटली मुझे कॉल करने वाले हैं सुनने के बाद। बहुत ही इजी टंग ट्विस्टर है, रेडियो की वॉल्यूम बढ़ाओ जरा, वेरी गुड। हाँ, तो आज का मेरा टंग ट्विस्टर है जो आपको मेरे साथ खेलना है, अगर आप चाहते हैं कि आपको ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, आप इसको खेल सकते हैं, तो आप मुझे कॉल जरूर करिएगा। आज का टंग ट्विस्टर है, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, ये आपको 5 times रिपीट करना है। अगर आपको लगता है ये आनंद, ये चैलेंज, तो भैया मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, मेरे में है ये वाला पोटेंशियल, ये वाला दम, मैं जो हूँ आपको बीट करके आगे बढ़ सकता हूँ, तो यू कैन कॉल मी यार 9837896896 एंड दिस इज वेरी इजी यार, मुरादाबादी कॉल करो यार, बहुत सिंपल है। जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, ये आपने मेरे को बोल के है दिखाना। तो देखते हैं कौन होगा हमारे शो का पहला वाला लकी कॉलर। चलो आगे बढ़ते हैं, तब तक कुछ मैसेज पढ़ते हैं। हाय गुड मॉर्निंग, मेरा नाम शिखा है। हाय शिखा, गुड मॉर्निंग, ये लिखती है आनंद संडे को देखो सुन के बहुत मजा आता है यार, एनर्जी है तेरी आवाज में। अरे यार तभी तो रेडियो पे बैठे शिखा जी, तुसी कमाल कर रहे हो यार। अच्छा एक मैसेज आया, हाय गुड मॉर्निंग आनंद जी, आपका संडे कैसा रहा है? मेरा नाम विवेक है। हाय विवेक, थैंक यू फॉर आस्किंग मी यार, मेरा संडे एब्सोल्युटली ऑसम हो गया बिकॉज आपके साथ बात जो कर रहा हूँ। ये प्रणीत का मैसेज पहुंच रहा है मेरे पास दिल्ली रोड से। प्रणीत मुझे लिखते हैं, हाय गुड मॉर्निंग सर,

जरा सी देर में हमारे साथ। एंड आज हम आंखों के बारे में ढेर सारी बात करने वाले हैं एक्सक्लूसिवली लाइव। अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा आंखों से रिलेटेड तो जरूर आप कॉल करिएगा और जरूर आप पार्टिसिपेट करिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप मेरी चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं और आप करना चाहते हैं तो प्लीज कॉल करो यार, बहुत सिंपल है मेरा आज का ये टंग ट्विस्टर, इसको आपको 5 times बोलना है। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, अगर आप ये बोल सकते हो तो आप मुझे कॉल करो। एंड दिस इज वेरी इजी, आई रिपीट माय टंग ट्विस्टर, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला। आप मेरे को मैसेज करो या फिर कॉल करो, वैसे तो कॉल करोगे तो ज्यादा मजा आएगा। आप मुझे फोन कर सकते हैं 9837896896896 पर। चलो एक गाना सुनते हैं। ये गाने की रिक्वेस्ट हमारे पास एक बहुत ही कमाल की लड़की की आई है, मैं इनका नाम डेफिनेटली लूंगा लेकिन अभी नहीं, जब लौट के आऊंगा तब लूंगा, ठीक है? तब तक के लिए आप सुनते रहो, जुड़े रहो ऐसे ही आपके शहर का अपना स्टेशन ऑफ द नेशन, दिस इज एफएम मुरादाबाद 89.6। कॉल करो ना यार, आई एम वेटिंग फॉर यू कॉल, रिपीट कर रहा हूँ वंस अगेन, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, बोल सकते हो कॉल कर लो

की नौटी का हाय हाय सुनिधि चौहान की आवाज फ्रॉम द मूवी हीरोइन से आप सुन रहे हैं हलकर जवानी। मूवी ने इतना कमाल नहीं मचाया लेकिन गाने ने एकदम रॉक मचा दिया यार। गाने ने बहुत ही फैबुलस गाना हाय हाय संडे की सुबह और ऐसे गाने ओ बाबा आहा ओए होए एक तो मौसम इतना अच्छा हो रहा है यार। हाय हाय हाय संडे की सुबह है जी। गुड मॉर्निंग। घड़ी में वक्त हो रहा है 10:42। छोटा सा चैलेंज दिया था आपको, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला।

0: तो बोल रहा था पांच बार एक कॉलर जुड़ चुकी है मेरे साथ हमारे शो की पहली कॉलर, कहां से कौन जुड़ी है आइए बात करते हैं। हाय गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग सर।
0: नमस्ते, कैसे हैं आप? वेलकम टू एफएम मुरादाबाद।
1: एकदम बढ़िया।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं भी बहुत ही हैंडसम हूँ। आई एम वेरी गुड, आई एम वेरी वेल। आपका नाम बताओ।
1: मैं शमा बात कर रही हूँ।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। ये शमा और खूबसूरत हो गया हमारा आपने कॉल किया तो। रामपुर का मौसम कैसा हो रहा है ये बताओ जरा।
1: माशाल्लाह सर, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है।
0: अरे वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। मौसम अगर ऐसा हो तो फिर मजा आ जाता है, राइट?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत गर्मी हो रही थी,
0: बहुत गर्मी हो रही थी, राइट राइट। और सब बढ़िया, ब्रेकफास्ट हुआ आपका?
1: जी सर हो गया माशाल्लाह, सब बढ़िया है। घर में आप बताएं, आप कैसे हैं? सब एकदम, सब कैसे हैं?
0: सब बेहतरीन है, सब बहुत ही बढ़िया है। सब अपने अपने काम में लगे हुए, इसलिए मैं भी काम पे आ गया हूँ आपके, आप लोगों से बातें करने।
1: जी बिल्कुल, आप जाते हो तो हमारी सुबह मॉर्निंग मोरिया हो जाती है।
0: अरे वाह, थैंक यू सो मच, वंडरफुल कॉम्प्लीमेंट। अच्छा शमा जी, एक टंग ट्विस्टर है, आई एम श्योर आपने रेडियो पे सुनी लिया होगा डेफिनेटली।
1: जी सर, मैंने सुन लिया है और मैं कोशिश भी करूंगी बोलने।
0: पक्का? ऑल द बेस्ट। तो ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, ठीक है? चलो ठीक है, आप अभी आप रुको, मैं एकदम टाइमर लगाता हूँ, देखता हूँ कितने सेकंड में बोल पा रहे हो। ये पांच बार बोलना है आपको, डन? चलो 3 2 1 गो स्टार्ट।
1: जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, जिस ताले की चाबी।
0: अरे भाई बस करो, हो गया। मैं कह रहा हूँ इतनी सारी ये जोरदार तालियां आपके लिए शमा, पहली कॉलर और इतना कमाल मचा दिया। कैसे मतलब क्या प्रैक्टिस करके आई थी या फिर क्या, आप इतनी ज्यादा फ्लुएंट कैसे बोला आपने?
1: सर जब आपने बोल रही थे ना तभी मैंने रिपीट कर दिया था। अयो,
0: तुम क्या खाती जी,
1: शायद मैं बोल दूंगी।
0: अच्छा इतना देखो, ये कॉन्फिडेंट वाली बात है, आपको अपने ऊपर बिलीव था, आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास था, है ना? वेरी नाइस, वेरी नाइस शमा, बहुत मजा आया, जोरदार तालियां, बहुत ही मजा आ गया आपका सुन के। आप खाती क्या है, इतना अच्छा बोलती है
1: सर, जो सब खाते वही खाती हूँ।
0: बहुत ही प्यारी आवाज है आपकी, और सुबह सुबह मतलब माइंड ब्लोइंग होगी मेरी मॉर्निंग आपसे बात करके शमा।
1: थैंक यू सर,
0: थैंक यू। शमा कौन सा गाना सुनोगी आज, आपने दिल खुश कर दिया, एक गाना है तो आपकी फेवरेट तो होना चाहिए सुबह सुबह बढ़िया। हाँ। सा
1: मेरा सॉन्ग है सर, अजरों ने देश तू जी भर देश, 1920 लंदन मूवी का सुनवा दीजिए।
0: अच्छा अच्छा, ये गाना मैं डेफिनेटली लगाता हूँ अभी थोड़ी सी देर में, ठीक है शमा? थैंक यू सो मच, बाय बाय।
1: थैंक यू, थैंक यू,
0: वालेकुम सलाम, ऑल द बेस्ट आज के दिन के लिए, बाय बाय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू शमा, बहुत मजा आया। सुबह सुबह जो है मतलब कमाल कर दिया इन्होंने यार, इतना अच्छा खेला, इतना बढ़िया, माइंड ब्लोइंग, एकदम बिना रुके बिना अटके फटाफट बोल दिया लड़की ने। अगर आप बोल सकते हैं इस तरह से तो आप मुझे फोन कर सकते हैं 9837896896 पे। मौसम बहुत ही औसम है, ऑफकोर्स गाने भी बढ़िया चल रहे हैं। एक गाना मेरी तरफ से जा रहा है आप सभी के लिए, बहुत ही अच्छा, चाइना गेट का ट्रैक है, बहुत ही प्यारा गाना। 10:45 हो रहे हैं, उर्मिला माथुर कर का ये गाना। इतनी हैवी ज्वेलरी पहनने के बाद क्या अच्छी कोरियोग्राफी की है लड़की ने, एब्सोल्युटली अमेजिंग है यार। एल्बम देखा इस गाने का, कितना बढ़िया है यार। एक इंटरव्यू में कहा गया था, उर्मिला माथुरकर ने बताया एक इंटरव्यू में कि इस मूवी के जो मतलब डायरेक्टर थे, उन्होंने बोला उर्मिला को कि इतनी ज्यादा हैवी ज्वेलरी पहन के आप ये कोरियोग्राफी नहीं कर पाओगी, बट उन्होंने बोला नहीं ठीक है मैं पहन लूंगी। बहुत भारी भरकम ज्वेलरी पहनने के बाद जब उन्होंने किया परफॉर्मेंस, ये इतना था मतलब अनक्रेडिबल यार, अनक्रेडिबल। अलका याग्निक की खूबसूरत आवाज, और आपको मेरा फोन बजाना है, मुझे कॉल करना है 9837896896। आप मुझे बताओ जरा क्या आप बोल सकते हो, शमा ने तो बहुत अच्छा बोला, अगला नंबर आपका भी हो सकता है, आप मुझे डेफिनेटली कॉल कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत बढ़िया बोल सकता हूँ तो आप, या बोल सकती हूँ तो आप मुझे फोन करो 9837896896। अरे बाबा रेडियो भी खोला, मैं आज एक टंग ट्विस्टर खेल रहा हूँ आपके साथ, बहुत ही प्यारा टंग ट्विस्टर है, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, ये आपको बोलना है 5 टाइम्स।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
0: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
2: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
2: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
2: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
0: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
4: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट TB, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।
5: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं।
6: नामुमकिन, नामुमकिन, नामुमकिन।
0: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए FM मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: अरे बरसने दीजिए मैडम, गर्मी बहुत तेज हो रही थी। हेलो हाय वेलकम बैक, ये 10:54 हो रहे हैं, आप आनंद को सुन रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, संडे की सुबह है, ढेर सारी बातों का जो है रास्ता लगातार यहाँ पर जारी है मेरे और आपके बीच। वेलकम बैक है, गाना ऑफ कोर्स आएगा। एक कॉलर मेरे साथ जुड़े हैं और वो मेरे साथ एक टंग ट्विस्टर को खेलना चाहते हैं संडे की सुबह। आइए जरा बात करते हैं। हाय हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, आई एम वेल डन, हाउ आर यू, कैसे हैं आप, अपना नाम बताओ। धैर्य, ओ वाओ वेरी नाइस नेम। धैर्य कहाँ से कॉल कर रहे हो, वेयर आर यू फ्रॉम?
1: मानसरोवर
0: कॉलोनी से कॉल कर रहे हैं आप, वेरी गुड। आप अभी मुझे लगता है बहुत छोटे लग रहे हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सिक्स स्टैंडर्ड। ओ वाओ वेरी नाइस, कौन से स्कूल में पढ़ते हो, चलो ये बताओ हमारे लिसनर्स को। ओ वेरी नाइस, वेरी गुड। आप रेडियो भी सुनते हैं?
1: रेडियो।
0: ओ नाइस, तो आपकी पूरी फैमिली सुनती है या फिर आपको ही शौक है रेडियो सुनने का, ये बताओ। वेरी गुड वेरी गुड, तो अभी मम्मी भी सुन रही है रेडियो या फिर आप ही सुन रहे हो, ये बताओ। चलो
1: अभी तो सुना हूँ।
0: ऑल राइट, आपका ब्रेकफास्ट हुआ? ओ वेरी गुड वेरी गुड, चलो बहुत ही अच्छी बात है, आप ब्रेकफास्ट जरूर करना, लेकिन उससे पहले मेरे चैलेंज एक्सेप्ट करो सुबह सुबह। धैर्य, आर यू रेडी? ओके वेरी वेरी गुड वेरी गुड। आज का मेरा टंग ट्विस्टर है, मैं रिपीट कर रहा हूँ वंस अगेन, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, दिस इज वेरी इजी। धैर्य शुरू करें? ठीक है, सो 3, 2, 1 गो स्टार्ट, योर टाइम स्टार्ट नाउ, गो फॉर इट। जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, ओके अरे कोई बात नहीं, आप धैर्य आराम से ट्राई करो, लेट्स डू दिस, फिर से ट्राई करो, ओके
1: उस चाबी का ताला।
0: धैर्य आप ब्रेकफास्ट नहीं करके आए हो मुझे ऐसा लग रहा है, राइट, इसीलिए थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, फिर से ट्राई करो, ओके एक बार फिर से, ऑल द बेस्ट, ट्राई करो। धैर्य वेल्डन वेल्डन, बहुत अच्छा खेला तुमने, कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट बच्चा, बहुत मजा आया तुमसे बात करके। ये बताओ कुछ कहना चाहते हो, कोई गाना सुनना चाहते हो सुबह सुबह?
1: नहीं, मतलब मेरा
0: कैसी है कि रेडियो सुनता
1: हूँ मैं।
0: ओ आपको, ओके वेरी गुड, तो आपको कौन कौन से आरजे अच्छे लगते हैं, क्या क्या अच्छा लगता है आपको रेडियो पे?
1: मुझे
0: आरजे अखिल, वो रात में आते हैं अखिल भैया, वेरी गुड। और कौन कौन से आरजे को सुनते हैं आप?
1: और एक तो मैं आपको सुनता हूँ, एक आरजे राज को भी, मतलब आते हैं शोक तो भी सुनता हूँ।
0: वेरी नाइस वेरी नाइस, आपको कौन सा कार्टून पसंद है, व्हाट्स योर फेवरेट कार्टून? ऑल राइट, आप तारक मेहता देखते हो, आप छोटा भीम डोरेमोन ये कुछ नहीं देखते? ऑल राइट, सिंचैन, ओ वाओ वेरी गुड, मुझे सिंचैन की मिमिक्री तो थोड़ी कम आती है, बाकी और सारे कैरेक्टर्स की आती है, फिर मैं जरूर सुनाऊंगा आपको कभी। ओके सो धैर्य कुछ कहना चाहते हो, बहुत सारे आपके जैसे बच्चे भी सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं, कुछ कहोगे आप सारे लोगों को, कोई मैसेज दोगे आज की सुबह? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी नाइस, चलो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, हैव अ वंडरफुल डे धैर्य, थैंक यू, बाय बाय बाय बाय बाय बाय। धैर्य जुड़ा था मेरे साथ, सिक्स क्लास में पढ़ता है मानसरोवर कॉलोनी से, पूरी पूरी कोशिश की इसने मेरे साथ इस टंग ट्विस्टर को खेलने की, बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा पीछे रह गया धैर्य, बट अच्छा ट्राई किया धैर्य ने, चलो ठीक है बच्चा था। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं आज की सुबह, बहुत ईजी टंग ट्विस्टर है लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपको लगता है कि आप डेफिनेटली खेल सकते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है, लेकिन धैर्य के लिए तालियां यार, इस बच्चे ने फोन किया। थैंक यू धैर्य, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, ऑल द वेरी बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए, ठीक है। और ये गाना मैं प्ले कर रहा हूँ आपके लिए यहाँ से इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, आप सारे लोग इंजॉय करो, बहुत ही अमेजिंग सॉन्ग है। एंड इस गाने के बाद जब लौट कर आएंगे तो किसी एक लकी कॉलर को अपने साथ यहाँ पर शॉर्टलिस्ट करेंगे, आप लोग भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं 9837896896 पे, आप डेफिनेटली मुझे कनेक्ट कर सकते हैं आज की सुबह। धैर्य, इस गाने को इंजॉय करके डांस करते रहो, ओके, और ब्रेकफास्ट करने के लिए भी आगे बढ़ो। बाकी आप लोग जहां भी जा रहे हो, ऑल द बेस्ट। सुखवीर बाजी इन द हाउस राइट हियर, आप सुन रहे हैं आनंद को, ये अच्छा गाना संडे की सुबह आनंद के साथ, ऐसे ही ट्यून इन रहिए। ये है आपके शहर का स्टेशन ऑफ द नेशन, दिस इज एफएम मुरादाबाद, आप सुन रहे हैं। यहाँ पर मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप कॉल तो कर रहे हैं, अगर आप नेटवर्क एरिया में आके फोन नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना, तो थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में आके ही फोन करें। सुबह के 11 बज चुके हैं, गुड मॉर्निंग।

0: सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला। मिला
1: अरे तो भाई गुस्सा क्यों होते हो, यहाँ इंसाफ भी मिलेगा और एंटरटेनमेंट भी क्योंकि आप सुन रहे हैं आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 जो कहता है रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और दिल से कहिए जियो बिंदास।

ढेर सारे मैसेज मेरे पास पहुंच चुके हैं। गुड मॉर्निंग लिसनर, मैं आरजे आनंद को, यह है आपकी शहर का स्टेशन ऑफ द नेशन, दिस इज एफएम मुरादाबाद, जहां पर बातें होती हैं दिल से दिल तक, फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। आप सुन रहे हैं 11:05 हो गए 19 जुलाई की सुबह। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9837896896, दिस इज माय नंबर। टाइम बता दूं, 11:06 हो रहे हैं।

0: जरा सी देर में मेरे साथ फोन लाइन पे डॉक्टर जुड़ने वाले हैं, जिनके साथ आज हम ढेर सारी बात करेंगे। डॉक्टर विराग श्रीवास्तव जी मेरे साथ होंगे कनेक्ट थोड़ी सी देर में, नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं एंड थोड़ी देर में हम उनसे जुड़ेंगे भव्य हॉस्पिटल से। थोड़ी सी देर में मेरे साथ फोन लाइन पे कनेक्ट होंगे। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो यू कैन आस्क मी। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9837896896 पे। एक बहुत ही हेल्दी और बहुत ही अमेजिंग कॉन्वर्सेशन अभी आप सुनने वाले हैं इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपकी आंखों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है। हाय मॉर्निंग मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग। 11:10 हो रहे हैं। सो डॉक्टर विराग श्रीवास्तव जी नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, MBBS हैं, अभी थोड़ी देर में उनसे हम कनेक्ट होंगे यहाँ पर एंड बहुत सारी चर्चाएं आज जो है करने वाले हैं। आंखों की सामान्य समस्याएं और उनके समाधान के बारे में बात करेंगे। आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया का जमाना है, हर लोग बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, है ना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो हमारी आईज को कौन कौन से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, कई बार हमें पता भी नहीं होता है। तो आज आपकी आंखों के बारे में बात करने वाले हैं। बस अभी जरा सी देर में उनको लेकर आता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर ये चीज़ बताना चाहता हूँ लेडीज एंड जेंटलमैन कि आपने जो व्हाट्सएप किए हैं वो बहुत ही फैबुलस है। यू आर एब्सोल्युटली अमेजिंग यार। एक वॉइस नोट तो इनका सुन लेते हैं।
1: जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, जिस ताले की चाबी उस चाबी का, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला।
0: ओ भाई मुझे मारो, सारे लोग यार रिकॉर्ड तोड़ वाला काम कर रहे हैं, मतलब माइंड ब्लोइंग है। इतना इजी था क्या यार मेरा टंग ट्विस्टर? डोंट वरी, मैं अगली बार इससे भी भारी लेकर आने वाला हूँ। लेकिन गोपी जी थैंक यू सो मच यार, आपने कमाल कर दिया, मजा ही आ गया मेरे को तो यार। थैंक यू वेरी वेरी मच। इतने प्यारे प्यारे आप लोग मैसेज करते हो और इतने अच्छे से आप पार्टिसिपेट करते हो, मजा आ जाता है। एंड थैंक यू सो मच यार आप लोगों के व्हाट्सएप के लिए। सच में बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। हमारे साथ पिंकी जुड़ चुकी हैं आज की सुबह, लिखती हैं हेलो आनंद, हाय कैसे हैं आप, आपकी आवाज़ अच्छी लगती है, थैंक यू सो मच। मेरे पास गिरीश सर का फोन आया था, लेकिन गिरीश जी का कॉल अनफॉर्चुनेटली डिस्कनेक्ट हो गया। वो रेडियो के काफ़ी पुराने लिसनर हैं, उनसे बात करके मुझे अच्छा लगा। थैंक यू फॉर कॉलिंग गिरीश जी। मैं आपसे ऑन ईयर टॉक तो नहीं कर पाया, लेकिन आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। एंड ये मैसेज पहुंचा है, गुड मॉर्निंग जी कैसे हालचाल है। ये मेरे पास मुरादाबाद से मैसेज आ रहा है, नंबर की 4 digit 6724। ये अफसा का मैसेज मिल रहा है मेरे पास, हाय गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग अलीशा जुड़ चुकी है मेरे साथ, हाय गुड मॉर्निंग। एंड ये लिखती हैं आज हैप्पी वाला बर्थडे है, इनके यहाँ किसी का बर्थडे है। थैंक यू सो मच, आपके जो भी ये रिलेटिव है उनको बुद्धि की शुभकामनाएं। हाय गुड मॉर्निंग, भावना जुड़ चुकी है मेरे साथ आज की सुबह, हाय कैसे हैं आप, हैव अ ग्रेट डे, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। थोड़ी देर में हमारे साथ डॉक्टर जी जुड़ने वाले हैं, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल आप डेफिनेटली हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। डॉक्टर विराग श्रीवास्तव जी होंगे जरा सी देर में मेरे साथ ऑन कॉल।

बात है जी, बहुत ही बढ़िया गाना। 11:15 हो गए हैं, आप आनंद के साथ हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, ढेर सारे कॉल्स मेरे पास आ रहे हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर कॉलिंग। आप लोगों की फोन कॉल्स के लिए मैं आपका थैंक यू करना चाहता हूँ। सच में बहुत प्यारे प्यारे कॉल्स आपने किए। और अब टाइम है अपने साथ डॉक्टर साहब को कनेक्ट करने का लाइव। आप जुड़ चुके हैं आरजे आनंद के साथ। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक।

0: वेलकम बैक यू वंस अगेन. जैसे कि मैंने बताया थोड़ी देर पहले, मैंने कहा था हमारे साथ डॉक्टर विराग श्रीवास्तव जी जुड़ने वाले हैं ऑन ईयर, एंड आज हम आपकी आंखों के बारे में ढेर सारी बातचीत करने वाले हैं. देखिए, सोशल मीडिया का टाइम है, हर इंसान कहीं ना कहीं, बच्चे बड़े, हर इंसान सोशल मीडिया पर एक्टिव है. कोई किसी चीज से जुड़ा हुआ है, कोई किसी काम की वजह से जुड़ा हुआ है, और टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ में बहुत सारा फायदा करती है, लेकिन हमारी आंखों के लिए ये मोबाइल स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन कितनी ज्यादा हार्मफुल हो सकती है ये हम इमेजिन भी नहीं कर सकते. और दूसरी बार बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं, डॉक्टर विराग श्रीवास्तव जी. आइए सर से बात करते हैं और उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं. गुड मॉर्निंग सर, वेलकम टू एफएम मुरादाबाद. कैसे हैं आप? नमस्ते.
1: मैं बढ़िया, नमस्कार
0: जी. सर बहुत बहुत स्वागत है, तमाम मुरादाबाद आपको सुन रहे हैं. एक बार थोड़ा सा अपने बारे में बताइए हमारे लिसनर्स को सर.
1: मैं एमएस ऑप्थाल्मोलॉजी हूं और मैं 3 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं मुरादाबाद में. आएगी.
0: अरे वाह, कौन सी हॉस्पिटल में है सर आप?
1: सर मेरा अपना हॉस्पिटल है, भव्य हॉस्पिटल.
0: अरे वाह, क्या बात है, वेरी नाइस. गाइज, मैंने आपको बताया था ना अभी भव्य हॉस्पिटल के बारे में. यस सर, तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ, और हमारे लिसनर जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. तो बिना किसी देरी के मैं चाहूंगा कि हम जो है थोड़ा सा सिलसिला शुरू कर दें. सो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे लिसनर को आप बताइए नेत्र रोग विशेषज्ञ के बारे में. बेसिकली ये लोग जो होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, वो किस तरीके से वर्क करते हैं, और आजकल जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हमारी आंखों को लेकर चल रही जिन्हें हम अक्सर अवॉइड कर देते हैं स्पेशली सोशल मीडिया के टाइम में, तो वो कितनी ज्यादा खतरनाक है हमारी आंखों के लिए. लगातार हम स्क्रीन पे बैठे होते हैं, 8-8, 10-10 घंटे हम सोशल मीडिया पे देते हैं, तो क्या सच में वो हमारी आंखों के लिए हार्मफुल हो सकता है?
1: हाँ, डेफिनेटली हार्मफुल होता है. देखिए, मेन दो मेन चीजें होती हैं अगर आप बहुत लंबे समय तक स्क्रीन पे काम कर रहे हैं. एक तो आंख में ड्राइनेस होती है, दूसरा कंटिन्यूस आप काम करते हैं स्क्रीन पे
0: जी,
1: तो आपकी मसल स्पैज में चली जाती है और आप सीवियर स्ट्रेन फील करते हैं, यहाँ दर्द, वॉटरिंग और हेडेक, इस तरह की प्रॉब्लम्स.
0: ओके. और सर जैसे आपको पता है आजकल जो है हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग रात को बहुत ज्यादा फोन का इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली लेट नाइट. कुछ लोगों की हैबिट होती है कि वो दिन में नहीं करेंगे, वो रात को ही काम करेंगे. और मैंने ये भी पढ़ा है रिसर्च में कि रात को जो है ना इसकी जो ब्लू लाइट होती है वो आंखों के लिए और भी ज्यादा डेंजरस होती है, तो इस चीज के बारे में आपका क्या कहना है?
1: एक्चुअली जो लोग रात में काम करते हैं, लेट नाइट में,
0: हाँ जी,
1: डार्क में काम करते हैं, तो उसकी ब्राइटनेस बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है. तो मेरी एडवाइस है कि आप ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को मैनेज करके रखो.
0: ओके, बहुत ही बढ़िया.
1: डार्क रूम में आप काम करते हैं और उसकी ब्राइटनेस बहुत ज्यादा होती है, तो वो हार्म करती है.
0: ओके डॉक्टर साहब, आजकल लोगों में आंखों की जो सबसे आम समस्या है वो कौन कौन सी देखने को मिल रही है लगातार आजकल?
1: देखिए, आजकल दो मेन प्रॉब्लम होती है जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं. एक तो एलर्जीज बहुत कॉमन है, क्योंकि पोल्यूशन लेवल हर जगह काफी ज्यादा है.
0: एग्जैक्टली बिल्कुल.
1: और दूसरी चीज जो मैंने बताया आपको, वो ऑनलाइन बहुत ज्यादा, ऑन स्क्रीन बहुत ज्यादा काम करने से होती है, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस करा. जैसे ये दो चीजें इसमें वाली होती है, ड्राइनेस लॉन्ग टर्म काम करने से और स्ट्रेन पड़ता है बहुत ज्यादा. ये दो चीजें मैंने बहुत कॉमन.
0: ऑलराइट, बहुत ही बढ़िया आपने सर इन्फॉर्मेशन दी, एंड आई एम श्योर लिसनर्स जितने भी आप सुन रहे हैं आपको डेफिनेटली ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगने वाली है. डॉक्टर साहब, मैं डिजिटल आई स्ट्रेन क्या होता है और इसे हम कैसे बच सकते हैं, कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में भी मैं जानना चाहूंगा आपसे.
1: देखिए, डिजिटल आई स्ट्रेन वही है जो आप स्क्रीन पे बहुत ज्यादा काम करते हैं. तो उन लोगों के लिए एडवाइस है, एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा, 20-20-20 का फॉर्मूला. उसमें आप जैसे लंबे समय पर काम करना पड़ता है क्योंकि काम है, तो आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन उसका प्रिकॉशन ये है कि आप जैसे 20 मिनट स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, देन उसके बाद 20 सेकंड्स आप डिस्टेंस पे देखिए, 20 फीट की डिस्टेंस पे.
0: ठीक है,
1: 20 मिनट्स काम करने के बाद 20 सेकंड्स आपको डिस्टेंस पे देखना है, 20 फीट डिस्टेंस पे, मिनिमम 20 फीट डिस्टेंस पे.
0: ओके,
1: तो उसी समय आपकी मसल्स रिलैक्स कर जाएंगी और आपका स्ट्रेन लेवल बहुत कम हो जाएगा.
0: ओके, मतलब क्या होता क्या है ना सर, कई बार हम लोग जब स्क्रीन पे देखते हैं तो हम पलके बहुत कम छपक रहे होते हैं, जबकि मैंने सुना है ये बहुत जरूरी होता है हमारी आईज के लिए.
1: बिल्कुल,
0: बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो हम जब
1: आपकी जो है ब्लिंकिंग रेट्स बहुत कम हो जाते हैं, इस वजह से ब्राइटनेस होने लगती है.
0: 100% एग्जैक्टली. तो इसी वजह से हमें जो है अपनी आंखों को 20 मिनट का अगर हम ब्रेक देंगे तो आई थिंक वो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होगा हमारी आईज की हेल्थ के लिए.
1: 20 सेकंड का ब्रेक देना है आपको 20 मिनट्स.
0: ओके ओके, तो उससे जो है काफी हद तक हम बच सकते हैं बहुत सारी बीमारियों से भी.
1: बिल्कुल.
0: ऑल राइट सर, अच्छा मैं अगर बात करूं बच्चों की आंखों की जांच की, तो वो कब शुरू करानी चाहिए, थोड़ा सा मैं बच्चों के बारे में.
1: अगर बच्चों में अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है तो आप 5 ईयर से शुरू कर सकते हैं.
0: ओके.
1: लेकिन कुछ बच्चों में बहुत शुरू से प्रॉब्लम होती है, तो आप अवसर पर ही उनको, या बहुत क्लोजली तो नहीं देखते हैं चीजों को, या चीजें देख के एकदम रिस्पॉन्ड तो नहीं कर रहे हैं, आंख बहुत ज्यादा ब्लिंक तो नहीं करते हैं,
0: ओके,
1: या आंख में डेविएशन या जिसको बोलते हैं भेंगापन शुरू हो गया, अगर वो स्टेज आती है तो आपको अर्लीस्ट आपको दिखाना चाहिए, वो भले ही वो 1 ईयर का हो या उससे कम भी.
0: ओके डॉक्टर साहब, कई बार क्या होता है ना, ये मुझे लगता है बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है एंड आई थिंक हर इंसान इसके बारे में समझ नहीं पाता है कि आंख में कुछ भी चला जाता है, हमें लगता है हम मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, कोई भी एक आई ड्रॉप खरीदेंगे, उसको डालेंगे एंड हमारी आंख बिल्कुल सही हो जाएगी. तो क्या हमें करना चाहिए बिना किसी डॉक्टर की सलाह के हम कोई भी चीज अपनी आंख में यूज करें?
1: अगर आंख में आपको कुछ लगता है इरिटेशन हो रहा है, सिंपली सिंपल वाटर से वॉश करिए आप.
0: ओके
1: 5 मिनट 10 मिनट आपको लगता है रिलीफ हो गया तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो फिर आई स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करिए.
0: okay.
1: कई बार होता है इन्फेक्शन होता है, आपने उल्टी ड्रॉप डाल ली, गलत ड्रॉप डाल ली, तो वो चीज और बढ़ जाती है.
0: 100% वही ना, और बिना किसी डॉक्टर से सलाह लिए, बिना उनकी परामर्श किए आप कुछ भी डाल रहे हो और
1: मेडिसिन आप आंख में डाल,
0: बिल्कुल
1: वॉश कर सकते हैं.
0: बिल्कुल, और हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होती है हमारी खूबसूरत आंखें, जिनसे हम ये पूरी कायनात देख पाते हैं श्रोताओं. तो हमें इसके साथ रिस्क नहीं लेना है, बहुत ही अनमोल चीज है, बहुत ही छोटी सी चीज है, अक्सर हम अवॉइड कर देते हैं, तो हमें ये नहीं करना है. अक्सर डॉक्टर

0: साहब हम कहते कहते हैं हमारे दादा नानी भी कई बार बोल देते हैं आप गुलाब जल डाल लो गंदगी बाहर आ जाएगी, तो क्या आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं कहता हूँ कोई भी चीज आप अननेसेसरी आंख में मत डालिए, आंख अपनी क्लीनिंग और सुरक्षा स्वयं करती है, उसके इस तरह का मैकेनिज्म है
2: 100%।
1: जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप कोई भी ड्रॉप डाल लेंगे, आपको जरूरत नहीं जब तक आपको प्रिस्क्राइब ना हो मेडिसिन।
2: बिल्कुल सही कहा,
1: एनी काइंड ऑफ आई ड्रॉप।
2: बिल्कुल। सो डॉक्टर विराग श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं, नेत्र विशेषज्ञ हैं। सर हम आपके साथ कुछ और सवालों के साथ वापस लौटेंगे, एक छोटा सा ब्रेक है उसके बाद हम लोग वापस जुड़ रहे हैं। दोस्तों अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं डॉक्टर साहब से आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है। 9837896896 ये मेरा नंबर है, इस पर आप मुझे अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं एंड डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सर हम थोड़ी देर में लौट के आते हैं आपके साथ वापस। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सो मच। सो डॉक्टर साहब हमारे साथ लगातार बने रहेंगे, अभी कुछ और क्वेश्चन है जो मुझे पूछने हैं। मैं वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ अपने नंबर 9837896896, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने नाम के साथ अपना सवाल। डॉक्टर विराग श्रीवास्तव जी मेरे साथ स्टूडियो में तो नहीं है लेकिन फोन लाइन पे मेरे साथ मौजूद है, नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं भव्या हॉस्पिटल से। अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज पूछो ना यार। फिलहाल एक म्यूजिकल ब्रेक यानी कि एक अमेजिंग गाना, इसके बाद लौट कर आ रहा हूँ इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, सुनते रहिए आरजे आनंद को। यह है संडे की सुबह, गुड मॉर्निंग।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
2: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
1: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
2: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
1: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
0: मुरादाबाद
1: से संपर्क कीजिए।
2: नियम और शर्तें लागू।
3: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

0: क्या बात है, हाई हील दे नचे तू बड़ी जच्चे। भाई देखो, हाई हील पे नचना भी चाहिए और जचना भी चाहिए, वो आप अगर आप पहन रहे हैं तो। एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन है आपका, आप सुन रहे हैं आनंद को। वेलकम बैक है, गुड मॉर्निंग। हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं, जैसे कि हमने कहा था ब्रेक के बाद वापस आएंगे। और एक बार फिर से स्वागत है आपका, आप सुन रहे हैं मुरादाबाद शहर का अपना रेडियो स्टेशन। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से, गुड मॉर्निंग सर। जी सर, आपको अच्छा लग रहा है बातचीत करके रेडियो पे, तमाम लोग आपको सुन रहे हैं? अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सर संडे को सुबह सुबह हमने आपको परेशान तो नहीं कर दिया है? ऑल राइट सर, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, मेरे पास कुछ क्वेश्चन आए हैं हमारे लिसनर के, और मैंने कुछ सवाल सिलेक्ट किए हैं, तो आपकी इजाजत हो तो पूछ लूँ मैं आपसे? ओके, सो हमारे पास एक क्वेश्चन आया है रिंकू जी का, ये मुझे पूछना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब से मुझे जानना है आनंद जी कि आंखों का नंबर बार बार क्यों बढ़ जाता है और इसे रोका जा सकता है क्या?
1: देखिए, एक नॉर्मल प्रोसेस होती है, जैसे लंबाई बढ़ती है बच्चों में चश्मा लगता है।
0: हाँ जी हाँ जी,
1: तो जैसे लंबाई बढ़ती है वैसे आईबॉल का साइज बढ़ता है।
0: ओके,
1: तो नंबर बढ़ता है तो कोई इशू नहीं है, और जब तक लंबाई बढ़ेगी 70-80 साल तक, तब तक थोड़ा थोड़ा नंबर बढ़ेगा।
0: All right, sir.
1: Okay. लेकिन इसको रोका तो नहीं आ सकता, तो डिले कर रहता है, कुछ मेडिसिन आती हैं वो हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, तो नंबर बढ़ने की स्पीड कम हो जाती है।
0: ओके, एक पेरेंट्स का क्वेश्चन आया है कि आनंद जी मुझे पूछना है सर से, मेरे बच्चों की आंखों में ना बहुत इचिंग होती है बार बार, और काफी बार ये समस्या हुई है लेकिन अभी तक हमने डॉक्टर को नहीं दिखाया है, तो इचिंग की प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्या मैं जान सकती हूँ करके?
1: ये बच्चों में एलर्जीज की प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती है, कुछ बच्चों को ज्यादा होती है, तो उसमें कोई इशू नहीं है, एक बार टेस्ट करा लें।
0: ओके ऑल राइट, ठीक है,
1: जी जी, चेकअप हो जाएगा और वो उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देंगे, ठीक हो जाएगी, खास प्रॉब्लम।
0: ओके सर, एक मानसरोवर कॉलोनी से मैसेज आया है, गीतिका नाम है इनका, ये पूछती है कि आंखों के ऊपर स्वेलिंग आ जाती है जब सुबह मैं उठती हूँ सोकर के, तो ये मतलब नेचुरल है, जेन्युइन है, कोई प्रॉब्लम का संकेत है?
1: देखिए, नेचुरल भी हो सकता है, और दो फैक्टर्स टेस्ट करा लें, एक तो किडनी का किडनी फंक्शन टेस्ट करा लें और दूसरा थायराइड चेक करा लें।
0: ओके, बहुत ही बढ़िया। सर एक फाइनल क्वेश्चन और आया है मेरे पास, ये प्रीतम का सवाल है, प्रीतम जानना चाहते हैं हनुमान मूर्ति से कि आनंद जी सर से पूछेगा कि मोतियाबंद की पहचान की शुरुआत कैसे की जा सकती है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं?
1: इसमें सिर्फ एक ही सिम्टम होता है कि आपको धीरे धीरे धुंधला झुकना शुरू हो जाता है।
0: ओके, तो अगर अगर
1: आपको जो है कोई स्पॉट्स देखते हैं, बाहर लाइट देखते हैं ना, तो उसके चारों तरफ आपको वो सर्कल्स दिखाई सकते हैं, रंगीन सर्कल्स दिखाई देते हैं, जैसे इंद्रधनुष होता है उस तरह के सर्कल दिखाई दे सकते हैं।
0: Okay.
1: मैक्सिमम लोगों को धुंधला दिखना शुरू हो जाता है।
0: ऑल राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एक सवाल, जो लोग 40 प्लस हो गए हैं, जिनकी एज 40 प्लस है, उनको अपनी आंखों की जांच कितनी बार करानी चाहिए और कब कब करानी चाहिए?
1: मेरे ख्याल से 6 monthly is enough.
0: All right. Okay. तो ये बहुत जरूरी हो जाता है ना उनकी आंखों की आईज का चेकअप?
1: 40 के बाद चेंज कम से होने लगते हैं, मसल्स वीक होने लगती है।
0: ओके अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आंखों से जुड़े कौन कौन से भ्रम हैं, कौन कौन से मिथ हैं, जिनको लगता है कि आपको ना आप बताना चाहते हैं कि लोगों को इसमें आप बिलीव नहीं करना चाहिए कि ये चीज बहुत ज्यादा आपके वो खतरे में डाल सकती है, अंधविश्वास भी हम कह सकते हैं?
1: सबसे बड़ा भ्रम तो ये है कि लोगों का मानना ये है कि गर्मी में या बरसात में ऑपरेशन नहीं होता आंख का, सिर्फ सर्दियों में होता है।
0: ओके,
1: बात बिल्कुल गलत है, ऑपरेशन किसी भी समय पे किसी भी मौसम में हो सकता है। इस चक्कर में लोग अपनी आंखों को डिले कर लेते हैं ऑपरेशन, और बाद में कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाता है।
0: बिल्कुल,
1: जैसे ही आपको एडवाइस किया जाए सर्जरी का, तो आप करा लें उसको डिले।
0: Right. तो मतलब उसमें कोई इशू नहीं होगा, राइट?
1: कोई इशू नहीं, राइट।
0: ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर विराग श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं, नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं भाव्या हॉस्पिटल से। डॉक्टर साहब, जाते चलते चलते जाते जाते हमारे तमाम लिसनर को, तमाम श्रोताओं को आप क्या महत्वपूर्ण सलाह और संदेश देना चाहेंगे?
1: बस आराम से रहें, स्वस्थ रहें, अपनी आंखों का ध्यान रखें
0: जी,
1: और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।
0: जी जी, अगर कोई सर आपसे कंसल्टेशन लेना चाहता है, विजिट करना चाहता है, तो कहाँ और कैसे विजिट कर सकता है?
1: जी सर, मेरा हॉस्पिटल है भव्य हॉस्पिटल, दयानंद डिग्री कॉलेज के सामने, सिविल लाइन्स, मुरादाबाद में।
0: ओके ओके, ठीक है डॉक्टर विराग जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, तमाम जानकारियां आपने साझा करी, और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी आपसे स्टूडियो बुलाकर भी ढेर सारी वार्तालाप करें।
1: जी,
0: बहुत बहुत शुक्रिया सर, नमस्कार सर, हैव अ गुड डे।
1: नमस्कार,
0: थैंक यू सर। ये डॉक्टर विराग जी हमारे साथ जुड़े थे भव्या हॉस्पिटल से।

0: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलान।
1: अरे तो भाई गुस्सा क्यों होते हो, यहाँ इंसाफ भी मिलेगा और एंटरटेनमेंट भी, एंटरटेनमेंट भी, क्योंकि आप सुन रहे हैं आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, जो कहता है रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और दिल से कहिए जियो बिंदास।

तेरे पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती का कह देना आई लव यू छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

0: 11:45 हो गए संडे की सुबह, आप सुन रहे हैं आनंद को। इस गाने की रिक्वेस्ट आप में से किसी ने डाली थी, थैंक यू सो मच आप लोगों के लिए, मींस अ लॉट इतने सारे मैसेज करने के लिए। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, इतने प्यारे प्यारे मैसेज संडे की सुबह। हाय, कैसे हाल चाल है? यार इतने बढ़िया मैसेज आ रहे हैं भाई, मेरे को तो मजा आ रहा है यार। मतलब मेरे को ही मजा आ रहा है यार, मेरे को ही मजा आ रहा है। आगे बढ़ते हैं यार, मैसेज आते हैं। ये मेरे पास मैसेज आ रहा है श्रेया का। हाय श्रेया झा, गुड मॉर्निंग, सूर्यनगर लाइन पार से मैसेज किया है। एंड अभी जो शीशा वाला एंजॉय किया गाना, उन्हीं की रिक्वेस्ट पे था। हाय गुड मॉर्निंग जी, कैसे हाल चाल है? गुड मॉर्निंग दौलतबाग से हमारे साथ अंसार हुसैन जुड़ गए आज की सुबह। हाय मॉर्निंग आदाब जी, नमस्ते, आपको भी आदाब, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ये मैसेज मेरे पास कहाँ से पहुँचा है, इन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन बस इन्होंने इतना लिखा है, वेरी गुड मॉर्निंग, आपके डॉक्टर साहब के साथ जो कॉन्वर्सेशन थी वो सुन के बहुत ही अच्छा लगा। ओके जी, ओके, थैंक यू वेरी मच, आपको अच्छा लगा। एक और मैसेज आया, आपने बहुत ही बढ़िया प्ले किया था गाना और आपने डॉक्टर साहब से बहुत अच्छी बात करी, हमें अच्छी लगी, ऐसी ही इन्फॉर्मेशन लेकर आइए आरजे आनंद। थैंक यू सो मच, डेफिनेटली 100% आई एम श्योर ये इन्फॉर्मेशन जो है ना बहुत ही काम की है यार, और आपके लिए हम आगे भी लेकर आते रहेंगे, डोंट फरी, कोशिश तो पूरी करते हैं कि आपके लिए लेकर आते रहें ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन। आने वाला गाना आई हेट लव स्टोरी का टाइटल ट्रैक, ये विशाल दद्दानी की आवाज में एंजॉय करेंगे। भावना ने इस गाने की रिक्वेस्ट डाली थी मेरे पास नैनीताल से। एक और मैसेज पहुंच गया मेरे पास। हाय गुड मॉर्निंग, माय नेम इज पिंकी, गुड मॉर्निंग पिंकी। ये कहां से मैसेज कर रही है, इन्होंने ये तो लिखा ही नहीं है बॉस। क्या यार, कैसे कैसे गाने आते हैं, ये अप्पे चप्पे खप्पे कुछ बोली इनकी समझ नहीं आ रही होती, मेरे को तो भैया पता नहीं सर के पार जा रहा होता है। वेल कुछ गाने सच में सुनने बड़े प्यारे होते हैं यार। विशाल भाई ने बहुत ही कमाल का गाना गाया है। मैं इस गाने की प्रैक्टिस करके आता हूँ पक्का। 11:47 हो रहे हैं, लेकिन इस गाने से पहले कुछ एड ब्रेक आएंगे, उसके बाद अपन यहाँ पर लौट कर आएंगे, और आपने जो मैसेज किए हैं ना ये ताबड़ तोड़ वाले, इनको भी हम डेफिनेटली शामिल करेंगे।
1: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन।
2: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 rupees एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
4: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

यार आपको काम करने का मजा पता है कब आता है? जब आप उस काम से प्यार करते हो, वो काम एक्चुअली आप दिल से करना चाहते हो, जिस काम के लिए आप ख्वाब देखते हो, जब वो काम आपका सक्सेसफुल हो जाता है, जिस काम के लिए आप मैनिफेस्ट करते हो, वो काम सच में हो जाता है, उस मुकम्मल पर जो है वो उस काम को आप जब उस काम में सक्सेसफुल हो जाते हो, यू नो मुकम्मल हो जाता है वो ख्वाब आपका, तो यकीन मानिए उसकी खुशी अलग ही होती है यार। इसलिए तो फिर वो डेडिकेशन, पैशन एंड पोटेंशियल सब कुछ निकल के बाहर आ जाता है। जैसे कि दिस इज माय वर्क, आई लव माय जॉब, संडे हो या मंडे, एवरी टाइम आई एम वेरी वेरी क्रेजी, आई एम वेरी वेरी पैशनेट बिकॉज आई लव दिस टॉकिंग शो। मुझे अच्छा लगता है ये टॉक करना, बातें करना, शो करना, रिव्यू पे यू नो कोई भी चीज़ मुझे दे दी जाए कि यार तुम्हें ये करना है, तो मेरे को मज़ा आता है। मैं सिर्फ आपसे, मेरा कहने का सिर्फ ये मकसद है, पर्पज़ है इसके पीछे का, कि आप जिस काम से प्यार करते हो, जो आपके अंदर का पैशन है, जो आप चाहते हैं करना, प्लीज़ आप उसमें ही करिए। जब आप उसमें करेंगे ना, तो यकीन मानिए आप उसमें अपना 100% से भी 100% दे पाओगे, बिकॉज वो आपका पैशन होगा, वो आपका जुनून होगा। वहाँ पे आपको ना कोई ज़बरदस्ती नहीं बिठा रहा है, वो आप मन से करना चाहोगे। आपको करने में ना एक नई किक मिलेगी, आपको एक नया यू नो अंदर से फील आएगा कि यार ये चीज़ मुझे करनी है। एंड दिस इज द सेम बिकॉज मैं रेडियो करने के लिए इतना एक्साइट, संडे मेरी छुट्टी का दिन होता है, लेकिन आपको इमेजिन भी नहीं, आप कभी इमेजिन ही नहीं कर सकते हो कि संडे में भी मैं इतनी मस्ती वाली बातें कर सकता हूँ। बिकॉज कई लोग चाहते हैं कि नहीं यार संडे है मैं नहीं जाऊँगा, भाई मेरा संडे खराब नहीं करना, एक ही तो संडे मिलता है, मेरे को काम करना है, बट अब उनको संडे नहीं चाहिए यार, अब उनको आप चाहिए। इसलिए भाई जो काम आप करना चाहते हो, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, अगर आपका बच्चे में कोई टैलेंट है, आपका बच्चा चाहता है कि मैं इस प्रोफेशन में कुछ करूं, तो प्लीज़ उसको सपोर्ट कीजिए, उसका मार्गदर्शन कीजिए, उसकी स्किल को, उसके टैलेंट को अप्रिशिएट करिए, शायद कल वो मुकाम हासिल कर ले जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। छोटा सा मैसेज, मुझे लगा थॉट जो है प्यारा सा है, शेयर करना चाहिए आपके साथ, तो मैंने किया। ठीक है जी, तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपका बच्चा जो भी चाहता है, जो भी वो सोच रहा है, प्लीज आप उसका सपोर्ट कीजिए, एंड अगर उसमें कोई अच्छा टैलेंट है तो उसको आप अप्रिशिएट कीजिए, उसको आगे बढ़ाइए। हाय, संडे की सुबह है, 11:54 का समय हो गया है, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, आनंद के साथ हैं आप, सुन रहे हैं आपके शहर का अपना स्टेशन ऑफ द नेशन, ये है FM मुरादाबाद 89.6 MHz, जहां बातें होती हैं ढेर सारी, दिल से दिल तक तमाम सारे श्रोताओं के संदेश मेरे पास पहुंचे हैं। हमारे पास ये वाला मैसेज पहुंचा है प्रेरणा का, ये इस वक्त कांट रोड पे निकल रही हैं संडे का जो है वाइब फील करते हुए, इन्होंने एक पिक्चर शेयर की है, लिखती है हाय आनंद, गुड मॉर्निंग, एंड मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि सुबह सुबह आपको सुन के मेरी एनर्जी हाई हो जाती है। ओ माय गॉड, सच अमेजिंग कॉम्प्लीमेंट यार, थैंक यू सो मच, सेम हियर, बिल्कुल मजा आता है यार आप लोगों से बातें करने में, इसलिए तो इतने हैपनिंग आप बिलीव नहीं करेंगे। ब्रेकफास्ट बना के तो रख दिया, बट मैं खा नहीं पाया बिकॉज 10 एकदम से बच गए यार, अब जाके ब्रेकफास्ट करूंगा मैं, इनफैक्ट ब्रेकफास्ट क्या, अब तो ब्रंच ही करूंगा, ना लंच होगा ना ब्रेकफास्ट होगा, दिस इज ब्रंच यार। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी, डॉक्टर सैयद शारिक अली, मेराज अंसारी, बाबू अंसारी, इनकी पूरी फ्रेंड्स की टोली जुड़ चुकी है हमारे प्रोग्राम में, लिखती है गुड मॉर्निंग आनंद जी, आप कैसे हैं? आई एम वेरी वेल, थैंक यू सो मच ये जानने के लिए जनाब, मेरे हालचाल पूछने के लिए, और मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, आई एम वेरी हैंडसम नो डाउट। हाय हेलो हाय गुड मॉर्निंग, आपका संडे शो मस्ती सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, सॉन्ग भी जो है अच्छे प्ले कर रहे हैं आप, और इन्होंने भी गाने की रिक्वेस्ट डाली है, तो 100% में गाना थोड़ी देर में प्ले कर दूँ। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं आनंद जी? गुड मॉर्निंग, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ जी, और ये मैसेज मेरे पास यहाँ पर पहुँचा है किनका, इन्होंने देखो नाम नहीं लिखा है, बट इन्होंने मैसेज कर दिया है कि आनंद जी सुबह सुबह आपको सुन के बहुत मजा आता है, थैंक यू, तेरे लिए सॉन्ग सुनना चाहते हैं। अरे वाह, वेरी नाइस, गाना बहुत ही प्यारा है। चलो बात करते हैं आज के दिन के बारे में, क्या स्पेशल है, जाते जाते आपको बता तो दूं यार, कुछ लोग जीप निकाल के फोटो खींचते हैं, किसी को भी इतराते हैं जीप निकाल के ना, तो आज वो वाला डे भी मनाया जाता है, ये स्टिक आउट योर टंग डे आज जो है सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा आज जो है बहुत ही अच्छा डे मनाया जाता है, नेशनल जो है आज बहुत सारे नेशनल डेज मनाए जाते हैं, जिसमें आज जो है एक बहुत ही प्यारा सा डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, जिस आई एम टॉकिंग अबाउट नेशनल आइसक्रीम डे, यस आज आइसक्रीम्स डे को सेलिब्रेट किया जाता है, इतनी सारी आइसक्रीम्स, एंड आप इमेजिन कर सकते हो सुबह सुबह आइसक्रीम कौन नहीं खा रहा होगा, लेकिन इस टाइम तो आइसक्रीम लोग खा ही सकते हैं यार, टाइम हो गया है, वो मौसम अच्छा है, तो आज नेशनल आइसक्रीम डे मनाया जाता है। आजकल तो सो मेनी आइसक्रीम्स ना, कितनी सारी आ गई हैं यार, कलरफुल आइसक्रीम्स आ गए हैं, अलग अलग फ्लेवर्स के आइसक्रीम्स आ गए हैं, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आइसक्रीम जो है ना मतलब सुकून तो देती है, ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाओ मजा आता है।
इसके अलावा आज नेशनल फुटबॉल डे मनाया जाता है. यस, राष्ट्रीय जो है फुटबॉल दिवस मनाया जाता है, नेशनल फुटबॉल डे आज मनाया जाता है. तो जो लोग फुटबॉल के बहुत ज्यादा शौकीन है, बहुत ज्यादा क्रेजी है, उनको ऑल द वे बेस्ट. आज फुटबॉल प्रेमियों के लिए बहुत ही स्पेशल डे है. आज नेशनल फुटबॉल डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 19 जुलाई को. जो लोग कराकू पे गाना गाते हैं ना, पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा होता है, फिर वो गा रहे होते हैं उसके साथ लय से लय मिला के, आज उनका भी डे है. इंटरनेशनल कराकू डे आज सेलिब्रेट किया जाता है. तो आप कराकू का इस्तेमाल करते हैं, बहुत बढ़िया. तो ये थी आज के दिन से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर करी. लेडीज एंड जेंटलमैन, आनंद के साथ सुन रहे हैं आपका मॉर्निंग मैगजीन शो. फिलहाल तो ये था संडे मस्ती वाला शो. अभी मेरा जाने का हो गया है टाइम, बिकॉज जाएंगे नहीं अपुन तो फिर आएंगे कैसे यार, है ना. तो जाने के लिए, आने के लिए जाना पड़ता है ब्रो. वेल, थैंक यू वेरी मच आपके मैसेजेस के लिए. मैं आपका दिल से थैंक यू करना चाहता हूँ. सभी लोगों ने बहुत ही प्यारे मैसेज किए हैं एंड आप सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां. 11:58 हो गए हैं. अच्छे अच्छे गाने ऑफकोर्स आगे भी आते रहेंगे. आप लोगों की रिक्वेस्ट जो है वो डेफिनेटली मैं प्ले करके जाऊंगा. थैंक यू वेरी वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ में इतने प्यारे व्हाट्सएप करने के लिए. आई एम सुपर सुपर हैप्पी. आप ऐसे ही जो है हमारे साथ जुड़े रहिए. आगे भी आपके लिए ऐसे अच्छे एंटरटेनमेंट वाले प्रोग्राम्स आते रहेंगे. एंड आज तो बहुत सारे लिसनर्स से हमारी मुलाकात होने वाली है. कहाँ पर? एक बहुत ही अच्छी जगह पर हम लोग मिलने वाले हैं. ढेर सारे लिसनर्स, हमने कुछ लिसनर्स को शॉर्टलिस्ट किया है. आप लोग रेडियो ध्यान से सुनते नहीं होंगे इसलिए आपको पता ही नहीं, हमने एक बहुत ही अच्छा सेगमेंट रखा था संडे वाला. तो आज कॉफी विद आरजेज होने वाले हैं, जिसमें हमने कुछ लिसनर को सिलेक्ट किया है और उनके साथ आज चाय कॉफी होगी. आई एम सो हैप्पी. हमारे कुछ लिसनर्स हमारे से आज मिलने आने वाले हैं. हमारे ऑफिस में नहीं, हम लोग बाहर ही मिलने वाले. बहुत मजा आने वाला है. अगर आप भी चाहते हैं कि आपके साथ भी चाय कॉफी हो, कहीं बाहर हम लोग मिले, ढेर सारी गॉसिप करें सारे लिसनर्स एंड आरजेज, तो उसके लिए आपको मंडे टू सैटरडे सुनना होगा ना हमारा शो. इसी गाने के साथ मैं लूंगा आपसे जाने की अनुमति. हैव अ ग्रेट मॉर्निंग, साइनिंग ऑफ. रखिए अपना ढेर सारा ख्याल. संडे है, एंजॉय करते रहिए. ढेर सारे गाने आएंगे बैक टू बैक एंड हो सकता है आपका फेवरेट गाना भी आ जाए. जिन लोगों ने व्हाट्सएप किया उनका दिल से थैंक यू. जो लोग नहीं कर पाए उनको भी ऑल द बेस्ट यार, कोई इशू नहीं है.

अब देखो ढेर सारे मैसेज पहुंच रहे हैं। हाय गुड मॉर्निंग आनंद, मेरा नाम श्रुति जैन है। गुड मॉर्निंग श्रुति जैन जी, हमें ज्वाइन करने के लिए 12 बज चुके हैं यार। एक मैसेज आ गया, हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है? नमस्ते, आपको सुन के अच्छा लगा, लेकिन मैं आई, आप जा रहे हो? मैम मुझे पता नहीं था ना आप आ रहे हो। एक और व्हाट्सएप पहुंचा है, हाय नमस्ते जी, गुड गुड वाली मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आपको भी, अब तो गुड आफ्टरनून कर लो यार। एक मैसेज आया, हाय गुड मॉर्निंग, आज खुशी नहीं आई है क्या? नहीं नहीं, आज आनंद सुनाई दे रहा है ना, इसीलिए ये मैसेज मेरे पास आया मंगल जी का। ये लिखते हैं, सुप्रभात, मौसम बहुत ही औसम है, लाइट रेन हो रहा है आनंद जी बाहर, और आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। अरे वाह, थैंक यू सो मच। प्रणीत मुझे कहते हैं, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी लगती है आनंद, आप क्या खाकर आते हो, बहुत ही अच्छा बोलते हो यार। ये कॉन्फिडेंस जो आता है ना आप लोगों के कॉम्प्लीमेंट से आता है, सच अ वंडरफुल कॉम्प्लीमेंट यार। चलिए गाइस, आप ऐसे ही सुनते रहिएगा एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके सफर का एंटरटेनिंग वाला साथी होगी मेरी आपकी मुलाकात फिर से इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, पानी पीते रहिए खूब सारा, बारिश हो या गर्मी आप पानी का साथ मत छोड़िए और हमारे स्टेशन का साथ भी मत छोड़िए, ठीक है जी। मस्त रहिए, झकास रहिए, और ऐसे ही कीप लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। बाय, टेक

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है ZIGG प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। ZIGG करो, स्वच्छता की जिद करो।
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
5: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर। 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
2: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
3: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
2: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
3: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
0: मुरादाबाद
2: से संपर्क कीजिए।
3: नियम और शर्तें लागू।
4: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
0: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: अच्छा माहौल है ना। जरीना, आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। जब हम किसी बच्चे के उज्जवल भविष्य की बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले क्या आता है? अच्छी पढ़ाई, अच्छा स्कूल, अच्छे शिक्षक, अच्छा माहौल, है ना?
1: बिल्कुल। और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए तो उसका भविष्य अपने आप संवर जाता है।
0: बात तो सही है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस अच्छे स्कूल तक पहुंचने से पहले भी बच्चे की एक यात्रा शुरू हो चुकी होती है और उसी यात्रा की शुरुआत तय करती है आगे उसकी नींव कितनी मजबूत होगी।
1: अरे मतलब बच्चों का भविष्य स्कूल से भी पहले शुरू हो जाता है।
0: बिल्कुल, जरा और पीछे चलिए।
1: अच्छा तो क्या जन्म के बाद?
0: नहीं, उससे भी पहले।
1: उससे भी पहले? अब तो आप हमारी उत्सुकता बढ़ा रही हैं। आखिर कब से?
0: विशेषज्ञों का कहना है कि एक बच्चे के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत उसकी माँ से होती है। जब एक महिला स्वस्थ होती है, उसे पर्याप्त और संतुलित पोषण मिलता है, तभी उसके बच्चों को भी जीवन की मजबूत शुरुआत मिलती है।
1: यानी बच्चे का भविष्य केवल उसके जन्म के बाद नहीं बल्कि माँ के स्वस्थ और पोषण से ही तय होना शुरू हो जाता है।
0: बिल्कुल, जब हम मातृ पोषण की बात करते हैं तो हम केवल एक महिला की सेहत की बात नहीं कर रहे होते, हम उस शक्ति की बात कर रहे होते हैं जो उसे स्वस्थ गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्वस्थ बच्चे की ओर ले जाती है। हम उस मजबूत नींव की बात कर रहे होते हैं जिस पर पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ी का भविष्य खड़ा होता है।
1: और शायद यही वजह है कि आजकल हर जगह मातृ पोषण पर इतना जोर दिया जा रहा है।
0: बिल्कुल सही कहा। हाल ही में समापन हुआ पोषण पखवाड़ा ने भी हमें यही संदेश दिया है कि जीवन के शुरुआती वर्षों में मिलने वाला सही पोषण केवल शरीर से नहीं बल्कि बच्चे के मस्तिष्क के विकास और उसके पूरे भविष्य को प्रभावित करता है।
1: यानी अगर शुरुआत सही हो तो आगे की राह भी मजबूत बनती है।
0: बिल्कुल। और इन्हीं महत्वपूर्ण बातों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है हमारे अपने सेहतिया सिंह और हमारी साथी टीकन देवी जी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद आरजे रीना जी। आप सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी को मेरा स्नेह भरा प्रणाम।
0: सेहतिया जी, अभी हमने बात की कि बच्चे के भविष्य की शुरुआत उसकी माँ से होती है, लेकिन कई लोग सोचते हैं कि बस पेट भर खाना खा लिया वही काफी है। क्या सचमुच माँ का पोषण इतना महत्वपूर्ण है?
2: बिल्कुल महत्वपूर्ण है आर्चरीना, और यह केवल गर्भावस्था की बात नहीं है। जब किसी महिला को रोज संतुलित और पौष्टिक भोजन मिलता है तो उसका शरीर मजबूत रहता है, उसमें काम करने की ऊर्जा रहती है और वह बीमार भी कम पड़ती है और अपने परिवार की बेहतर देखभाल कर पाती है। लेकिन जब वही महिला माँ बनने वाली होती है तब उसका शरीर सिर्फ उसका अपना नहीं रहता, गर्भ में पल रहे बच्चे को मिलने वाला हर पोषण उसी के शरीर से पहुँचता है। इसलिए माँ जितनी स्वस्थ होगी बच्चे की शुरुआत भी उतनी ही बेहतर होगी।
1: यानी माँ जो खाती पीती है उसका सीधा असर बच्चे तक पहुँचता है।
2: बिल्कुल, गर्भ में पल रहे बच्चे का पूरा विकास, उसके शरीर, उसके अंग, यहाँ तक कि उसका मस्तिष्क का विकास भी माँ के स्वस्थ और पोषण पर ही निर्भर करता है।
1: यानी माँ की थाली जितनी पौष्टिक होगी बच्चे का भविष्य भी उतना ही मजबूत होगा।
2: बिल्कुल सही कहा टीकन जी।
0: सेहतिया जी, आपने पोषण तत्वों की बात की, आजकल एक और शब्द बहुत सुनने को मिलता है, अनीमिया, यानी खून की कमी। आखिर यह समस्या कितनी गंभीर है?
2: आर्चरीना, ये समस्या बहुत गंभीर है। सबसे बड़ी चिंता है इस बात की है कि यह महिलाओं को वर्षों तक पता ही नहीं चलता है कि उनमें खून की कमी है। वे कमजोरी, थकान या चक्कर आने को सामान्य बात समझकर नजरअंदाज कर देती हैं। लेकिन जब शरीर में पर्याप्त खून नहीं होता तो शरीर के अलग अलग अंगों तक ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं पहुँच पाता और इसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है,
1: इसीलिए उन्हें हमेशा थकान रहती है।
2: बिल्कुल आरजे, जल्दी थक जाना, कमजोरी महसूस होना, चक्कर आना, सांस फूलना, काम करने की क्षमता कम होना, ये सब खून की कमी के सामान्य लक्षण हैं। लेकिन अगर यही समस्या गर्भवती महिलाओं में हो तो जोखिम और भी बढ़ जाता है।
0: किस तरह का जोखिम?
2: बिल्कुल आरजे रीना, समय से पहले प्रसव हो सकता है, कम वजन वाले बच्चों का जन्म हो सकता है और प्रसव के समय अगर ज्यादा रक्तस्राव हो जाए तो पहले से एनीमिक महिला के लिए स्थिति जानलेवा भी हो सकती है।
0: अरे, हम तो हमेशा यही समझते थे कि खून की कमी का मतलब बस थोड़ा कमजोर महसूस करना।
1: यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। अनीमिया

0: पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।
1: लेकिन सेहतिया जी, अक्सर लोग सोचते हैं कि गर्भ ठहरने के बाद ही अच्छा खाना शुरू करना चाहिए, क्या तैयारी उससे पहले भी जरूरी है?
2: बिल्कुल, स्वस्थ गर्भावस्था की तैयारी तो बहुत पहले से शुरू हो जानी चाहिए। अगर एक किशोरी स्वस्थ है, उसका भोजन संतुलित है, उसे आयरन की कमी नहीं है, तो भविष्य में गर्भावस्था में अधिक सुरक्षित रहती है।
0: यानी एक स्वस्थ माँ बनने की शुरुआत एक स्वस्थ बेटी से होती है।
2: बिल्कुल, आपने सही कहा।
1: हाल ही में पोषण पखवाड़ा का मुख्य विषय बच्चों के मस्तिष्क के विकास पर था। क्या पोषण का दिमाग से भी इतना गहरा संबंध है?
2: बिल्कुल, बच्चे के मस्तिष्क का विकास गर्भावस्था के दौरान ही शुरू हो जाता है। उस समय आयरन, फॉलिक एसिड, आयोडीन और DH जैसे पोषक तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
1: और इसी से जुड़ा एक शब्द हम अक्सर सुनते हैं, पहले हजार दिन। आखिर इसका मतलब क्या है?
0: पहले हजार दिन यानी गर्भधारण से लेकर बच्चे के 2 साल का होने तक का समय। विशेषज्ञ इसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दौरा मानते हैं। इस दौरान बच्चे के मस्तिष्क, शरीर और रोग प्रतिरोधक क्षमता का सबसे तेज विकास होता है। अगर इस समय पूरे समय सही पोषण और सही देखभाल मिले, बच्चे के स्वस्थ और सक्षम नागरिक बनने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती है।
2: टीकन जी, अब हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि बच्चे के जन्म के बाद सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज क्या होती है?
0: बच्चे के जन्म से पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करना। बहुत से लोग पहले दूध को फेंक देते हैं, जबकि यही सबसे बड़ी गलती है। माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध, जिसे कैलोस्टम कहा जाता है, बच्चे के लिए पहले प्राकृतिक सुरक्षा कवच होता है। ये उसे कई संक्रमण से बचाने में मदद करता है। इसके बाद पहले 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध ही देना चाहिए। इस दौरान पानी, शहद, गुट्टी या कोई दूसरा भोजन देने की जरूरत नहीं होती।
1: और जब बच्चा 6 महीने का हो जाए?
2: बिल्कुल RJ, तब माँ के दूध के साथ साथ पूरक आहार शुरू करना चाहिए। घर में उपलब्ध पौष्टिक भोजन जैसे दाल, खिचड़ी, हरी सब्जियाँ, फल, अंडे और अन्य स्थानीय पौष्टिक खाद्य पदार्थ बच्चे के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
1: और जब बच्चा 6 महीने का हो जाए,
2: तब माँ के दूध के साथ साथ पूरक आहार शुरू कर देना चाहिए। घर में उपलब्ध पौष्टिक भोजन जैसे दाल, खिचड़ी, हरी सब्जी, मौसमी फल, अंडा, जहाँ परिवार खाता हो, दही और अन्य स्थानीय पौष्टिक खाद्य पदार्थ बच्चों के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शुरुआत ही थोड़ी थोड़ी मात्रा में करें, धीरे धीरे बच्चे की उम्र के अनुसार भोजन की मात्रा और विविधता को बढ़ाया जाए।
1: यानी हमें महंगे या बाजार के पैकेट वाले खाने की जरूरत नहीं, अगर घर में उपलब्ध पौष्टिक चीजों का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो बच्चे को अच्छा पोषण मिलता है।
0: बिल्कुल, कई बार लोगों को लगता है कि अच्छा पोषण मतलब महंगा खाना, जबकि सच ये है कि हमारे घरों और आसपास मिलने वाली दालें, हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल, चना, मूंगफली, दूध, दही और अंडे जैसे खाद्य पदार्थ भी बहुत पौष्टिक होते हैं। जरूरी बात यह है कि भोजन संतुलित हो और समय पर दिया जाए।
1: सेहतिया जी, आज की पूरी चर्चा से एक बात साफ समझ में आती है कि बच्चे की अच्छी शुरुआत तभी संभव है जब माँ खुद स्वस्थ हो और पोषित हो।
2: बिल्कुल, अक्सर हम बच्चे के जन्म के बाद उसकी देखभाल पर ध्यान देते हैं, लेकिन यह याद रखना हमें चाहिए कि स्वस्थ बच्चे की शुरुआत एक स्वस्थ माँ से होती है। इसलिए हर लड़की, हर किशोरी और हर महिला के पोषण का ध्यान रखना पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, केवल उसकी अपनी नहीं।
1: और शायद इसी वजह से कहा जाता है, अगर हम एक माँ को स्वस्थ बनाते हैं तो हम केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी मजबूत बना रहे होते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। परिवार में अक्सर महिलाएं सबसे आखिर में खाना खाती हैं या अपनी जरूरतों को सबसे अंत में रखती हैं। लेकिन अब समय है हम ये सोच बदलें, अगर माँ स्वस्थ रहेगी तभी वह अपने बच्चे, परिवार और समाज की बेहतर देखभाल कर पाएगी।
1: और इसमें परिवार की बाकी सदस्यों की भी बराबरी जिम्मेदारी है। पति, सास, ससुर और घर के दूसरे लोग अगर गर्भवती महिला को समय पर भोजन, आराम और स्वास्थ्य सेवाएं लेने के लिए प्रोत्साहित करें, तो इसका सीधा फायदा माँ और बच्चे दोनों को मिलता है।
2: बिल्कुल, गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह का पालन करना, आयरन, फॉलिक एसिड

0: की गोलियां समय पर लेना, संतुलित भोजन करना और पर्याप्त आराम करना, ये सभी बातें मिलकर एक स्वस्थ गर्भावस्था सुनिश्चित करती है।
1: यानी पोषण केवल खाने तक सीमित नहीं है, बल्कि सही जानकारी, समय पर जांच और परिवार के सहयोग से भी जुड़ा हुआ है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने आरजे रीना, जब सही जानकारी और सही व्यवहार के साथ आते हैं तभी अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं।
2: श्रोताओं, आज की चर्चा से हमने कई महत्वपूर्ण बातें सीखी। हमने जाना कि बच्चे के जीवन की सबसे मजबूत नींव उसकी माँ के स्वास्थ्य और पोषण से शुरू होती है। गर्भावस्था से पहले किशोरियों का अच्छा पोषण, गर्भावस्था के दौरान संतुलित आहार, एनीमिया से बचाव, नियमित स्वास्थ्य जांच और आयरन फॉलिक एसिड का सेवन, ये सभी स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चे के लिए बहुत जरूरी है।
1: हमने ये भी समझा कि बच्चे के पहले 1000 दिन उसके पूरे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू कराना, पहले 6 महीने तक केवल माँ का दूध देना और उसके बाद समय पर पौष्टिक पूरक आहार शुरू करना बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बेहद आवश्यक है।
2: और मैं सभी बहनों और परिवार से यही कहना चाहूँगी कि अपनी सेहत को कभी नजरअंदाज ना करें, समय पर स्वास्थ्य केंद्र जाएं, अपनी नियमित जांच कराएं, आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह के अनुसार लें और घर में उपलब्ध पौष्टिक भोजन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं।
0: अगर आपके मन में पोषण, गर्भावस्था या बच्चे की देखभाल से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो अपने नजदीकी आशा कार्यकर्ता, ANM, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या स्वास्थ्य केंद्र से जरूर संपर्क करें। सही जानकारी ही सही निर्णय लेने की सबसे बड़ी ताकत है।
1: तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम से बस इतना ही याद रहे, एक स्वस्थ माँ ही एक स्वस्थ बच्चे की पहली शिक्षक, पहली पोषण दाता और पहला सुरक्षा कवच होती है। जब माँ स्वस्थ होगी तभी बच्चा स्वस्थ होगा, परिवार खुशहाल होगा और हमारा समाज भी मजबूत बनेगा।
2: इसी उम्मीद और इसी संदेश के साथ अब हमें दीजिए अनुमति, अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे एक नए विषय, नई जानकारी और नए संदेश के साथ।
0: धन्यवाद आरजे। सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि अपने परिवार की महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण का विशेष ध्यान रखें।
2: धन्यवाद। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें और अपने आसपास के लोगों तक भी ये जानकारी जरूर पहुंचाएं। इसी के साथ आज का कार्यक्रम हमारा यहीं पर समाप्त होता है और जाने से पहले लेंगे हम अपनी सेहत की शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
1: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है।
0: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
2: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
2: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
3: सेहत सही तो लाभ सही।
1: तो श्रोताओं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बने रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।
4: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है ZIG प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। ZIG करो, स्वच्छता की जिद करो।
5: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट TB, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ गई और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी समस्या की जो हमारे आसपास बहुत आम है लेकिन कई बार समय रहते पहचान नहीं हो पाती, गर्भ अवस्था के दौरान खून की कमी यानी अनीमिया। कई बार लोग सोचते हैं कि गर्भवती महिलाओं को कमजोरी, थकान या अचानक चक्कर आना तो सामान्य बात है, लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही होता है? क्या इसके पीछे खून की कमी भी हो सकती है? अगर हाँ तो इसे कैसे पहचाना जाए, अब जांच करानी चाहिए, कब जांच करानी चाहिए और माँ और बच्चे दोनों को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए, इसी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ हमारे अपने सेहतिया जी और टीकन देवी जी। सेहतिया जी, सबसे पहले तो यही बताइए कि आखिर ये है अनीमिया है क्या?
2: देखिए आरजी रीना, सरल भाषा में कहते हैं जब शरीर में खून की कमी हो जाती है या खून में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो उसे अनीमिया कहा जाता है।
1: और गर्भवती महिलाओं में यह इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है?
2: क्योंकि गर्भावस्था के दौरान माँ के शरीर को अपने साथ साथ कई बच्चे की कई जरूरतों को भी पूरा करना होता है। ऐसे में आयरन और फोलिक और एसिड की जरूरत काफी बढ़ जाती है। अगर यही जरूरत पूरी ना हो तो खून की कमी हो सकती है।
1: तो क्या खून की कमी का असर केवल गर्भवती महिलाओं पर पड़ता है?
2: नहीं, बिल्कुल नहीं आर्जरीना, इसका असर गर्भवती महिलाओं और बच्चों दोनों पर पड़ सकता है। अगर समय पर पहचान और इलाज ना हो तो समय से पहले प्रसव, कम वजन का बच्चा और मां के स्वास्थ्य से जुड़ी कई परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसीलिए जितनी जल्दी पहचानना होगा उतना ही बेहतर परिणाम मां और बच्चे दोनों के लिए होगा।
1: यानी गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य सीधे बच्चे के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है?
2: बिल्कुल आर्जरीना, और इसी वजह से विशेषज्ञ अक्सर कहते हैं कि हम केवल बीमारी का इलाज नहीं करना चाहिए बल्कि कुपोषण और अनीमिया के दृष्टि चक्र भी तोड़ना है।
1: दृष्टि चक्र वह कैसे?
2: अगर कोई गर्भवती महिला खुद कुपोषित है और के शरीर में खून की कमी है तो उसका असर गर्भावस्था और बच्चे के स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। बाद में बच्चे को पर्याप्त पोषण ना मिले तो वह कुपोषण और खून की कमी की समस्या से प्रभावित हो सकता है। इसी तरह कुपोषण और अनीमिया एक दुष्चक्र पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता आ रहा है, इसीलिए गर्भवती महिला का पोषण, जांच और समय पर इलाज बहुत ही जरूरी है।
1: दोस्तों, यह बात सचमुच सुनने वाली है, यानी आज मां के स्वास्थ्य में किया गया निवेश आने वाले बच्चे के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। सेहतिया जी, कई श्रोता सोच रहे होंगे कि खून की कमी के लक्षण क्या होते हैं?
2: देखिए आरजी रीना, अगर आयरन की कमी है, अगर गर्भवती महिला बहुत कमजोर महसूस करती है अपने आप को, अगर उसे चक्कर आते हैं, सांस फूलता है, दिल की धड़कन तेज होने लगती है या रोजमर्रा का काम भी भारी लगने लगे तो केवल थकान ही नहीं हो सकती, यह आयरन की कमी के लक्षण भी हो सकते हैं।
1: लेकिन कई बार तो लोग इन बातों को गर्भ अवस्था का सामान्य हिस्सा मानकर नजरअंदाज कर देते हैं
3: और यही सबसे बड़ी गलती है। हमारे गांव की सीमा की कहानी सुनिए। दूसरी बार गर्भवती थी, लगातार कमजोरी रहती थी। घर वाले कहते थे गर्भ में बच्चा है, थोड़ा बहुत तो होगा ही। लेकिन एक दिन आशा बहन उसे स्वास्थ्य केंद्र लेकर गई। वहां खून की जांच हुई, पता चला कि उसे एनीमिया है। अगर जांच नहीं होती तो शायद ये बात पता ही नहीं चलती।
1: फिर क्या सीमा ने इलाज शुरू कराया?
3: हाँ, उसने स्वास्थ्य कर्मी की सलाह मानी, नियमित जांच कराई और अपने खान पान पर भी पूरा ध्यान दिया। कुछ समय बाद उसकी स्थिति में सुधार आने लगा। यही वजह है कि समय पर पहचान बहुत जरूरी है।
1: यानी केवल लक्षण देखकर अनुमान लगाने के बजाय जांच करवाना जरूरी है।
3: बिल्कुल, और इलाज तब संभव होगा जब पूरा परिवार गर्भवती महिला के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देगा।
1: अब सबसे जरूरी सवाल, गर्भवती महिलाओं को जांच चेकअप कराना चाहिए।
2: गर्भ ठहरते ही स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण कराना चाहिए, उसके बाद हर ANC संपर्क पर जांच करवानी चाहिए।
1: ANC यानी गर्भावस्था के दौरान होने वाली नियमित जांच।
2: बिल्कुल, और पूरी गर्भावस्था में कम से कम 4 ANC जांच करानी चाहिए।
1: और इन जांचों में क्या क्या देखा जाता है?
2: कई बातें देखी जाती हैं RJ, लेकिन खून की जांच बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इससे पता चलता है कि गर्भवती महिला में खून की कमी है या नहीं।
1: अगर जांच में खून की कमी मिलती है तो क्या हर स्थिति एक जैसी होती है?
2: नहीं, खून की कमी अलग अलग स्तर से हो सकती है। अगर हीमोग्लोबिन 10 से 10.9 ग्राम के बीच हो तो इसे हल्का अनीमिया कहा जाता है। 7 से 9.9 ग्राम के बीच हो तो मध्यम अनीमिया, और अगर 7 ग्राम से कम हो तो गंभीर अनीमिया।
1: यानी हर स्थिति में एक जैसा इलाज नहीं होता।
2: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: अब बात करते हैं इलाज और बचाव की। अक्सर IFA और MMS का नाम सुनने को मिलता है, आखिर ये है क्या?
2: आर्जेरीना IFA यानी आयरन और फॉलिक एसिड की गोली, और MMS ऐसी पूरक गोलियां हैं जिनमें आयरन के साथ कई जरूरी विटामिन और खनिज भी होते हैं, जो गर्भवती महिलाओं और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है।
1: यानी MMS सिर्फ आयरन नहीं बल्कि कई जरूरी पोषक तत्वों का समूह है।
2: बिल्कुल,
1: लेकिन क्या केवल गोलियां ही पर्याप्त हैं?
2: नहीं, पूरक गोलियां महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनके साथ संतुलित और पौष्टिक भोजन भी उतना ही जरूरी है।
3: बिल्कुल सही, केवल गोलियां खाने से बात पूरी नहीं होती। घर का भोजन और पूरक आहार दोनों महत्वपूर्ण हैं।
1: किस तरह का भोजन करें?
3: घर में जो उपलब्ध हो उसमें पौष्टिकता पर ध्यान दें। खासतौर पर प्रोटीन युक्त भोजन बहुत महत्वपूर्ण है। दालें, चना, राजमा, दूध, दही, अंडा या स्थानीय रूप से उपलब्ध अन्य प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ शरीर को ताकत देने में मदद करते हैं।
1: यानी भोजन में केवल मात्रा नहीं गुणवत्ता भी जरूरी है।
3: बिल्कुल, गर्भवती महिला को पर्याप्त भोजन, पूरक आहार और प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ मिलने चाहिए। परिवार को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसे सबसे आखिर में नहीं बल्कि प्राथमिकता के साथ भोजन मिले।
1: सेहतिया जी, अब एक ऐसा शब्द जिसका नाम लोग आजकल ज्यादा सुन रहे हैं, IVFCM, यह क्या है?
2: सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि IVFCM हर गर्भवती महिलाओं के लिए नहीं होता।
1: अच्छा?
2: हाँ, इसका उपयोग उन गर्भवती महिलाओं में किया जा सकता है जिनमें जांच के बाद मध्यम या गंभीर आयरन की कमी से होने वाले अनीमिया पाया गया हो और डॉक्टर को लगे कि तेजी से सुधार की जरूरत है।
1: यानी पहले जांच, फिर डॉक्टर की सलाह।
2: बिल्कुल सही आर्जेरीना, और भी सरल भाषा में कहें तो यह आयरन शरीर में चढ़ाया जाता है। नसों के रास्ते ड्रिप लगाकर इसका इस्तेमाल उन स्थितियों में किया जा सकता है जहां जांच में आयरन की कमी होने वाले मध्यम या गंभीर अनीमिया पाया गया हो और डॉक्टर की तेज तथा निगरानी में इलाज जरूरी समझें।
1: तो लोग अपने मन में इसकी मांग नहीं कर सकते?
2: नहीं, कौन सा इलाज उचित है इसका निर्णय स्वास्थ्य केंद्र की सलाह और डॉक्टर की जांच पर आधारित होता है।
3: और एक बात याद रखिए, इलाज का सही रास्ता जांच, डॉक्टर की सलाह, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र और जरूरत होने पर आगे की निगरानी।
1: दोस्तों, आज की चर्चा से एक बात साफ हो गई कि कमजोरी को सामान्य मानकर टालना सही नहीं है।
3: बिल्कुल, अगर घर में गर्भवती महिला है तो उसकी जांच समय पर करवाएं, उसे पौष्टिक भोजन दीजिए, पूरक आहार और IFA, MMS जैसी पूरक गोलियां नियमित लेने में मदद कीजिए और स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े रहिए।
2: याद रखिए, जो गर्भवती महिलाएं गर्भ ठहरते ही पंजीकरण करवाती हैं, समय समय पर स्वास्थ्य केंद्र जाती हैं और पूरी गर्भावस्था में कम से कम 4 ANC की जांच कराती हैं, उनके स्वस्थ रहने और बच्चे के स्वस्थ पैदे होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है।
1: बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, आज का पहला कदम क्या हो? अगर घर में गर्भवती महिला है तो उससे पूछिए क्या उसका पंजीकरण हुआ है, क्या उसकी खून की जांच हुई है, क्या वह नियमित ANC जांच करवा रही है, क्या वह IFA या MMS जैसी पूरक गोलियां ले रही है, क्या उसे पर्याप्त पौष्टिक भोजन और प्रोटीन युक्त आहार मिल रहा है। याद रखिए, समय पर पहचान, अच्छा पोषक, पूरक और आहार, सही इलाज से माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य बेहतर बना। बनाया जा सकता है। इसी संदेश के साथ हम लेते हैं आपसे विदा, फिर मिलेंगे सेहत सही लाभ कई के अगले अंक में, जहां हम बात करेंगे मध्यम और गंभीर अनीमिया तथा आईवी और एफसीएम की भूमिका पर। नमस्कार, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6।
2: मुरादाबाद 89.6, मेरा नाम आरजी आनंद है। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सेहत सही तो लाभ कहीं, और आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे गर्भ अवस्था में एनीमिया की पहचान, जांच, पोषण और IFA MMS एवं समय पर जांच और इलाज। इसके विषय पर बात करने के लिए आज हम मौजूद हैं वुमेन हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट वुमेन हॉस्पिटल फ्रॉम मुरादाबाद सिविल लाइन्स, जहाँ पर हमारे साथ आज हमारे बीच में मौजूद हैं डॉक्टर सोनम रस्तोगी जी, गायनेकोलॉजिस्ट हमारे साथ इस सेशन में मौजूद रहेंगी। उनसे हम आज ढेर सारी बातचीत करेंगे। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस प्रोग्राम में। मैम थोड़ा सा मैं चाहूंगा एक बार आप भी हमारे लिसनर्स को अपने बारे में प्लीज बताएं।
4: नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनम रस्तोगी जिला महिला अस्पताल में स्त्री व प्रसूति रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूँ।
2: ओके मैम, थैंक यू सो मच। तो मैम एक सेशन हम आपके साथ करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला मेरा क्वेश्चन होगा कि गर्भ अवस्था में अनीमिया के समय पर पहचान के लिए कौन कौन सी जांचें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो हर बार विमेन्स स्किप कर देती हैं, उनके विषय में थोड़ा सा आप बताइए।
4: गर्भावस्था में एनीमिया के लिए जो जांचें हैं, उसमें सबसे जरूरी जो जांच है वो हीमोग्लोबिन की जांच होती है।
2: ठीक है मैम।
4: जिसके लिए हम CBC कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं।
2: ऑल राइट, ठीक है मैम, ओके। तो मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है जांच।
4: बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे ही पता चलता है कि आपके शरीर में खून सही मात्रा में है या नहीं।
2: ओके, ठीक है। अच्छा मैम एक क्वेश्चन और रहेगा, किसी स्तर पर अगर हीमोग्लोबिन सामान्य, माध्यम और गंभीर एनीमिया माना जाता है क्या इसको?
4: बिल्कुल, हीमोग्लोबिन कम से कम 11 ग्राम होना चाहिए गर्भवती महिला के केस में, कम से कम।
2: ठीक है।
4: अगर वो 11 से कम है और 9 से ज्यादा है तो वो माइल्ड एनीमिया में आता है, मतलब हल्का एनीमिया।
2: ठीक है।
4: फिर अगर वो 9 ग्राम से कम और 7 ग्राम के बीच में है तो वो मॉडरेट एनीमिया में आता है, मतलब कि एनीमिया थोड़ा ज्यादा है।
2: ज्यादा है।
4: और अगर 7 ग्राम से भी कम है तो वो सीवियर एनीमिया में आता है। इसका मतलब कि ये जो स्टेज है ये जानलेवा भी हो सकती है। इनका ट्रीटमेंट तुरंत, सब लेवल्स का ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके से होता है, और अगर 7 ग्राम से कम है तो जान का भी बहुत खतरा रहता है और तुरंत खून चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है।
2: ऑलराइट। अच्छा मैम, क्या केवल आयरन की गोलियां ही पर्याप्त हैं, या इसके अलावा जो विशेष खान पान है, जो भोजन है, क्या उसमें भी कोई विशेष बदलाव जरूरी है?
4: भोजन तो सबसे जरूरी है, दवाइयाँ तो सबको नहीं मिल पाती है, सब लोग अस्पताल तक
2: नहीं पहुँच पाते हैं,
4: उन लोगों के लिए तो खान पान बहुत जरूरी है।
2: बिल्कुल,
4: जिन भी चीजों में आयरन की मात्रा है, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, पालक हो गई, बीन्स हैं जितनी,
2: हाँ जी, ये दालें भी, आई थिंक
4: दालें, दालों में प्रोटीन्स होते हैं, वो बहुत जरूरी है।
2: बिल्कुल,
4: क्योंकि खून में आयरन भी होता है और ग्लोबुलिन भी होता है।
2: राइट।
4: हीम प्रोटीन होता है।
2: राइट।
4: प्रोटीन भी चाहिए हमको और आयरन भी चाहिए। उसको आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए विटामिन सी जो नींबू संतरा इनमें होता है वो भी जरूरत है।
2: ओके, तो मतलब ये सारी चीजों को भी डाइट में मेंटेन करना है।
4: बिल्कुल करना
2: सारे
4: चाहिए। और जितने सेब हैं,
2: हाँ जी, जो
4: फ्रूट्स हैं, ओके, फ्रूट्स हैं,
2: मौसमी फल को ज्यादा शामिल करें।
4: बिल्कुल सही,
2: बहुत ही अच्छा लगा मैम, थैंक यू मैम। एक क्वेश्चन और रहेगा, यदि गर्भवती महिलाएं समय पर एनीमिया का उपचार नहीं करा पाती हैं अनफॉर्चुनेटली, तो क्या माँ और बच्चे पर इसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है?
4: बिल्कुल, गर्भावस्था के दौरान बच्चे का जो ग्रोथ है वो कम हो सकता है और बच्चा गर्भावस्था के दौरान खत्म भी हो सकता है अगर बहुत ज्यादा खून की कमी है तो। ठीक है। फिर डिलीवरी के दौरान क्या दिक्कतें आती हैं? प्रसव के दौरान महिला को ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो सकती है। और क्योंकि जितने भी प्रसव होते हैं, चाहे हम नॉर्मल डिलीवरी से कराएं, चाहे हम सिजेरियन ऑपरेशन से कराएं, सब में खून बहता है, सब में शरीर का खून हीमोग्लोबिन कम हो जाता है।
2: कम हो जाता है।
4: तो जो महिला के अंदर सही मात्रा में खून होगा उसकी डिलीवरी नॉर्मल तरीके से हो जाएगी। नॉर्मल मतलब कि उसकी डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होने के चांसेस है। लेकिन जो महिला पहले से ही खून की कमी है, एक तो उसको खून भी ज्यादा होगा, दूसरा उसका खून डिलीवरी में निकल गया तो हार्ट पे और ज्यादा लोड पड़ेगा।
2: ओह माय गॉड,
4: इसलिए जान का खतरा बढ़ जाता है,
2: कॉम्प्लिकेटेड हो जाता
4: है, बहुत कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। और हमारे देश में तो जितनी भी मात्र की मोर्टैलिटी होती है, मरती है जितनी भी महिलाएं प्रसव में या प्रसव के दौरान या गर्भावस्था में, उसमें सबसे बड़ा कारण हमारे देश में आज भी कुपोषण है, खून की कमी।
2: एग्जैक्टली मैम, थैंक यू सो मच मैम। लास्ट क्वेश्चन रहेगा चाहते जाते, एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर टाइम। आपने इतना इम्पोर्टेंट समय दिया हमारे फिर मुरादाबाद पे हमारे लिसनर्स के लिए। गर्भावस्था के दौरान अनीमिया से बचाव के लिए आपका एक सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज जो आप यहाँ से रेडियो से हमारे डिलीवर करना चाहें।
4: बिल्कुल, मैं सब लोगों से ये बात कहना चाहूंगी कि घर में अपने खान पान का ध्यान रखें। गर्भावस्था शुरू होने से पहले ही, अगर बच्चा प्लान भी कर रहे हैं,
2: हाँ
4: उससे पहले ही अपनी हेल्थ को ठीक रखना है।
2: हाँ,
4: फिर आप जब डॉक्टर से मिलें तो अपनी डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको सारी जांचें करवाएंगे। अगर आप जल्दी चले जाते हैं, किसी डॉक्टर को जल्दी कंसल्ट करते हैं, तो हो सकता है कि सही स्टेज में आपके शरीर में क्या कमियां हैं वो पता लग सके और सही समय से उनका इलाज हो सके कि आपको एक हेल्दी बच्चा मिल पाए।
2: That's very nice, ma'am. Thank you so much. Lovely talking to you, ma'am. हमारे साथ आने के लिए गाइस आप कहीं मत जाइए, आप सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे और प्रोग्राम है आपका फेवरेट। जी हाँ दोस्तों, आप बेसब्री से इंतजार करते हैं इस प्रोग्राम का। एक बार फिर से ये लीजिए, अब आपके इंतजार की प्रतीक्षा खत्म करते हैं। मैं फिर से हाजिर हो गया हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर, जिसका नाम है सोच बदलो। जी हाँ श्रोताओं, इस प्रोग्राम में आज मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा साथ दे रहे हैं हमारे प्यारे से दोस्त अखिल जी। कैसे हालचाल है सर आपके?
2: बढ़िया आनंद जी, बढ़िया। आपके कैसे हालचाल है?
1: मेरे हालचाल बहुत ही अच्छे हैं अखिल जी, आप बताइएगा आपके हालचाल कैसे हैं और गर्मियों में कैसी जा रही है आपकी दिन और रात?
2: गर्मियों में दिन में पसीना,
1: हाँ, रात में मच्छरों ने जीना कर दिया दुश्वार मुश्किल नहीं, ये तो है यार। खैर श्रोताओं, मैं और अखिल जी आज आपके साथ इस प्रोग्राम में रहने वाले हैं। प्रोग्राम का नाम हमने आपको बताया सोच बदलो, और आज हम किस मुद्दे पर डिस्कस करेंगे इस प्रोग्राम के जरिए जरूर आपको पता लगेगा, जैसे कि इसका नाम ही है सोच बदलो। अखिल भाई, आप पहली बार हमारे साथ इस प्रोग्राम में आए हैं और इसका नाम है सोच बदलो, तो कुछ मतलब नाम से कुछ लग रहा है आपको कि इसका क्या टाइटल ऐसा है, तो अंदर क्या होगा इस प्रोग्राम?
2: आपने बिल्कुल सही बात कही। मैं कहता हूँ हालात नहीं बदलते हैं जब तक इंसान भी अपनी सोच नहीं बदलता है।
1: तो है,
2: जब तक हम लोग अपनी सोच नहीं बदलेंगे या किसी चीज को लेके अपने अंदर बदलाव नहीं लाएंगे तो अपने हम हालात भी नहीं बदल सकते।
1: गॉट इट, 100% सही कहा आपने, लेकिन हालात बदलने के लिए अपनी सोच को बदलना बहुत जरूरी है। और आजकल हर इंसान परेशान है, कोई करियर को लेके, कोई रिश्तों को लेकर, और कोई खुद से हार चुका है। तो आज इन सब मुद्दों पर बात करना मुझे लगा बहुत जरूरी है। प्रोग्राम सोच बदलो है कि जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी, मुझे नहीं लगता तब तक चीजें बहुत अच्छे लेवल पे हम कर पाएंगे।
2: नजर बदलो तो नजारे बदल जाते हैं,
1: वाह,
2: सोच बदलो तो सितारे बदल जाते हैं।
1: करेक्ट,
2: कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा बदलो तो किनारे बदल जाते हैं।
1: वेरी नाइस, बहुत ही खूबसूरत बात कही है अखिल जी ने, और बिल्कुल सही बात है, जब आप अपनी दिशा बदलते हैं तो किनारे अपने आप बदल जाते हैं।
2: छोटी छोटी जो बातें होती हैं कभी
1: जी,
2: कभी
1: जी,
2: वो जिंदगी में लाइफ में बहुत ही बड़ा बदलाव ले आती
1: है। करेक्ट, और छोटी सी शुरुआत ही जो है हमें जीवन में वहां तक पहुंचा देती है जहां हम जानना चाहते हैं, जहां हम पहुंचना चाहते हैं, है ना। एक सवाल, अगर सुबह उठते ही इंसान ये सोच ले कि आज भी कुछ खराब होगा तो क्या दिन अच्छा जाएगा?
2: बिल्कुल नहीं, क्योंकि दिमाग वही ढूंढता है
1: जो हम बताते हैं,
2: है ना? वही दिमाग हमारी चीज ढूंढ रहा होता है।
1: और अभी फिलहाल मेरा और आपका दिमाग ढूंढ रहा है एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, क्योंकि जब तक ब्रेक नहीं होगा म्यूजिक वाला तब तक हमारा दिमाग भी ढूंढता रहेगा गाना कहाँ है, गाना आ गया आपका फेवरेट गाना, एक छोटा सा गाना, उसके बाद जल्दी से लौट कर आते हैं। मैं और अखिल आपके ही में जाइए, सुनते रहिए आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो,
2: बजाते रहो और गुनगुनाते रहो।
1: वेरी नाइस।

0: वेलकम बैक है। इस ब्यूटीफुल गाने के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 पे। आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है सोच बदलो। जी अखिल जी, कुछ कह रहे थे आप अभी?
1: मैं यही कह रहा था कि आजकल लोग छोटी सी परेशानी में भी बोल देते हैं मेरी किस्मत ही खराब है।
0: और ये मुझे ऐसा लगता है कि हम नहीं, सभी इंसान इस चीज पे बिलीव करते हैं और सभी बोलते हैं। मोस्टली हर इंसान जब भी स्ट्रेस में होता है या उसका कोई काम नहीं बनता है तो ये चीज को जरूर बोलता है। अखिल भैया, लाइन क्या बोली थी अभी आपने? वो
2: ऐसे बोल दो
0: जी भैया,
1: ओहो मेरी तो किस्मत ही खराब है।
0: और ये जो लाइन है ना, ये अखिल भैया आपने ही, मुझे लगता है दुनिया का हर दूसरा इंसान बोल रहा होता है। करेक्ट,
1: बिल्कुल।
0: दोस्तों, सोच बदलो प्रोग्राम के जरिए कोशिश होती है कि छोटे छोटे टॉपिक्स पे डिस्कस किए जाएं और ये वो टॉपिक्स हम लेकर आते हैं जो एक्चुअली हमारी और आपकी लाइफ में चल रहे होते हैं।
1: अब देखो ना, अगर बारिश हो रही होती है तो कोई बारिश को देखकर ये बोल देता है ओह आज तो ट्रैफिक होगा, बारिश हो रही है, और कोई उसी बारिश को देख के कहता है अरे आज मौसम कितना प्यारा हो गया।
0: बस अपने अपने देखने का तरीका है, नजरिया है ना। लेकिन ये सच है कि प्रॉब्लम सबकी लाइफ में हुई है, फर्क सिर्फ सोच का होता है। अखिल भाई
1: बिल्कुल सही बात कहे।
0: चलो,
1: अरे आनंद भाई, कभी कभी ना अगर कुछ लोग इतने नेगेटिव मिलते हैं कि अगर आप उन्हें फ्री में पिज्जा भी दो ना तो ये कहेंगे आपसे अरे कहीं कोल्ड पिज्जा तो नहीं दे दिया, कहीं ठंडा तो नहीं दे दिया हमें।
0: मतलब पिज्जे के अंदर भी वो नेगेटिविटी ढूंढ लेते हैं। करेक्ट। तो मुझे लगता है कि यहाँ तो फिर पक्का उन्हें सोच बदलने की जरूरत है। और श्रोता, मुझे ऐसा लगता है कि सोच अगली बात से डेफिनेटली बदल जाएगी। और कुछ लोग अखिल भाई इतने पॉजिटिव होते हैं, आप यकीन मानिए कि मतलब अगर उनके घर में उनका वाईफाई ना भी चले तो भी भैया उनको ये लगता है कि चलो आज वाईफाई ना चला ना सही, एटलीस्ट फैमिली से तो बतिया लेंगे भाई, फैमिली से तो बात कर लेंगे। और ये जो गेट टुगेदर वाला टाइम होता है ना, ये एक अलग ही होता है और यहीं पर निकल के आती है पॉजिटिविटी। अगर आपका, मैं तो एक बात और कहना चाहूंगा श्रोताओं, अगर कोई काम आप कर रहे हैं और अगर वो नहीं हो पा रहा है सक्सेसफुल या वो नहीं बन पा रहा है तो आप सोचिए उसके पीछे भी कुछ पॉजिटिव हो सकता है।
1: बिल्कुल।
0: कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारी लाइफ में, अखिल भाई ऐसा होता है, हम बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट करते हैं अपनी लाइफ से और वो हमें नहीं मिलती तो हमें लगता है यार ऊपर वाले ने ऐसा क्यों किया, जबकि थोड़े दिन के बाद उससे भी बेहतर से बेहतरीन हो रहा होता है। फिर हमें लगता है कि यार अगर वो चीज हो जाती तो शायद ये नहीं होता।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो जिंदगी कहाँ परफेक्ट होती है? जिंदगी परफेक्ट कहाँ होती है? नहीं होती ना जिंदगी परफेक्ट। लेकिन अगर सोच पॉजिटिव हो तो वो और सफर थोड़ा सा और आसान हो जाता है।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और मुझे भी लगता है कि दोस्तों जिंदगी देखो परफेक्ट तो कभी नहीं हो सकती, ना ही इंसान कभी परफेक्ट हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक गाना जो मैं लगा रहा हूँ ये जरूर परफेक्ट हो सकता है आपके लिए और हमारे लिए। तो एक छोटा

और इस बेहतरीन गाने के बाद एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन करते हैं मैं और अखिल जी आपका इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सोच बदलो। साथियों, आज का हमारा टॉपिक कोई स्पेशल नहीं है, बस हमने कुछ चीजों को उठाया है, कुछ चीजों को हम चुनकर लेकर आए हैं जिसपे हमें अपनी सोच को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा जो अहम और कड़क वाला मुद्दा बना हुआ है वो है आज के टाइम में सोशल मीडिया। क्यों अखिल जी? सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जिसमें ना जिसके भागदौड़ में छोटे से लेके बड़े तक और बड़े से लेके बुजुर्ग तक भी शामिल है। हर किसी को लग रहा है कि मैं फेमस हो जाऊं, हर किसी को लग रहा है मेरे अच्छे व्यूज आ जाए। और मजे की बात तो यह है दोस्तों, आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जो अपनी फोटोज डालते होंगे ये उम्मीद करके कि शाम तक तो 200 लाइक आ ही जाएंगे, और उस पे 2 लाइक भी ना आए तो आपका मन बड़ा उदास हो जाता है। और ऐसा मेरे साथ भी होता है। मैं आपको बोलूं तो मैं भी कभी बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी डालता हूं तो मुझे भी लगता है यार शाम तक 500 लाइक तो आ जाएंगे, और जब 5 भी नहीं आती तो थोड़ा सा मन उदास होता है। लेकिन फिर वहीं पे हमें अपने मन को चेंज करना है, डायरेक्शन चेंज करनी है। टाइम पे क्या करना है भाई, क्या हम

0: 500 लाइक या 5 लाइक पे अपने आप को थोड़ी रख रहे हैं भाई।
1: बिल्कुल सही बात कही, और हमें सोशल मीडिया से अपने आप को कंपैरिजन करना है क्यों है आनंद?
0: एब्सोल्युटली अखिल भाई, बिल्कुल। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया से ज्यादा अहम और इम्पोर्टेंट है हमारी खुद की लाइफ, हमारी खुद की सेटिस्फेक्शन और हमारी फैमिली। अगर फैमिली खुश है, हम खुश हैं, तो सब बढ़िया है। तो गाइज यहाँ पर भी सोच बदलने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि सोशल मीडिया पे अखिल जी ने दुबई में जाके एक बढ़िया से फूड की फोटो डाली तो मेरे को ये लगे भैया मैंने नहीं डाली तो मेरी लाइफ खराब हो गई, मैं कहाँ बैठा हूँ। ऐसा नहीं सोचना है, अखिल भाई की अपनी लाइफ है, आपकी अपनी है, मेरी अपनी है, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज है।
1: तुमने दुबई बोल के ना कुछ पुरानी
0: मेमोरी याद दिला दी। वैसे मेरे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं, जो महान इंसान है, ये दुबई भी घूम के आ चुके हैं और दुबई में इन्होंने अरीना मरीना सब देखा है, एलेन और पता नहीं अबू धाबी कहाँ घूम के आए हुए हैं भाई।
1: दुबई तो अपने में बहुत ही अच्छी जगह है।
0: और लेकिन यार आज की डेट में पता है सबसे बड़ा स्ट्रेस क्या है अखिल भाई?
1: क्या है
0: यार? मुझे लगता है कि इंस्टाग्राम जो है ना हमारी लाइफ में ऐसे ऐसे आ गया है जैसे मतलब बिना टमाटर की सब्जी नहीं बनती, वैसे इंस्टाग्राम से जब तक खोलो ना ठीक है दिन की शुरुआत नहीं होती।
1: बिल्कुल।
0: तो ये इंस्टाग्राम जो हमारी जिंदगी में आके मतलब इसने तहलका मचाया ना।
1: एक बात बोलूंगा तुमसे कि इंस्टाग्राम में देख के ना कभी भी अपने आप को ना अनसक्सेसफुल मत
0: यार। भी एक मेरा फ्रेंड है, रिसेंटली उसने पता नहीं अनाप शनाप डाला और उसके इतने व्यूज आ गए, इतना वायरल हो गया वो बंदा। अभी किसी और की बात क्यों करे, कॉकरेज की बात कर लेते हैं भाई। कॉकरेज भाई को ले लो, इतने वायरल हो गए यार। तो मतलब कभी कभी लगता है यार फिर हम क्या कर रहे हैं इतने टाइम से, तो वो स्ट्रेस अपने आप ही आ जाता है। आप कहना क्या चाह रहे हैं?
1: मैं तो बस यही कहना चाह रहा हूँ कि ये सब है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइफ। तो अगर हम किसी को देख के अपने आप को अनसक्सेसफुल समझ रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत
0: है। वो मतलब हमें सोच बदलनी चाहिए। हर किसी की लाइफ अलग है, हर किसी की प्रायोरिटीज अलग है, हर किसी का डिजायर अलग है। तो जरूरी नहीं है जो अखिल भाई की लाइफ में चल रहा हो मेरी लाइफ में भी चल रहा हो।
1: और दूसरी बात यह है कि सोशल मीडिया पे ना लोग अपनी हाईलाइट ही दिखाते हैं, उसके पीछे की क्या कहानी है, पूरी कहानी वो किसी को नहीं पता।
0: पॉइंट तो है, और कभी कभी तो ऐसा होता है लोग सिर्फ दिखाने के लिए ही चीजें कर देते हैं भाई। तो दोस्तों आपको अपनी जो है ना सोच को एकदम सही रखना है, जो आप देख रहे हो जरूरी नहीं है वो सच हो। आज भी आप यूट्यूब पे एक इन्फॉर्मेशन डालोगे उसके इतने इन्फॉर्मेशन आएंगे आपको समझ नहीं आएगा सही क्या है और रॉन्ग क्या है। तो हमें सही डायरेक्शन में चलना है। और अभी एक और डायरेक्शन है जहां हमें जाना चाहिए मुझे और अखिल भाई को, वो है एक म्यूजिकल ब्रेक, म्यूजिकल डायरेक्शन, जहां जाएंगे तो थोड़ा सा रिलैक्स और रिलीफ दोनों मिलेंगे, हमारी जुबान को भी, हमारे गले को भी, और आपके कानों को भी मिलेगा सुकून। तो एक छोटा सा गाना, उसके बाद वापस आते हैं मैं और अखिल जी। हाँ, लेकिन याद रखिए दोस्तों, ये इंस्टाग्राम जितना प्यारा है ना उतना टेंशन का कारण भी बन गया आजकल की स्पेशली जेंजी का। कभी कभी तो मेरे अखिल भाई को भी टेंशन हो जाती है कि यार सुबह वीडियो डाली थी शाम तक आई क्यों नहीं, कल जोक बनाया था 2 महीने हो गए तक आया क्यों नहीं। तो इनको भी बहुत टेंशन हो जाती है।
1: इसके लिए तो मैं जरा आनंद को अकेले में पकड़ूंगा।
0: और फिर ये अकेले में पकड़ने गलत मतलब मत समझिएगा श्रोताओं, फिर बाद में कहते हैं बच्चा है तू मेरा। एक काम करते हैं, गाना सुनते हैं, फिर मिलते हैं।

0: ये गाना सुन के तो मैं अपनी चेयर से गिरने वाला था। अखिल भाई ने पकड़ लिया कि बेटा रुक जा, इतना डांस मत कर। वेल टू बी वेरी ऑनेस्ट, गाना बहुत ही मजेदार था ये। और इस गाने के बाद इसी बात पे आपका वेलकम कर लेते हैं जी। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन आनंद एंड अखिल के साथ। सो अखिल जी, आप कुछ अभी माइक के पीछे मुझे चार लाइने, चंद लाइने सुना रहे थे, जरा हमारे श्रोताओं के सामने पेश करें।
1: मैं बहुत ही सिंपल और ये कहना चाह रहा था, हर चमकती चीज जो होती है वो सोना नहीं होती है।
0: बिल्कुल।
1: और हर हंसता हुआ चेहरा खुश हो ये भी जरूरी नहीं होता।
0: लेकिन ये जो हर चमकती चीज सोना नहीं होती, ये कौन सी सोने की बात चल रही है? जो रात को नींद पूरी नहीं हुई वो, या फिर आजकल जो महंगा हो गया है वो? थोड़ा सा विस्तार से बता दें। अच्छा जी, मैं थोड़ा कंफ्यूज में।
1: आनंद, तुम्हारे पास कितना सोना आज बता दो लोगों को।
0: मेरे पास सिर्फ वीकेंड पे ही सोना होता है, सैटरडे एंड संडे, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये दो दिन ही होते हैं। सैटरडे रात को जागता हूँ, संडे को सोना सोना करता हूँ, और उसके बाद भी हो नहीं पाता है, क्योंकि भाई इतना काम पड़ा होता है ना वीकेंड पे, वो भी कम्प्लीट करना होता है।
1: तुम्हारा सोना है ना, वो एक्चुअल में जो दूसरा सोना है उससे ज्यादा कीमती है।
0: करेक्ट यार। और अगर वो सोना कम्प्लीट नहीं है आपका, तो फिर सारे सोने बेकार है, सब अनसक्सेसफुल है। करेक्ट, क्योंकि आपकी हेल्थ भी उसी से जुड़ी है।
1: बिल्कुल सही है। हाँ। वो असली हेल्थी आपकी सोना है ना।
0: और अगर आप टाइम पे सोओगे, टाइम पे उठोगे, तो आपके चेहरे पे जो सोने जैसा निखार आएगा ना, हाँ। भाई साहब, हम शब्दों में नहीं बता सकते हैं। करेक्ट। चलो जी, ट्रैक से नहीं भटकेंगे, सोच बदलो में हम थोड़ा सा फन और एक्टिविटीज ऐसे करते रहते हैं। लेकिन अभी अखिल जी, आपने जो वो चार लाइनें कही थी, वो लाइनें मैं जरा आपसे दोबारा सुनना चाहूंगा। हाँ, हर चमकती चीज
1: सोना नहीं होती,
0: सोना नहीं होती,
1: और हर हंसता हुआ चेहरा खुश हो ये भी जरूरी नहीं होता।
0: बिल्कुल, इस बात में मैं भी कहना चाहूंगा, कंपैरिजन कॉन्फिडेंस खत्म कर देता है श्रोताओं। तो जो ये कंपैरिजन, इसको अपनी लाइफ से हटा देंगे तो कितना बढ़िया होगा अखिल जी।
1: बिल्कुल सही
0: है
1: ना।
0: लेकिन मतलब मुझे लगता है कि हम इंसानों की आदत है, फितरत है, हम ये हटा ही नहीं सकते हैं।
1: हाँ।
0: ये कंपैरिजन करने वाली आदत। वेल, आप आगे क्या कहना चाह रहे
1: हैं? मैं तो ये कहूंगा कि अपने को ना किसी और की कहानी से मत नापिए।
0: हाँ,
1: आपकी जो अपनी जिंदगी है ना, उसकी टाइमिंग अलग है।
0: टाइमिंग अलग है यार, हर किसी की लाइफ के पैरामीटर सेट है,
1: एक अलग ही टाइम लाइन चल रही है, तो वो अच्छी ही चल रही है। कोई ऐसा वो नहीं है कि आप उसे कंपैरिजन में ही निकाल दें या गांव दे।
0: अगर सोशल मीडिया आपका इनर पीस खराब कर रहा है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको रुकने की जरूरत है, थोड़ा सा आपको सावधान होने की जरूरत है। क्यों अखिल जी?
1: बिल्कुल सही बात। और एक थोड़ा सा डिजिटल डिटॉक्स भी करवाएं, इतना सारा डिटॉक्स चल रहा है।
0: डिजिटल डिटॉक्स के बारे में थोड़ा बताएं।
1: थोड़ा सा एक बढ़िया सा गाना लगा दीजिए, वही डिजिटल डिटॉक्स है।
0: हाँ, मैं गाना जरूर लगाऊंगा, और बहुत जल्दी जल्दी हम गाने सुनवा रहे हैं, तो श्रोता हमें सोच रहे होंगे कि आज क्या हो गया है, सारे गाने सुना के जाएंगे क्या?
1: हम थोड़ी स्ट्रेस फ्री कर रहे हैं,
0: थोड़ा मुद्दे की बात भी कर लेते हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि लाइफ में ना एक चीज और है अखिल जी, जिसपे हमें ना थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, थोड़ा सा माइंड को जो है सेट करने की जरूरत है, और थोड़ी सी थॉट्स और अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। वो है फेलियर। हर किसी की लाइफ में ये फेस आता है, मुझे ऐसा लगता है, छोटे बड़े बच्चे हर किसी के जीवन में आता है ना। तो लोग इतना फेलियर शब्द से क्यों डरते हैं, इतना अनकॉन्फिडेंट अनकॉन्शियस क्यों फील करते हैं?
1: मेरे हिसाब से ना, मुझे क्या लगता है, क्योंकि जो सोसाइटी है ना,
0: हाँ,
1: वो सिर्फ आपकी सक्सेस ही सेलिब्रेट करती है।
0: गॉट इट, 100% अग्री विद यू।
1: और हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे फेलियर्स की बहुत ही लंबी कहानी होती है।
0: करेक्ट।
1: हमें तो उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं तो यही कहूंगा कि अगर जो लोग डर रहे हैं, तो कोई डरने की जरूरत नहीं। जब तक फेलियर्स से आपका सामने नहीं होगा, तो सक्सेस का वो मजा भी आप नहीं ले पाएंगे।
0: इनफैक्ट, जब आप फेल होते हो ना अपनी लाइफ में दोस्तों, मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब आप फेल हो रहे होते हो, तो आप ना उस वक्त बहुत कुछ सीख रहे होते हो। इतना आप सक्सेस में जब सेलिब्रेट करोगे, तब नहीं सीखते, इतना फेलियर वाले पीरियड में सीख पाओगे। बिकॉज वो जो फेस होता है ना, वो आपको वो सारी चीजें सिखाता है, वो चेहरों से रूबरू कराता है, जो एक्चुअली आप कभी आप उनको मिल भी नहीं पाओगे।
1: एक बार बताओ आनंद, काम में फेल हुए, बिजनेस नहीं चला, या रिलेशनशिप टूट गया, तो क्या जिंदगी खत्म हो गई क्या?
0: नहीं यार, ये एग्जाम, रिलेशनशिप, बिजनेस, ये तो लाइफ का पार्ट है। अगर इन सब चीजों पे जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता यार कि हमारी जिंदगी नहीं चलेगी। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि फेलियर ना हमारी डायरेक्शन को बदलता है ना।
1: बिल्कुल सही, डेस्टिनी नहीं बदल सकता वो।
0: करेक्ट। तो वही है ना, आपकी अगर डेस्टिनी स्ट्रांग है, आपका आपको पता है कि आपको जाना कहाँ है, अगर आप उस पर फोकस्ड हैं, तो आई एम श्योर आपको कोई नहीं रोक सकता है ना। बट अगर लाइफ में आपको थोड़े से डाउनफॉल मिल रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप थोड़ा सा डगमगा रहे हैं, आपकी लाइफ में थोड़ा सा वो फेस आ रहा है जहां पर आपको लग रहा है कि यार अब मुझे फेलियर का सामना करना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, फुली कॉन्फिडेंस के साथ चलते रहिए। क्योंकि आपको पता है ना आप कहाँ पर सही है, तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। और आपको पता है आपकी मंजिल कहाँ है, तो फिर बस आपको तो भैया अच्छी चीज के साथ, फुल ऑफ पॉजिटिविटी के साथ, पूरी सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ आगे निकलना है। और वो कहना है कि कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे आपके जैसा।
1: क्या बात है
0: ना,
1: क्या
0: इस मोटिवेशन को अपने अंदर लेकर आओ और अपनी सोच को बदलो, देखो जिंदगी कितने प्यारे रिजल्ट देगी। कुछ ज्यादा ही मोटिवेशन नहीं भर दिया आज हमने लोगों में?
1: ऐसा मोटिवेशन दे दिया, कल आ जाएंगे फोन के भाई साहब आ रहे हैं, हम भी एक आरजे बनने वाले हैं।
0: कोई दिक्कत नहीं है जी, चेयर बिल्कुल खाली है, अखिल भाई को थोड़ी देर के लिए बाहर खड़ा करेंगे, आपको अंदर बिठाएंगे, और आपको यहाँ बैठाएंगे, टेंशन मत लो आप। फिलहाल अखिल भाई ने गाने की बात करी थी, तो गाना जो है आ गया है निकल के बाहर, और ये गाना बहुत अच्छा है, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। आपने सुना है गाना?
1: सुना।
0: कयामत से कयामत फिल्म थी आमिर खान साहब की, और ये गाना भाई साहब आज भी मजेदार लगता है मुझे।
1: और गाना गाने के बाद आमिर खान की तो मैं बात कहूंगा, आज क्या नाम कर रखा है
0: आमिर खान साहब ने, अरे गजब। और ये उदित साहब का भी कमाल है, उदित नारायण जी ने जब ये गाना गाए थे तो भाई साहब उनकी भी रातों रात पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी। उदित साहब की आवाज है ना,
1: देखा एकदम आपका जो थे जितने भी फेलियर्स थे सभी एक उस गाने से सक्सेस।
0: एब्सोल्युटली यार। और आमिर खान की भी फर्स्ट मूवी थी क्यामत से क्यामत तक मूवी है, इसमें आमिर खान साहब को अगर आपने नहीं देखा तो ध्यान से देखना, उनका जो फेस है एकदम यंगर वाला क्या लग रहे हैं भाई। एक काम करेंगे, अगर हम इन्हीं पे बातें करेंगे तो पूरा स्टोरी निकल जाएगा, गाना नहीं सुन पाओगे। तो पहले गाना सुनो, उसके बाद लौट कर आते हैं।

दोस्तों, सबसे पहले तो शुक्रिया सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का, जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है। थैंक्स अ लॉट, वी विल मिस यू। हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूं कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है

0: वेलकम बैक यू वंस अगेन, यू आर लिस्निंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। और ये गाना भी आपने सुना कयामत से कयामत मूवी का, और बहुत ही कमाल की फिल्म थी और बहुत ही फैंटास्टिक लगे मुझे तो आमिर खान। और इसमें एक गाना है, मेरा तो सपना है एक चेहरा देखे जो उसको झूमे बाहर। अभी तक वो चेहरा मुझे तो नजर नहीं आया, लेकिन अखिल जी क्या कहना चाहते हैं, प्लीज टेल अस यार।
1: मैं एक्चुअली क्या है ना, अभी हम बात
0: कहते हैं बड़ा नाम करेगा,
1: मगर आमिर खान साहब ने एज अ चाइल्ड एक्टर भी काम किया है। एक मूवी थी यादों की बारात करके,
0: हाँ।
1: और उन्हीं के अंकल हैं, डायरेक्टर थे जो उस मूवी के थे, नसीर साहब थे। तो मतलब बचपन से ही इज लाइक इन एक्टिव, और इतना कहते हैं ना कि बचपन खून में है, तो वो खून वाली ही चीजें थी कि हाँ भाई खून में है एक्टिंग, और इतना अच्छा आज के समय में ऐसा नाम।
0: मेरी तो आमिर खान साहब से बात भी हुई है, एक्चुअली एक रेडियो स्टेशन का नाम तो नहीं लूंगा, तो आमिर खान साहब मुंबई के एक स्टूडियो में थे और मैं अपने घर से खड़ा फोन लगा रहा था। लाल सिंह चड्ढा इनकी मूवी आई थी अभी थोड़े टाइम पहले, तो उसके प्रमोशन के लिए आए थे, तो इन्होंने बोला था जो सबसे क्रिएटिव लाइन सुनाएगा मैं उससे लाइव बात करूंगा। तो मैं बस जस्ट रैंडमली मैंने फोन लगाया एक स्टेशन में, और वो रिकॉर्डिंग आज भी मेरे इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हो। तो आमिर खान साहब ने बोला हाँ कौन बोल रहे हो, मैंने कहा आनंद। तो कह रहे, मैंने कहा मैं आमिर खान से बात कर रहा हूँ। आमिर खान ने बोला यस बेटा मैं आई एम आमिर, टेल मी आनंद कहाँ से हो। मैंने बताया और मेरे को आरजे बनना है, आई एम वेरी पैशनेट, ये वो। तो आमिर ने बोला ठीक है मैं यहाँ के डायरेक्टर से बात करता हूँ, जो वहाँ का प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो भी थे, कि और तुम्हें कुछ एक चांस दिलाते हैं। बट स्टेशन मुंबई में था तो मेरे लिए जाना पॉसिबल नहीं था। तो फिर आमिर खान साहब ने बोला एक राइमिंग बनानी है लाल सिंह चड्ढा की मूवी के ऊपर। तो फिर मैंने बना दिया, मुझे बड़ा मजा आया भाई। जब मैंने बनाया तो ताली वाली सब बजाई, पूरा वीडियो पड़ा हुआ है अखिल भाई। वो लाइन थी कि जाना था मुझे बस के अड्डा, मुझे आज भी याद है, जाना था मुझे बस के अड्डा, लेकिन जैसे रेडियो खोला तो नजर आ गया लाल सिंह चड्ढा। इतनी तालियां बजाई आमिर खान, मतलब आमिर खान इज वेरी हैप्पी कि हाँ यार बंदे ने कुछ तो क्रिएटिव। एक दो लाइन और बोली थी, वो शायद मेरे पास, मुझे ध्यान नहीं है, वो मेरे वीडियो में पड़ा हुआ है। और जब मैंने आमिर खान साहब से बात करी तो उस दिन पूरा दिन मुझे नींद ही नहीं आई भाई, लगा ही नहीं कि मैं कहां बैठा और कहां आमिर खान साहब से, मतलब जिनको पिक्चर में देख रहे हैं उनसे हम बात कर रहे हैं। अपने आप में एक बहुत गोल्डन चांस,
1: हमारे साथ ये वाला वाक्य हो गया कि पापा कहते हैं
0: बड़ा नाम करेगा। हाँ, बट मम्मी को बहुत खुशी हुआ था, मेरी मम्मी को मतलब फेवरेट है आमिर खान। और फिर एक बार मेरी अक्षय कुमार साहब से भी हुई है यार ऐसी, तो दूसरे स्टेशन के, मतलब मैं शुरू से इतना एक्टिव रहा हूँ चीजों में, तो मतलब आई फील कि यार हाँ ठीक है रेडियो पे अगर हम, और रेडियो में भी मेरा आने का मतलब ये नहीं कि सेलिब्रिटी से ही मिलना है, मतलब एक रियल कनेक्शन बनता है। जैसे मेरी बात उनसे हुई मैं खुश हुआ, ऐसी हमारे तमाम लिसनर जो हमसे बात करते हैं उन्हें खुशी मिलती है, तो ये एक अलग ही यू नो हैप्पीनेस होती है। और ये अखिल जी जो बैठे ना, ये भी बहुत कमाल धमाल करके आ चुके हैं ऑलरेडी दिल्ली में, और ये एक बहुत अच्छे स्टेशन में साउंड इंजीनियर जो भी है, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता इनका प्रोफेशन क्या रहा है, बट इन्होंने अच्छा किया है।
1: मैं बताना चाहूंगा, आमिर खान साहब को मैंने भी बहुत नजदीक से देखा है, बात भी हुई है। उनकी एक मूवी की शूटिंग हुई थी जब मैं किंगडम ऑफ ड्रीम्स में था,
0: तो दुबई
1: नहीं नहीं नहीं गुड़गांव में, किंगडम ऑफ ड्रीम्स।
0: अच्छा,
1: तो वहाँ पे ना इनकी शूटिंग थी पीके मूवी की,
0: पीके, ओके, आमिर खान और अनुष्का।
1: हाँ, अनुष्का शर्मा, और दोनों ही आए थे उस गाने को शूट करने के लिए, दोनों ही लोग आए थे। तो मेरी मतलब आमिर खान साहब का तो शॉट रात में था, और रात में आप मतलब मानोगे नहीं, रात में एक दो बजे भी ऐसा लग रहा था कि सुबह के एकदम ताजा उठे हुए और वो शूट कर रहे थे, और उस बीच उनका एक
0: मतलब प्रोडक्टिविटी एकदम मॉर्निंग वाली थी,
1: इतना एक्टिव कुछ पूछो मत। और उस शूट में एक मजे की बात और थी कि उन्हीं के बेटे जुनैद खान वो उसमें असिस्टेंट थे।
0: ओ वाओ, क्या बात,
1: सॉन्ग के असिस्टेंट थे,
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। ये तो जानकर हमें बहुत खुशी हुई अखिल जी, थैंक यू सो मच, आपने ये कड़क अपडेट हमें बताई। और अगर हम कभी आमिर खान से मिले तो जरूर आपका मैसेज तक पहुंचा देंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें, अगर आप हमसे पहले मिले तो हमारा पहुंचा दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल प्रोग्राम है सोच बदलो, और उनका पीके मूवी का इन्होंने जिक्र किया, तो एक मीम बहुत वायरल होता है, अच्छा हमें सिखाएगा, अच्छा हमें बता दिया है, आई एम श्योर आपने देखो ना। और ये मूवी की शूटिंग के दौरान ही मैंने इनके एक इंटरव्यू में पढ़ा था कि इन्होंने इस मूवी में जो डायलॉग बोल रहे ना, अच्छा हमें सिखा दिया है, ये वाला करने के लिए उन्होंने 105 चबाए थे भाई, ये वाले शॉट के लिए आमिर खान साहब ने, वो पान खाते हो और तब ये वाला वायरल होता, तो इस मूवी के लिए उन्होंने 100 पान को खाया यार। एक एक्टर को कितनी मशक्कत करनी पड़ती है सोचो आप,
1: बिल्कुल सही।
0: और दोस्तों ये सिर्फ एक्टर को नहीं, एक रेडियो जॉकी को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कहीं और ट्रैक पे हम लोग आ गए तो हमें वापस अपने ट्रैक पे जाना है। सो वेल, ये जो भी इन्फॉर्मेशन थी हमारे लिसनर्स के काम की, भाई हर किसी को हर चीज नहीं पता होती है, रेडियो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से नई नई इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। तो आगे बढ़ते हैं, और अभी हमारा टॉपिक चल रहा था सोशल मीडिया पे, हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो अखिल जी आप फेलियर के बारे में कुछ जिक्र कर रहे थे।
1: मैं तो कहूंगा यही
0: जी भैया,
1: गिरकर उठना सीख लिया हमने, अब मुश्किलों से डर नहीं लगता,
0: वाह,
1: क्योंकि सपने शहर देखकर नहीं हौसले देखकर पूरे होते हैं। आनंद,
0: हाँ बिल्कुल सही बात है, और हौसले अगर आपके मजबूत है ना तो फिर आपको कोई नहीं पढ़ सकता, कोई नहीं हरा सकता। करेक्ट, तो बस अपने इरादों को मजबूत रखिए, अपनी सोच को अच्छा रखिए, और जिंदगी में कुछ बढ़िया करने के लिए ना कुछ बढ़िया सोचना जरूरी है। कहते हैं जैसा हम सोचते हैं वैसे हम बन जाते, तो ये बिल्कुल फैक्ट है। आप भी अच्छा सोचिए, ऑफकोर्स आपकी लाइफ में भी अच्छा होगा। और आज के छोटे छोटे टॉपिक्स हमारा सिर्फ यही मतलब था, यही मुद्दा था बताने का कि इन सब की वजह से ना हम बहुत भटकते हैं अपनी लाइफ में। सोशल मीडिया हो गया, स्ट्रेस हो गया, फेलियर हो गया, ये सब चीजों के पीछे हम इतना ज्यादा घुस जाते हैं कि हम अच्छी चीजों को देख ही नहीं पाते हैं। हमें लगता है कि भाई यही सब चीजें जो हमें दबा रही हैं और इन्हीं चक्कर में हम आगे नहीं पहुंच पाते हैं। तो थोड़ा सा सोच को बदलिए, सोच बदलोगे तो आपके इरादे बदलेंगे, इरादे बदलेंगे तो आपकी सफलता आपके सामने खड़ी होगी, है ना भैया। और मुझे लगता है अगर आप सही दिशा में प्रयत्न करोगे, सही दिशा में प्रयास करोगे, तो आपको एक ना एक दिन सफलता डेफिनेटली मिलेगी।
1: आनंद कभी अब तुम ये तो नहीं सोच रहे कि मैं अपने आसपास वालों को बदल दूं?
0: यार आसपास वालों को तो नहीं बदल सकता, लेकिन मैं खुद को जरूर बदल लूंगा, क्योंकि ये तो पॉसिबल है नहीं भाई। बट हम सही काम करेंगे तो डेफिनेटली बदल सकते हैं यार,
1: बिल्कुल,
0: है ना। एक इंसान की सोच सब कुछ बदल सकती है, तो बस वही चीज है। बाकी अभी मैं और अखिल जी लेते हैं इजाजत, बहुत सारी ज्ञान और काम की बातें भी हो गई और फिल्मी शिल्मी वाली बातें भी हो गई, एंड जल्दी गुफ्तगू करने के लिए फिर किसी और मोड़ पर नए एपिसोड के जरिए आपसे रूबरू होंगे मैं और अखिल जी। तो अखिल जी जाते जाते आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
1: हाँ बिल्कुल आनंद, बस एक छोटी सी बात ही कहना चाहूंगा मैं कि अगर खुद पर भरोसा हो तो छोटी शुरुआत भी बड़ी बन जाती है।
0: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात आपने कह दिया अखिल जी, और बहुत ही बड़ी बात ही है मुरादाबाद के युवाओं के लिए। बस यही एक प्यारा सा मेरी तरफ से भी संदेश रहेगा कि दोस्तों जिंदगी में ये मत सोचिए कि हर चीज परफेक्ट होगी, परफेक्ट कुछ भी नहीं होता है। जब आप अपनी लाइफ में शुरुआत करते हो ना, वही सबसे पहला और सबसे बेहतरीन कदम होता है।
1: अपने साथ स्माइल रखनी है बस हमेशा।
0: करेक्ट, आपने स्माइल के साथ आगे बढ़िए, नो स्ट्रेस नो टेंशन, सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, अच्छे कर्मों के साथ आगे बढ़ते रहिए। फिलहाल हम भी यहाँ से आगे बढ़ेंगे, एक अच्छे से गाने की प्रस्थान करेंगे और फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ढेर सारा पानी पीते रहिए, गर्मियां बहुत हैं। मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी का इस्तेमाल कीजिए और थोड़े से कूलर शूलर भी चला लीजिए।
1: थोड़ा नहीं, कूलर तो पूरा ही चला,
0: मतलब हाँ भाई यार पूरा ही चला लीजिए। चलिए दोस्तों फिर मुलाकात होगी, बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा, बाय कर दीजिए आप भी,
1: बाय बाय। रेडियो बजाते रहो,
0: गुनगुनाते रहो और सुनते रहो आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। बाय
1: बाय।

0: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो महिला मंच और ये है आपके शहर का अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी आरजे खुशी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जो घर से जुड़ा हुआ है, महिलाओं की स्वास्थ्य और पोषण पर। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि घर में सबसे पहले महिलाएं उठती हैं और सबके बाद मैं ही सोती हैं। सुबह बच्चों का टिफिन बनाना, घर का काम संभालना, कई महिलाएं तो ऑफिस भी जाती हैं, यानी पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनकी कंधों पर होती है। लेकिन एक सवाल है, क्या महिलाएं अपने स्वास्थ्य का उतना ध्यान रखती हैं जितना बाकी लोग रख पाते हैं? अक्सर जवाब होता है नहीं। कई बार महिलाएं जल्दी जल्दी में खाना खा लेती हैं, कई बार अपना खाना ही छोड़ देती हैं। लेकिन हमें ये समझना होगा कि अगर महिलाएं स्वस्थ रहेंगी तभी पूरा परिवार स्वस्थ और खुश रहेगा। इसीलिए आज के इस खास शो में हम बात करेंगे कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें और अपने खान पान में कौन कौन सी चीजें शामिल कर सकती हैं।
1: क्या बात है, बहुत जरूरी बात तुमने कही आज खुशी। सो अब हम बात करते हैं पोषण का महत्व। महिलाओं के लिए सही पोषण बहुत जरूरी होता है, लेकिन कई बार महिलाएं अपने खान पान पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। कई घरों में देखा जाता है कि महिलाएं पहले पूरे परिवार को खाना परोसती है और बाद में खुद खाती है। कई बार जब तक उनकी बारी आती है तब तक खाना ठंडा हो जाता है या कम बचता है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि शरीर को ताकत देने के लिए सही और संतुलित भोजन बहुत जरूरी है। महिलाओं को अपने खाने पीने में हरी सब्जियां, दाल, फल, दूध और अनाज जरूर शामिल करना चाहिए। ये चीजें शरीर को जरूरी पोषण देती है और शरीर को मजबूत बनाती है। इसी के साथ कोशिश करेंगे कि दिन में 3 बार सही समय पर खाना जरूर खाएं। खाना छोड़ना या देर से खाना खाना स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होता है।
0: बिल्कुल रीना जी, आप सही कह रही हो। दोस्तों, एक बहुत बड़ी समस्या जो कई महिलाओं में देखी जाती है वह है आयरन की कमी। आयरन की कमी से शरीर में खून की कमी होती है, जिससे कमजोरी, चक्कर आना, जल्दी थक जाना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कई महिलाएं कहती हैं कि उन्हें हर समय थकान महसूस होती है। इसका एक ही कारण है, शरीर में आयरन की कमी भी हो सकती है। इसीलिए खाने में ऐसी चीजें जरूर शामिल करें जिनमें आयरन भरपूर मात्रा में हो, जैसे पालक, चुकंदर, अनार, गुड़, दाल और हरी पत्तीदार सब्जियां। अगर हम अपने खाने में इन चीजों को शामिल करेंगे तो शरीर को ताकत मिलेगी और कई बीमारियों से भी बचाव होगा।
1: बिल्कुल, बहुत सही बात कही है तुमने खुशी। और अब हम बात करेंगे कैल्शियम का महत्व। दोस्तों, महिलाओं के लिए कैल्शियम भी बहुत जरूरी होता है। कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो हड्डियां कमजोर होने लगती है और आगे चलकर जोड़ों में दर्द या अन्य समस्याएं हो सकती है। इसीलिए महिलाओं को अपने खाने में दूध, दही, पनीर, हरी सब्जियां और सूखे मेवे का जरूर शामिल करना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं कि दूध सिर्फ बच्चों के लिए जरूरी होता है, लेकिन सच यही है कि महिलाओं के लिए भी दूध और कैल्शियम बहुत जरूरी होता है।

0: साथियों, अब हम बात करने वाले हैं पानी के बारे में, पानी के महत्व के बारे में, क्योंकि आपको पता है गर्मियों का समय है और पानी हमारे लिए कितना जरूरी है। दोस्तों, कई बार महिलाएं दिन भर में काम में इतना व्यस्त हो जाती हैं कि पानी पीना ही भूल जाती हैं। लेकिन पानी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। ये शरीर को तरोताजा रखता है और शरीर को गंदगी से बाहर निकालने में मदद करता है। डॉक्टर भी कहते हैं कि दिन में कम से कम 7 से 8 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। अगर आप चाहें तो इसे अपने पास पानी की बोतल रख सकती हैं, ताकि आपको याद रहे और आप समय समय पर पानी पीती रहें।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने कि पानी पीना हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन साथ साथ हम बात करेंगे आराम की जरूरत। इस भाग दौड़ की दुनिया में ना, सच बताऊं, औरतें आराम मानो तो उनके जिंदगी में है ही नहीं। पता नहीं वो कहाँ चला गया है, ये कोई जादू है या क्या है कि उनको थकान कभी फील ही नहीं होती है। तो श्रोताओं, स्वास्थ्य के लिए आराम और नींद भी बहुत जरूरी होती है। कई महिलाएं दिन भर काम करती हैं और रात में भी देर तक जागती रहती है। इससे शरीर को पर्याप्त आराम नहीं मिल पाता है। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेना शरीर के लिए बहुत जरूरी है। जब शरीर को सही आराम मिलता है तो मन भी खुश रहता है और शरीर भी स्वस्थ रहता है और आप कोई भी काम फिर आसानी से कर पाएंगे। कहते हैं ना, जब तक आपकी बॉडी आराम नहीं कर पाती है तब तक आप कोई भी काम करिए, आप अच्छे मन से नहीं कर पाएंगे। ऊपर से आपका सर भारी रहेगा और पूरा दिन लगेगा कि यार क्या ही करूं क्या ना करूं।
0: सर में भी दर्द होने लगता है रीना।
1: बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही खुशी ने। आप जैसे सुबह उठोगे, जब तक आपके अंदर थकान होगी ना, आपके सर में दर्द तुरंत बन जाता है। इसीलिए

0: दोस्तों, रीना जी ने अभी बात की थी आराम के बारे में और अब मैं बात करने वाली हूँ व्यायाम के बारे में। जी हाँ, सुबह सुबह दोस्तों देखिए, हमारा जीवन जो है ना, वो हमारा जो स्वास्थ्य है वो एक धन है और उस धन को हमें कैसे एकत्रित करना है, कैसे इकट्ठा करना है, वो हम कैसे करेंगे आपको पता है, जब हम आप अपने फिटनेस का ख्याल रखेंगे। क्योंकि कहते हैं ना, स्वास्थ्य ही असली धन है। और अब मैं बात करने वाली हूँ व्यायाम के बारे में। दोस्तों, स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम बहुत जरूरी है। अगर महिलाएं रोज 20 से 30 मिनट की सैर करें या हल्का फुल्का योग करें तो शरीर फिट रहता है। व्यायाम करने से शरीर में ऊर्जा बढ़ती है और मन भी अच्छा महसूस करता है। इसीलिए कोशिश करें कि हर रोज थोड़ा समय अपने स्वास्थ्य के लिए जरूर निकालें।
1: बिल्कुल खुशी, तुमने बहुत अच्छी बात कही है। इस भाग दौड़ की दुनिया में ना, हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाते। इसीलिए सभी वुमनिया से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने लिए सुबह आधा घंटा निकालिए, इतना ही काफी है आपके लिए।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
2: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
1: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
2: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
1: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
3: मुरादाबाद
1: से संपर्क कीजिए।
2: नियम और शर्तें लागू।
4: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
5: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर और मैं हूँ आपके साथ आपके आरजे खुशी, लेकर हाजिर हूँ आपका पसंदीदा जी आपका फेवरेट शो बिनास बोल। और आज तो मुरादाबाद के मौसम ने भाई सबका दिल जीत लिया है। हाँ, काली घटाएं आसमान पर छाई हुई हैं, ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं और हल्की हल्की बारिश जैसे हर दिल को सुकून दे रही है। और कुछ लोग इस मौसम में चाय ढूंढते हैं तो कुछ पकौड़े और कुछ किसी अपने की यादों में खो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले दो घंटे तक इस प्यारे से मौसम को और भी खूबसूरत बनाते हैं। ढेर सारी बातें करेंगे, आपकी साथ कनेक्टिविटी बनाए रखेंगे और दोस्तों आपके साथ बातचीत भी हम करने वाले हैं। कुछ मेरे बहुत प्यारे प्यारे से सवाल भी हैं जिनका आपको जवाब देना होगा। एंड संडे की बहुत ही खूबसूरत सी दोपहर है, लेकिन पता है आपको बाहर का वेदर ना ऐसा लग रहा है कि शाम हो गई हो। अभी 3:05 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में राइट नाउ। 19 जुलाई की तारीख है आज, बहुत ही खूबसूरत सा दिन, रविवार का, संडे का, छुट्टी का दिन होता है। अपने फैमिली के साथ आज सेलिब्रेट करने का दिन होता है, जब अपने परिवार के साथ मिलकर रहते हैं, सब लोग टाइम स्पेंड करते हैं। और आज तो मौसम ने भी कमाल कर दिया कि दोस्तों ऐसे मौसम में बाहर घूमने का मजा कुछ और ही होता है। तो दोस्तों अभी मैं आपसे करूंगी बहुत सारी बातें, लेकिन उससे पहले सुनवाती हूँ कुछ ब्यूटीफुल ट्रैक जो आपके दोपहर को बनाएंगे और भी ज्यादा खूबसूरत, इस मौसम को बनाएंगे और भी ज्यादा ऑसम। तो सुनते हैं कुछ गाने, उसकी बात करेंगे आपसे गुफ्तगू।

देखिए दोस्तों, सावन भी आने वाला है बहुत जल्द और खुशी तो यहाँ पर हाजिर हो ही गई है आपके फेवरेट रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 पर। बहुत ही प्यारा सा मौसम है बाहर का, एकदम कूल और दोस्तों आउटसाइड वेदर इज अमेजिंग। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप अभी विंडो के पास बैठे हैं और बाहर की तरफ निहार रहे हैं, रेडियो पर प्यारे प्यारे गाने सुन रहे हैं। आपका संडे तो अमेजिंग हो ही गया है दोस्तों, और क्या चाहिए, इससे प्यारा खूबसूरत संडे और कैसे हो सकता है। हाँ, दोस्तों कभी कभी ना मौसम बदलने से ज्यादा किसी की आवाज दिल का मौसम बदल देती है। उम्मीद है आज हमारी बातें आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगी। और एक प्यारी सी शायरी आप सभी के लिए दोस्तों। बूंदों ने छू लिया है आज हर एहसास को, बूंदों ने छू लिया है आज हर एहसास को, हवाओं ने दे दिया है सुकून हर सांस को। मुस्कुराइए दोस्तों, बारिश का मौसम आया है खुशियों के साथ आपके पास। और अगर अभी भी आप नहीं मुस्कुरा रहे हैं तो गलत बात है, ऐसा मत कीजिए। और दोस्तों इस मौसम में आप क्या कर रहे हैं बताइए मुझे, व्हाट्सएप कीजिए, जल्दी से मैसेज करो, नंबर मैं आपको बताती हूँ 9837896896 9838 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको मैसेज करना है। जी हाँ, और बताना है कि आप इस सुहाने से मौसम में क्या कर रहे हो, चाय पकौड़े बनाने का मन कर रहा है या फिर आनंद ले रहे हैं आप चाय पकौड़ों का। हाँ, फटाफट से बताओ व्हाट्सएप करके, मैं आपको सुनवाती हूँ एक अमेजिंग ट्रैक, बहुत ही प्यारा सा गाना आपके लिए। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए, चिपके रहिए, सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है ZIG प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। ZIG करो, स्वच्छता की जिद करो।

हाई एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक, गुड आफ्टरनून। बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक अभी आपने सुना फ्रॉम द मूवी ओम शांति ओम से। केके की बड़ी खूबसूरत सी आवाज में प्यारा सा ट्रैक अभी आपने सुना। और दोस्तों, वक्त मैं आपको बताती हूँ, 3:33 हो गए हैं। हमने आपसे पूछा था, इस ब्यूटीफुल मौसम में आप क्या कर रहे हो? श्रोताओं बताइए, संडे की खूबसूरत सी दोपहर है, 3:34 हो गए हैं, लेकिन बाहर का नजारा ऐसा लग रहा है ना कि इवनिंग हो गई है, शाम हो गई है। बट अभी शाम नहीं हुई है। और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है रवि कुमार जी का। ये कहते हैं, आरजी खुशी जी गुड मॉर्निंग। ओहो, गुड मॉर्निंग, आपको सुबह लग रही है, अरे वाह क्या बात है, जब जागो तब सवेरा। कोई शाम कह रहा है तो कोई मॉर्निंग कह रहा है, बट अभी हो रही है दोपहर। और रवि कुमार जी कहते हैं, खुशी जी हम तो गर्मा गर्म चाय के साथ पकौड़े खा रहे हैं और बाहर के मौसम का लुफ्त उठा रहे हैं, अरे वाह क्या बात है रवि जी, वेरी गुड। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर रिंकी जी का मैसेज आया है और ये कहती हैं, खुशी मैम कैसी हैं आप? नमस्कार, मैं बहुत ही अच्छी हूँ। और ये कहती हैं कि मैं तो खिड़की के पास बैठी हूँ, बाहर के नज़ारे को देख रही हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है, और आपका शो भी सुन रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे गाने आप प्ले कर रही हैं, संडे अपने आप में बहुत स्पेशल हो गया है हमारे लिए। थैंक यू सो मच रिंकी जी, दिल से शुक्रिया आपका। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है वरुण का, और वरुण कहते हैं, गुड आफ्टरनून खुशी मैम, कहते हैं कि हमारा भी आपकी तरह संडे ऑफिस हमें आना होता है और ऑफिस में ही है, मन तो बहुत है कि बाहर घूमा जाए, लेकिन क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आप ऑफिस में है ना, तो ऑफिस में ही प्यारे प्यारे गाने हम आपको सुनवाएंगे ना, बेहतरीन आपके दोपहर को बनाएंगे और ज़्यादा खूबसूरत। तो वरुण जी, आप परेशान बिल्कुल नहीं होना है, आपको मुस्कुराना है।

और उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है लाइन पार सी। ये मैसेज हमारे पास आया है नमन यादव का, लाइन पार मुरादाबाद से। एंड उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है और ये मैसेज हमारे पास आया है उत्तराखंड से भावना का, कहती हैं हेलो हाय गुड आफ्टरनून मैम, वेरी गुड आफ्टरनून डियर, जय श्री राम आपको भी राधे राधे। कहती हैं कि 3-3-3 हुए, एंजल आ गए और एंजल के पास। अच्छा जी हाँ, ये तो मैजिकल टाइम होता है ना 3-3-3, बट अभी तो 3-7 हो गए हैं। और ये कह रही हैं कि हम आपका शो सुन रहे हैं, अरे वाह थैंक यू डियर। काफी दिनों के बाद आप हमारी आवाज सुन रहे हैं, कैसा लग रहा है बताइएगा मुझे जरूर। उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास आया, हेलो खुशी मैम, उमेश जी का मैसेज आया है और ये गुड आफ्टरनून की जगह गुड इवनिंग पहुंचा रहे हैं। देखो दोस्तों, मैंने कहा था ना कि आज बहुत सारे श्रोता जो है वो कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि मौसम इतना प्यारा है, समझ नहीं आ रहा है। जो मतलब सोकर उठे होंगे ना तो उनको लग रहा है ओ हो शाम हो गई है, घड़ी की तरफ नजर ही नहीं गई है। लेकिन आप टेंशन ना लो, मैं आपको टाइम बता देती हूँ। वक्त हुआ है अभी 3:38 और कुछ खूबसूरत गीत मैंने यहाँ पर चुने हैं आपके लिए, आपकी जो ये खूबसूरत सी संडे की इवनिंग आफ्टरनून है इसको मैं बेहतरीन बनाऊंगी प्यारे गानों के साथ। और दोस्तों शो का नाम बिंदास बोल है तो बिंदास होकर बातें करेंगे। मैंने आपसे मालूम किया है कि इस सुहाने से मौसम में आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है बताइएगा ज़रूर। मैं इंतज़ार कर रही हूँ, आप टेंशन ना लो, मैं खाने नहीं आऊँगी आपके घर, आप बता तो सकते हो ना, तो जल्दी से बताइए और ये प्यारा से गाना सुनिएगा। बस मैं अभी आती हूँ वापस।

0: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
1: नेक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में
1: चाहे फार्मेसी हो मैनेजमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी लॉ एग्रीकल्चर साइंस एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना पुराना सोना लाओ नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस उत्सव ज्वेलर्स आभूषण एक खुशियां अनेक आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद कॉल करें 7055070552
5: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी हाई शुगर पी या हार्ट प्रॉब्लम किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज बांझपन का आधुनिक इलाज पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा अत्याधुनिक लेबर रूम OT SICU MICU हमारी पहचान है एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा
6: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है ZIG प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई ZIG करो स्वच्छता की जिद करो
7: जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी
8: अरे अंकल सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए

हमारी ब्यूटीफुल गर्ल्स ने इस गाने पर डांस किया जमकर, मैं जानती हूँ। ये प्यारा सा गाना, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक फाल्गुनी पाठक जी की बड़ी प्यारी सी आवाज में। सावन में मैं तो मोरनी बनकर छम छम नाचो, ये सिर्फ एक गाना नहीं है बल्कि बारिश की पहली फुहार, मीठी, जी हाँ, सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू और दिल की खुशी का एहसास है। वैसे फाल्गुनी पाठक जी की आवाज़ में वो सादगी और अपनापन जो हर सावन को और भी यादगार बना देता है। आज मौसम भी बहुत ही प्यारा है, सावन तो नहीं है लेकिन मौसम बहुत खूबसूरत है। वैसे दोस्तों मुझे आप बताइएगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोता मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, एंड मुझे नहीं मालूम है कि कौन कहाँ से मुझे सुन रहे हैं, बताइएगा दोस्तों। देखिए हमारे मुरादाबाद का मौसम बहुत ही प्यारा है, आप मुझे बताइए कि आपके शहर का मौसम कैसा है, और उसके लिए हमें व्हाट्सएप करना होगा आपको। तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। वक्त हुआ है अभी 3:53, 3:53 राइट नाउ स्टूडियो की घड़ी में टाइमिंग हो गई है, और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून, अलीशा का मैसेज हमारे पास आया है मुरादाबाद से, कहती हैं कि मैम हम तो अभी मैंगो खा रहे हैं। ओए होए, मैंगो का आनंद लीजिए आप। उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है भावना जी का, नैनीताल से, और ये कहती हैं बहुत दिनों से आपकी आवाज़ सुन रही हूँ, रेडियो नहीं मैं तो सिर्फ सुकून सुन रही हूँ। अच्छा जी, क्या बात है भावना, इतनी प्यारी प्यारी बातें आप करते हो ना, मतलब हमारे दिल को मोह लेती हो आप। उसके अलावा एक और मैसेज मेरे पास यहाँ पर आया है, ये शमा का मैसेज हमारे पास आया है रामपुर से, कहती हैं मैम आपका हमें इंतज़ार है कि आप हमारे घर आएँ और हम आपके लिए चाय पकौड़े बनाएं और सब साथ में मिलकर आनंद लें। ओ हो हो, क्या बात है शमा, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी डियर, आपके घर ज़रूर आएंगे एक ना एक दिन, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। और इतना स्वीट, इतना प्यारा मैसेज आपने भेजा है, उसके लिए शुक्रिया। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास आया है, गुड इवनिंग खुशी मैम, आपका प्रोग्राम हमारे सभी दोस्त सुन रहे हैं बड़े ही प्यार से, और ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं सोनू कुमार जी सेक्टर 10 बुद्धि बिहार से, थैंक यू। तो दोस्तों आप मुझे बताइएगा आप मुझे कहाँ से सुन रहे हैं और आपके शहर का मौसम कैसा है, और इस मौसम में आपको क्या पसंद है, बताओ बताओ, इतना मत छुपाओ, और ये प्यारा सा गाना सुनते जाओ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 पर।

0: ਕਿਹਾ ਸਿਮਰਨ ਜਾ ਜੀ ਲੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
3: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
4: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
5: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
4: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
5: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
4: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
1: मुरादाबाद
4: से संपर्क कीजिए।
5: नियम और शर्तें लागू।

हाँ जी दोस्तों, बारिशों के मौसम में तो आप भीग रहे हैं, लेकिन खुशी को भी सुन लीजिएगा। गुड इवनिंग माय ऑल लवली लिसनर्स, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है बिदास फॉर संडे की शाम। ब्यूटीफुल मौसम और हमारे पास यहाँ पर खूबसूरत मैसेज भी आए हैं जो आपकी एंड हमारी शाम को और भी खूबसूरत बना रहे हैं। दोस्तों समय में आपको बता देती हूँ, 4:10 हो गए हैं और ये प्यारा सा ट्रैक अभी आपने सुना पायल दीप साथ में उदित नारायण जी की खूबसूरत सी आवाज में, प्यारा सा ट्रैक। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है अफरोज फातिमा जी का, कहती हैं, हाय दी, केम छो, मजा माँ, मैं ठीक हूँ। ये गुजराती स्टाइल में जो आप हालचाल पूछते हो ना, बहुत ही अच्छा लगता है। कहते हैं कि दी हम सोकर उठे थे एंड उसके बाद हमने फेस वॉश किया, फिर हमने अमरूद खाना स्टार्ट किया। और आप भी आइए, अमरूद खा लीजिएगा, आपको सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि इस मौसम में मुझे आलू के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। हाँ पसंद तो है, लेकिन उसे बनाने में भी बहुत मेहनत लगती है। देखिए पसंद तो हर चीज़ होती है ना, लेकिन उसके लिए मेहनत भी तो भरपूर करनी पड़ती है। अब एक इंसान सारी चीज़ें करेगा तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा इरिटेट हो जाएगा, थोड़ा परेशान हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। घर में फैमिली में जितने भी मेम्बर्स हैं सबको मिलकर हेल्प करानी चाहिए। उसके बाद उस खाने का जो टेस्ट है ना, अलग ही होता है यार। और नेक्स्ट मैसेज मेरे पास यहाँ पर आया है नैनीताल से, भावना जी का, कहती है, नैनीताल का मौसम कुछ ऐसा है आरजे खुशी जी, बादल नैनीताल में बरस रहे हैं, आरजे खुशी की आवाज़ दिल पर। ओके एक कहती है कि एक भिगाता है बदन को, दूसरा भिगाता है रूह को, नैनीताल का मौसम, चाय की प्याली, खिड़की पर बारिश और कानों में आरजी खुशी की आवाज़, बूंदें गिर रही हैं और शोर भी हो रहा है, लेकिन रेडियो से आवाज़ आ रही है आरजी खुशी की, और भी ज़्यादा सुकून मिल रहा है। ओ माय गॉड, रियली, चलिए ये सुकून आपको ऐसे ही मिलता रहे भावना। थैंक यू, सो स्वीट ऑफ यू डियर, इतना प्यारा मैसेज आपने भेजा है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है नेहा का, और ये मैसेज पहुँचाती है लाइन पार से, कहती है, खुशी मैम गुड इवनिंग, आज का मौसम बहुत ही ऑसम है और हम अपनी फैमिली के साथ आपको सुन रहे हैं, मम्मा गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बना रही है, क्या बात है, तभी हम सोच रहे हैं कि स्टूडियो में इतनी खुशबू क्यों आ रही है, अदरक इलायची वाली, हाँ घर में गर्मा गर्म चाय जो बन रही है। चलिए आप चाय का लुफ्त उठाइए, मैं यहाँ पर आपको सुनवाती हूँ एक और ब्यूटीफुल ट्रैक, उसके बाद करेंगे आपसे बातें, कुछ म्यूजिकल ब्रेक के बाद खुशी आने वाली है।

0: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
1: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
0: पर पापा।
1: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
2: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद। Thank you.

0: ठोकरें खा खा पता चला, फिदा जिस पे होते थे, एक सांप हमारा यार था, हम सांप के साथ सोते थे, हम सांप के साथ सोते थे।
1: तुम्हें इसी पॉइंट पे आके छोड़ूंगा मैं, प्रॉमिस।

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे आईटीएम यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
2: नैक द्वारा ए ग्रेड एनआईआरएफ में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
1: डिप्लोमा से पीएचडी तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
2: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
1: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
2: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
3: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
4: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
5: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
6: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
5: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

गुड इवनिंग दोस्तों, आज 19 जुलाई की तारीख है और दोस्तों आज सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल फुटबॉल डे। दोस्तों फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि टीम वर्क, पेशेंस, डिसिप्लिन और नेवर गिव अप का दूसरा यानी खूबसूरत संदेश भी है। दोस्तों मैदान में 11 खिलाड़ी होते हैं लेकिन जीत तब मिलती है जब पूरी टीम एक दूसरे का साथ निभाती है। यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। जब परिवार, दोस्त और अपने साथ हो तो मुश्किलों से भी मुश्किल सफर भी आसान लगने लगता है। एक्चुअली जब लाइफ में ना प्रॉब्लम्स आती हैं और जब हमारा कोई अपना हमारे साथ होता है ना तो वो मुश्किलें भी फिर आसान लगने लगती हैं। फुटबॉल हमें यही सिखाता है कि हर गोल से पहले मेहनत होती है, हर जीत से पहले संघर्ष होता है और हर खिलाड़ी अपनी टीम के लिए दिल से खेलता है। तो आज के दिन अगर आपको कभी फुटबॉल खेलने का मौका मिले या आपकी कोई पसंदीदा टीम या खिलाड़ी हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मैं आपसे जानना चाहती हूँ, बताइएगा। और आप सभी को हैप्पी इंटरनेशनल फुटबॉल डे। और हमारे पास यहाँ पर कुछ और भी मैसेज आए हैं, मैं उनको भी क्विकली शामिल करती हूँ। शो का नाम है बिंदास बोल, संडे की शाम है, खुशी आपके साथ है और ये है आपके अपने शहर कैफे मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहिए, गन गनाते रहिए। और इतना प्यारा सा क्यूट सा चेहरा है आपका, क्यों मुंह बना के रखा हुआ है आपने? हाँ स्माइल तो करो यार। और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी का, साथ में इनके फ्रेंड्स भी हैं सैयद शारिक अली जी, महराज अंसारी जी, बाबू अंसारी जी। कहते हैं खुशी जी आपको आदाब, आपका शो सुन रहे हैं हम बिंदास फूल संडे में, बहुत ही अच्छा लगता है और सॉन्ग्स भी बहुत ही अच्छे प्ले कर रही हैं आप, उसके साथ साथ बहुत सी अपडेट भी मिल रही हैं। शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर, आपको हमारा शो कार्यक्रम पसंद आ रहा है। उसके अलावा मीनाक्षी का मैसेज हमारे पास आया विकास नगर से और ये कहती हैं गुड इवनिंग डियर खुशी मैम, कैसे हैं आप? बहुत ही अच्छे हैं। आपकी संडे की शाम को बनाने के लिए खूबसूरत यहाँ पर आ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों और भी करेंगे आपसे बातचीत, लेकिन सुनवा देते हैं कुछ और खूबसूरत गाने। आप बताइएगा इस शाम क्या कर रहे हैं आप? देखिए इतना सुहाना सा मौसम है, कहीं बाहर जाने का मन है या फिर घर पे ही गर्मा गर्म चाय बना रहे हैं या फिर चाय पी रहे हैं? बताइए बताइए। चलिए जब तक आप अपने जवाब पहुंचाते हैं तब तक हम आपको एक खूबसूरत सा गाना सुनवाते हैं, बहुत ही प्यारा सा ट्रैक है फ्रॉम द मूवी अर्जुन पंडित से, दिलेर मेहंदी साथ में अलका याग्निक जी की बहुत ही प्यारी सी आवाज और जूही चावला भी दे रही है साथ। तो सुनते हैं इस अमेजिंग ट्रैक को, आपकी शाम को थोड़ा सा और बेहतरीन बनाते हैं, थोड़ा सा आप भी थके, सुबह से बैठे बैठे बोर हो रहे हो ना, तो ये गाना सुनो और हैप्पी हो जाओ।

0: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
2: यार, सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे, सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा, लाइन पार्क, मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

गुड इवनिंग दोस्तों, अभी आपने प्यारा सा ट्रैक सुना फ्रॉम द मूवी मेट्रो इन दिनों से अरिजीत सिंह जी की खूबसूरत सी आवाज में। और सच में हमारे शहर का मौसम तो सुहाना है ना दोस्तों। एवरीवन, टाइम हुआ है 4:47, 48 मिनट हो गए हैं। जैसे मैंने 47 बोला तुरंत 48 हो गए। ओए होए होए, टाइम भी बहुत जल्दी जाता है। और दोस्तों, आज 19 जुलाई है और आप सुन रहे हैं अपने शहर का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। और आज का दिन पूरे भारत के इतिहास में गर्व और सम्मान का दिन है, क्योंकि आज हम याद कर रहे हैं 1857 की क्रांति के प्रथम वीर सेनानी अमर शहीद मंगल पांडे जी को। मंगल पांडे जी सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि वो जज्बा है जिसने गुलामी की बीड़ियों को चुनौती देने का साहस दिखाया। जब पूरे देश अंग्रेजी हुकूमत के डर में जी रहा था, तब उन्होंने अपने अद्भुत साहस से आज़ादी की पहली चिंगारी जलाई। उनका एक ही संदेश था, देश सबसे पहले, और शायद इसी भावना को ये पंक्तियाँ बयां करती हैं। देश सलामी तिरंगे को जिसने तेरी शान है, तिरंगे को हमेशा ऊंचा रखना जब तक जान है। आज हम जिस खुली हवा में सांस ले रहे हैं उसके पीछे न जाने कितने वीरों का बलिदान छिपा है। इसीलिए दोस्तों, आज केवल उन्हें याद ही नहीं ना करें बल्कि उनके साहस, देशभक्ति और ईमानदारी को अपनी जिंदगी में भी अपनाने का संकल्प लें। अमर शहीद मंगल पांडे जी को उनकी जयंती पर शत नमन। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों, सुनते हैं देशभक्ति गीत एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ।

बस मैं लौट कर आती हूँ, आप कहीं मत जाइए, यूं ही बने रहिए, सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और इस शाम को खूबसूरत बनाते रहिए अपनों के साथ।

0: बिल्कुल दोस्तों, सावन का सभी को बेसब्री से इंतजार है और सावन भी बहुत जल्द आने वाला है, लेकिन अभी खुशी के जाने का वक्त हो गया है। दोस्तों, जिंदगी में खूबसूरत लम्हे अपने आप नहीं मिलते, उन्हें जीने के लिए थोड़ा वक्त निकालना पड़ता है, क्योंकि जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होती हैं। लेकिन मुस्कुराने की वजह हम खुद बना सकते हैं, इसलिए अपने अपनों के साथ कुछ पल जरूर बिताइए, दिल से हंसी और हर दिन को यादगार बनाइए। श्रोताओं, याद रखिए, खुश रहना कोई किस्मत की बात नहीं, बल्कि हर दिन लिया जाने वाला एक छोटा सा फैसला है। तो मुस्कुराइए, खुश रहिए और अपनी मुस्कान यूं ही बांटते रहिए। अब मुझे दीजिए जाने की अनुमति, मैं मिलूंगी आपको बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड नमस्कार। आई होप आपने इस कार्यक्रम को खूब एंजॉय किया होगा और बस मैं तो यही चाहती हूँ कि सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, हमेशा ऑलवेज हैप्पी रहिए। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, मैं मुलाकात करूंगी आपसे बहुत जल्द, ठीक है? तब तक मेरा इंतजार कीजिएगा, अभी फिलहाल मुझे जाने की अनुमति दीजिए।
1: तीस वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFEM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद,
2: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक,
1: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
2: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई,
1: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी,
2: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
3: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
4: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
5: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
6: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
7: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना, आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
6: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर, नियर चड्डा सिनेमा।

0: से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: इससे पहले बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया NCPI की बैठक में उपस्थिति के विरोध में प्रतीकात्मक रूप से बैठक का बहिष्कार किया। संवाददाताओं से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, DMK, JMM, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि NCPI मान्यता प्राप्त संसदीय दल नहीं है। हालांकि विरोध प्रकट करने के बाद विपक्षी दल सदस्य बैठक में शामिल हुए। मॉनसून सत्र अगले महीने की 13 तारीख तक जारी रहेगा। सत्र में कई महत्वपूर्ण विधायी मामलों पर चर्चा किए जाने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। यह यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्र में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जंजीबार के राष्ट्रपति और रिवोल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मेवानी ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन से मुलाकात की। जंजीबार तंजानिया का अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। इसका अपना संविधान, राष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा और ध्वज है। दोनों नेताओं ने भारत तंजानिया संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और भविष्य में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी आज उनसे मुलाकात की। जंजीबार के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT गोवा ने आज पौंडा में 7वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया। करीब 188 विद्यार्थियों को BTech, MTech और PhD की उपाधि प्रदान की गई। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पदक भी दिए गए। कार्यक्रम में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ओडिशा के तटीय इलाकों में 160 किलोमीटर लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगा। इस पर 8000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। ये राजमार्ग खुर्दा, पुरी, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर जिलों से होकर गुजरेगा और यह राज्य के तटीय क्षेत्र में मुख्य सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटन और आर्थिक स्थलों के बीच निर्बाध संपर्क सुविधा प्रदान करेगा। मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना से सड़कों के बुनियादी ढांचे को सुधार कर और पर्यटन तथा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर ओडिशा के तटीय क्षेत्र में बड़ा बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान क्रांतिकारी और स्वाधीनता सेनानी मंगल पांडे को आज उनकी जयंती पर सादर नमन किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मंगल पांडे की देशभक्ति और वीरता की गाथा देश की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान ओपन 2026 में महिला सिंगल्स का खिताब जीतने पर भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने इस जीत को भारतीय बैडमिंटन के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि टूर्नामेंट के दौरान उनका दृढ़ संकल्प और असाधारण कौशल स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज गत विजेता अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से होगा। ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में खेला जाएगा। इससे पहले इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और निर्णायक एक दिवसीय मैच लंदन के लॉर्ड्स में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 20वें ओवर में बिना विकेट खोए 124 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
1: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए ईकेसीसी पोर्टल ekcc.nabard.org।
0: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत केसीसी पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
1: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
0: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
2: मुरादाबाद
0: से संपर्क कीजिए।
1: नियम और शर्तें लागू।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
2: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFEM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
3: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
2: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
3: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
2: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
3: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
4: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस टू दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आरजे राज, और कर रहा हूं आपसे बात। तो दोस्तों, आज फिर आप सभी का स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में जो आपको सतर्क कर रहा है। ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से। आज हम बात करेंगे आपके मोबाइल फोन और UPI से जुड़ी सुरक्षा के बारे में, क्योंकि आज आपका मोबाइल सिर्फ फोन नहीं बल्कि आपका बैंक है। तो दोस्तों, आखिर मोबाइल और UPI सुविधा भी आपके लिए खतरनाक हो सकती है, इस पर बात करेंगे। दोस्तों, आज हम मोबाइल से पैसे भेजते हैं, बिल जमा करते हैं, खरीदारी करते हैं और साथ में बैंकिंग भी करते हैं, लेकिन जरा सी लापरवाही आपका पूरा बैंक बैलेंस लीक कर सकती है। इसी लापरवाही का फायदा उठाते हैं साइबर ठग। तो चलिए आपको एक ड्रामे के जरिए मैं सारी बात समझाता हूँ। रमेश, हेलो, उधर से आवाज आती है। मैं आपके बैंक से बोल रहा हूँ सर, आपके बैंक अकाउंट में संदिग्ध निशान हुई है। क्या मेरा पैसा सुरक्षित है ना? हाँ सर, बस सुरक्षा के लिए आपके फोन पर जो OTP आएगा वह बता दीजिएगा। OTP आया है, मैं बता देता हूँ। अरे, मेरा अकाउंट तो खाली हो गया और पैसे कट गए हैं। और इस तरह रमेश UPI फ्रॉड का शिकार हो जाता है। आखिर UPI और मोबाइल फ्रॉड कैसे होता है? दोस्तों, मोबाइल और UPI फ्रॉड आम तौर पर इन तरीकों से होता है। बैंक अधिकारी बनकर कॉल किया जाता है, OTP या UPI पिन मांगा जाता है, फर्जी ऐप इंस्टॉल करवाए जाते हैं, स्क्रीन शेयर करवाई जाती है, रिफंड या इनाम का लालच दिया जाता है। याद रखिए, OTP और UPI पिन सिर्फ आपके लिए ही है। खतरे के संकेत, अगर कभी ये बातें हो तो समझ जाइए खतरा है। कोई OTP या आपका पिन पूछे, जल्दी करने का दबाव डाले, कहे अकाउंट बंद हो जाएगा, अनजान ऐप डाउनलोड करवाए, तो असली बैंक कभी ऐसा नहीं करता है। मोबाइल और UPI को सुरक्षित कैसे रखें? दोस्तों, इन आसान नियमों को अपनाइए। OTP, UPI पिन किसी को ना बताएं। मोबाइल में लॉक और बायोमेट्रिक रखें। केवल ऑफिशियल ऐप स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। फोन और एप्स को अपडेट रखें। पब्लिक वाईफाई पर बैंकिंग ना करें। अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। खासकर मैं सलाह देना चाहूंगा बुजुर्गों और बच्चों को। श्रोताओं, UPI और मोबाइल फ्रॉड के शिकार ज्यादातर बुजुर्ग, बच्चे, नए स्मार्टफोन यूजर, कम तकनीकी जानकारी वाले लोग होते हैं। इसलिए कोई भी कॉल आए तो पहले परिवार से पूछें, OTP को चाबी समझें, किसी को बिल्कुल ना दें, शक हो तो कॉल तुरंत काट दें। अगर गलती से आपके साथ फ्रॉड हो जाए तो, पैसे कट गए हो, OTP शेयर हो गया हो, गलत ऐप इंस्टॉल हो गया हो, तो देर ना करें, कॉल करें 1930। हाँ जी, शिकायत दर्ज करें www.cybercrime.government.in पर। जितनी जल्दी शिकायत, उतनी ज्यादा रिकवरी की संभावना। साइबर सुरक्षा की जानकारी के लिए आप www.staysafeonline.com पर भी विजिट कर सकते हैं। मोबाइल और UPI सुरक्षा के लिए 5 सुनहरे नियम। OTP और पिन कभी साझा न करें। बैंक बनकर आने वाली कॉल पर भरोसा न करें। अनजान ऐप और लिंक से बचें। मोबाइल को हमेशा लॉक रखें। डर नहीं, समझदारी से काम लें। श्रोताओं, डिजिटल भुगतान आसान है लेकिन सावधानी के बिना खतरनाक। मोबाइल आपका साथी है, उसे सुरक्षित रखिए। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की ओर से। जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz, आपके शहर का पहला रेडियो स्टेशन जो आपको कर रहा है सतर्क फ्रॉड से, ताकि आप बच सकें। तो दोस्तों, जैसा कि इस कार्यक्रम में बात हुई कि आपका UPI, हां जी, उसकी वजह से भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। ये बात तो आप भी मानेंगे कि आपका ये जो स्मार्टफोन है सिर्फ एक स्मार्टफोन नहीं है, ये आपका बैंक है। आप कहीं भी जा रहे हैं तो ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर रहे हैं तो सावधान होकर करें, क्योंकि कभी कभी गलत QR कोड से भी आपका नुकसान हो सकता है और शायद आपका पैसा जा सकता है। हम सभी को पता है पैसा कमाने में जितनी मुश्किलें आती हैं ना, तो अगर वो गलती से कोई आपसे ले ले बिना आपकी परमिशन से, तो शायद सबसे ज्यादा नुकसान हम ही को होता है।
तो सतर्क रहें, सेफ रहें। ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी FM मुरादाबाद 89.6 MHz के माध्यम से। मैं हूँ आपका दोस्त और इस शो का होस्ट RJ राज। अभी के लिए लेता हूँ यहाँ से अलविदा। तो स्टे सेफ।

0: AG the Gangster.
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: आवश्यक सूचना 400 KV बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास UP कॉरपोरेशन के मझोला 400 KV उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है ZIG प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। ZIG करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। आज हमारा एपिसोड बहुत खास है, अयोध्या का स्वाद, जहां हम आपको मिलवाते हैं उत्तर प्रदेश से, जो परंपरा और प्रगति की सुंदर संगम है।
1: और मैं हूं आपकी दोस्त प्राची। आज लेकर आई हूं एक ऐसी कहानी जिसमें है आस्था की मिठास, संस्कृति की खुशबू और स्वाद का ऐसा जादू जो सीधे दिल तक पहुँच जाता है।
0: जी हाँ दोस्तों, आज हम चलेंगे उस नगरी में जिसका नाम सुनते ही मन श्रद्धा से भर जाता है। अयोध्या प्रभु श्री राम जी की जन्मभूमि, सरयू की पावन धरती और अब स्वात की नई राजधानी।
1: सुबह का समय, सरयू के घाटों पर उगता सूरज, मंदिरों से आती घंटियों की मधुर ध्वनि और गलियों में उठती ताजी कचौड़ियों, जलेबियों और पेड़ों की खुशबू।
0: वाह, ऐसा लगता है जैसे अयोध्या सिर्फ दर्शन नहीं कराती बल्कि अपने स्वाद से भी आपका स्वागत करती है।
1: और यही कारण है कि आज लाखों श्रद्धालु सिर्फ रामलला के दर्शन ही नहीं बल्कि अयोध्या के पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद लेने भी पहुंच रहे हैं।
0: भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर एक नई पहचान बना चुकी है। सड़कें, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, होटल, घाट, हर क्षेत्र में विकास की एक कहानी लिखी जा रही है।
1: लेकिन विकास सिर्फ इमारतों और सड़कों का नहीं होता, असली विकास तब होता है जब स्थानीय लोगों की कला, संस्कृति और स्वाद को भी नई पहचान मिले। और यही काम कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार।
0: मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अयोध्या की पारंपरिक खाद्य विरासत को भी नई उड़ान दी जा रही है।
1: और इसी प्रयास का हिस्सा है एक जिला एक व्यंजन यानी ODOC योजना।
2: फिलहाल मैं मौजूद हूँ मौर्य मिष्ठान भंडार में। यहाँ मौजूद होने का मेरे कारण है ODOC में चुने गए हमारे शहर के और इस दुकान के कुल्लड़ वाली दही जलेबी, जिसको हमारे प्रदेश में एक नई पहचान मिली है और इससे हमारे प्रदेश को अब एक नई पहचान मिलने जा रही है। अब जब शहर में लोग आएंगे, जब टूर से लोग आएंगे और जब वो ये कह के आएंगे कि भाई अयोध्या जाना है और हमें कुल्लड़ वाली दही जलेबी खानी है, तो अयोध्या का नाम और अयोध्या का व्यापार दोनों बढ़ेगा। और इसी को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मौर्य मिष्ठान भंडार से इसके ओनर।
3: अयोध्या में राम मंदिर निर्माण होने के बाद अयोध्या वासी तो भाई बोलते जो आमदनी बढ़ी है तो सही चीज है। कस्टमर आते हैं, लोग आते हैं तो आमदनी जाती बात यहाँ लोगों को बढ़ेगी। रही बात ODOK की तो अयोध्या में दही जलेबी हमारी चौथी पीढ़ी चल रही है
4: जी।
3: और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अक्सर आते ही रहते हैं अयोध्या में, तो जो है आपके यहाँ प्यारी लोग जो है आपका दही जलेबी लेके जाते हैं तो इतने भक्ति सब टाइप माइंड में रहा होगा। अच्छा लगा हमको भी कि चलिए अयोध्या से इतनी पानी तो गई ऊपर तक।
4: बहुत अच्छी बात है। और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को क्या कहना चाहेंगे, उनको किस तरह अपना धन्यवाद आप प्रकट करेंगे?
3: उनके लिए जितना कहा जाए उसमें कम ही है। अयोध्या क्या था और क्या बना दिए तो अभी देख रहे हैं, उसमें कहना ही नहीं, कोई शब्द नहीं है
4: जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त हमें देने के लिए, धन्यवाद, नमस्कार
3: जी। नमस्ते
0: दोस्तों, अगर अयोध्या के स्वाद की बात हो, खुरचन पेड़े का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता।
1: बिल्कुल, यह सिर्फ एक मिठाई नहीं बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही एक कला है।
0: कल्पना कीजिए, बड़े से कढ़ा में घंटों तक पकता दूध धीमी आंच, धैर्य और अनुभव।
1: जैसे जैसे दूध गाढ़ा होता है, कढ़ाई के किनारों पर मलाई की सुनहरी परत जम जाती है। कारीगर इसे बड़ी ही सावधानी से खुरचते हैं और फिर उसी से तैयार होता है खुरचन।
0: इसके बाद उसमें देसी खांड, इलायची और पारंपरिक तकनीकी का जादू मिलाया जाता है।
1: जब ये पेड़ा तैयार होता है तो उसकी हर परत में दूध की मिठास और मेहनत की कहानी छिपी होती है।
0: कहते हैं कि एक अच्छा खुरचन पेड़ा मुंह में जाते ही घुल जाता है लेकिन उसका स्वाद देर तक याद रहता है।
1: यानी दर्शन का प्रसाद दिल में बसता है और खुरचन पेड़ा स्वाद की याद बनकर साथ चलता है।
0: तो दोस्तों, अब बात उस जोड़ी की है जिसके बिना अयोध्या का फूड टूर अधूरा माना जाता है।
1: गर्मा गर्म जलेबी और ठंडी मलाईदार दही,
0: और सबसे खास बात ये परोसी जाती है मिट्टी के कुल्हड़ में।
1: कुल्हड़ सिर्फ एक बर्तन नहीं बल्कि भारतीय परंपरा का एक हिस्सा है। मिट्टी की सौंधी खुशबू दही के स्वाद को और बढ़ा देती है।
0: सुबह सुबह दुकानों के बाहर लगी कतारें, चाशनी में डूबी सुनहरी जलेबी और ताजी दही,
1: ऐसा लगता है जैसे स्वाद और संस्कृति एक साथ थाली में परोस दिए गए गए हैं।
0: जलेबी की तैयारी भी कम दिलचस्प नहीं है। खमीर उछे हुए घोल को गोल गोल आकार देकर घी में तला जाता है, फिर उसे मीठी चाशनी में डुबोया जाता है।
1: और जब वही जलेबी ठंडी दही के साथ मिलती है और स्वाद का ऐसा संतुलन बनता है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है।
0: तो श्रोताओं, यही वजह है कि अयोध्या की दही जलेबी ने राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है और फूड फेस्टिवल में लोगों का दिल जीता है।
1: लेकिन अयोध्या का स्वाद सिर्फ मिठाइयों तक सीमित नहीं है।
0: बिल्कुल, यहाँ की मसालेदार कचौड़ी और कुरकुरी टिकिया भी उतनी ही मशहूर है।
1: सुबह के नाश्ते में कचौड़ी, सब्जी और शाम को चटपटी टिकिया, यहाँ के लोगों की जीवन शैली का हिस्सा है।
0: हर दुकान की अपनी विशेष रेसिपी है, अपना स्वाद और अपनी पहचान होती है।
1: दोस्तों, इन व्यंजनों की लोकप्रियता के पीछे सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि एक दूरदर्शी सोच भी है।
0: उत्तर प्रदेश सरकार की ODOC योजना का उद्देश्य है कि हर जिले के विशेष व्यंजनों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिले।
1: इसके तहत स्थानीय उद्यमियों, महिला स्वयं सहायता समूहों और छोटे दुकानदारों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
0: उन्हें आधुनिक पैकेजिंग, ब्रांडिंग, फूड सेफ्टी, FSSAI मानकों और डिजिटल मार्केटिंग की जानकारी दी जा रही है।
1: अब अयोध्या की स्वाद सिर्फ गलियों तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि देश और दुनिया के बाजारों तक पहुंचेंगे।
0: यही स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देगा, युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करेगा और महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को मजबूत करेगा।
1: आज सोशल मीडिया पर हैशटैग अयोध्या फूड तेजी से लोकप्रिय हो रहा है।
0: लोग कुल्हड़ वाली दही, जलेबी, खुरचन पेड़ा और अयोध्या के स्ट्रीट फूड की तस्वीरें साझा कर रहे हैं।
1: एक समय था जब लोग अयोध्या को सिर्फ धार्मिक दृष्टि की सोच से जानते थे
0: और आज अयोध्या अपनी संस्कृति, पर्यटन और खान पान के जरिए एक नए भारत की तस्वीर पेश कर रही है।
1: तो दोस्तों, अगली बार जब आप अयोध्या जाएं,
0: रामलला के दर्शन कीजिए,
1: सरयू आरती का आनंद लीजिए
0: और फिर जरूर चखिए खुरचन, पेड़ा, लड़वाली दही, जलेबी, कचौड़ी और टिकिया,
1: क्योंकि ये सिर्फ व्यंजन नहीं बल्कि अयोध्या की आत्मा का स्वाद है।
0: और जब स्थानीय परंपरा को विकास का साथ मिलता है
1: तो एक शहर की पहचान पूरे देश की शान बन जाती है।
0: विकास का प्रदेश, उत्तर प्रदेश,
5: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
1: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में
1: चाहे फार्मेसी हो मैनेजमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी लॉ एग्रीकल्चर साइंस एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी
1: गर्ल्स स्टूडेंट के

0: हेलो नमस्ते आदाब, मैं हूँ आपकी दोस्त व होस्ट शारजा छाया और आप सुन रहे हैं मुझे FM मुरादाबाद 89.6 MHz पर। रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो। मौजूद है आपके साथ लेकर अपना नया कार्यक्रम विशेष बातचीत, और आज के हमारे खास मेहमान हैं मनोज वर्मा मनुजी। आपको बता दे दोस्तों कि मनोज मनुजी एक कवि, गजल, गीत, नज्म और दोहे जैसी रचनाएं करते हैं, और आज के इस विशेष बातचीत में हम सुनेंगे मिस्टर मनोज वर्मा जी की कुछ रचनाओं को, और साहित्य जगत से जुड़े हुए होंगे कुछ सवाल जवाब। तो हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
1: धन्यवाद छाया जी।
0: जी, तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि अपने नाम के आगे जो आपने उपनाम दिया है मनोज वर्मा मनु, मनु नाम से क्या तात्पर्य है, मतलब क्या सोच के रखा था मनु?
1: जी छाया जी, ये जो मेरा उपनाम है ये मेरे दोस्तों की, मेरे घर में, मेरे परिवार की देन है, और इसके बारे में मैं कहूँ तो ये हमारे संस्कृति में आदि पुरुष जो मनु सत्रुपा के नाम से आपने सुना होगा, जो कि आदम के इक्विलेंट आते हैं, ये उसी नाम से संबंधित है, और मैं सोचता हूँ कि मानवता के लिए ये एक अच्छा नाम है, इसलिए मैंने इसे अपने नाम के साथ जोड़ा है।
0: हाँ जी जी जी। तो जैसा कि आप गजल, गीत, दोहे, नज्म वगैरह करते हैं, तो मेरा जो सबसे पहला सवाल है वो यही है कि गजल और शायरी लिखने में आपका कैसे रुझान विकसित हुआ, या कोई विशेष लम्हा या प्रभाव आपकी रुचि को प्रज्वलित किया?
1: बहुत अच्छा सवाल है। दरअसल जिस समय हम अपनी युवावस्था में थे, उस समय और जहाँ से हम बिलोंग करते हैं बेसिकली, वो जगह मुशायरों के लिए बड़ी प्रसिद्ध थी, जनपद रामपुर जो अदब का शहर कहलाता है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। तो अक्सर हम जो मुशायरे वगैरह में जाते थे और अपने साथियों के साथ इसको सुनते थे, वहाँ पर उसका एक क्रेज अलग था। तो जब वहाँ पर शायरों को सुना जाता था और उनका अंदाज देखते थे, तो इसी चीज ने धीरे धीरे रुझान पैदा कर दिया। और ये तो एक बात है ही कि किशोरावस्था में अगर आपको गजलों से निस्बत होने लगे, तो यकीनन ये इस बात का सबूत है कि दिल में किसी की चाहत के अंकुर फूट रहे हैं। तो और बंदा अपने दिल की बात बड़े अदब और शाइस्तगी के साथ अपने महबूब तक पहुंचाने की तमन्ना रखता है, तो धीरे धीरे शायरी को जानने और समझने का सलीका भी रुचि पैदा कर देता है। बस इस तरफ थोड़ा रुझान हो गया।
0: चलिए, क्या बात है, बहुत अच्छा आपका जवाब मिला हमें,
1: शुक्रिया।
0: जी जी, तो गजल और शायरी लिखते समय आपकी रचनात्मक प्रकृति कैसी होती है? क्या आप कोई निश्चित रूटीन फॉलो करते हैं या कोई विशेष प्रेरणा के स्रोत है?
1: मकतबेश का अंदाज निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसको सबक याद हुआ। तो छाया जी, मैं कहना चाहूंगा कि रचना कर्म से जुड़ने के बाद भी बिल्कुल यही कैफियत लागू होती है। इसका कोई निश्चित रूटीन नहीं होता, ना ही संभव है। ये एक सतत प्रक्रिया होती है जो लगातार जहन को अपनी जद में बांधे रखती है, और नेचुरली आसपास के हालात या मन की कैफियत से प्रस्फुटित होकर अपने आप को सृजित करवा ही लेती है। हालांकि उसके शिल्प की तरतीब और उस विधा की बुनियादी जानकारी ये इस बात पर डिपेंड करती है कि हम उसमें कहाँ तक महारत हासिल कर पाते हैं। इसके बावजूद भी शेर कहना, पढ़ना, ये एक खुदादाद कैफियत होती है, ईश्वरीय प्रेरणा का स्रोत होती है। क्योंकि कहा गया है, अल्लाह अगर तौफीक न दे इंसान के बस की बात नहीं।
0: अल्लाह अगर तौफीक न दे इंसान के बस की बात नहीं, क्या बात है। अच्छा सर, हमें ये बताइए कि आपका कोई पसंदीदा गजल या शायरी जिसके बारे में आप हमें बता सकते हैं, और आपके लिए वो खास क्यों है?
1: दरअसल छाया जी, बात यह है कि कोई भी शेर, कोई भी गजल अपने आप में हमेशा जो हमारी याद होती है उनसे जुड़ी हुई होती है, या जो परिवेश होते हैं उनसे मिली हुई होती है, उनसे प्रेरित होती है। चलिए मैं आपको दो एक शेर के माध्यम से बात बताता हूँ। किसी को ख्वाब की ताबीर मिल गई होती, किसी को ख्वाब की ताबीर मिल गई होती, आप मिलते अगर तकदीर मिल गई होती। किसी को ख्वाब की ताबीर मिल गई होती, आप मिलते अगर तकदीर मिल गई होती, और रांझे ने भला कौन खुदा मांगा था, और रांझे ने भला कौन खुदा मांगा था, वही मिल जाता अगर हीर मिल गई होती, वही मिल जाता अगर हीर मिल गई होती। तो शायरी के कई पक्ष हैं, ये सामाजिकता को लिए भी होती है और अपने दिल के जज्बों को भी समेटे हुए होती है। तो जैसे जैसे हमारी बात आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे वर्क दर वर्क पन्ने खुलते चले जाएंगे।
0: वैसे ये जो मुक्तक था काफी अच्छा लगा हमें, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये मुक्तक आपको इतना पसंद क्यों है,
1: जैसा कि मैंने बताया, शायरी अपने आप में कई मकाम समेटे हुए होती है। ये कब कितनी आगे चली जाती है, कब कितनी पीछे चली जाती है, इसका कहना मुमकिन नहीं होता। तो ये सब उन्हीं जज्बों के छोटे छोटे अंश हैं जो हमारे सामने चलते रहेंगे। मैं और आपको रूबरू कराऊं अपने एक कते से कि हिफाजत से रखी हैं अब तलक यादें सभी दिल ने, हिफाजत से रखी हैं अब तलक यादें सभी दिल में, ये क्या रिश्ता है तुझसे, ये समंदर कितना गहरा है। हिफाजत से रखी हैं अब तलक यादें सभी दिल में, ये क्या रिश्ता है तुझसे, ये समंदर कितना गहरा है। नहीं भूला अभी भी मैं नहीं, तुम बदगुमा मत हो, नहीं भूला अभी भी मैं नहीं, तुम बदगुमा मत हो, कि मेरी रूह पे अब तक तुम्हारा लम्स ठहरा है, कि मेरी रूह पे अब तक तुम्हारा लम्स ठहरा है। तो ये सब यादों से जुड़ी हुई चीजें होती हैं जो यकायक आती हैं और फिर पन्नों में सिमट कर हमेशा के लिए अमर हो जाती हैं।
0: क्या बात है, क्या खूब कथा आपने सुनाई। और इसी के साथ अगर अगले सवाल की तरफ आगे बढ़े तो हमारा अगला सवाल आपसे होगा, कविता और शायरी आपके लिए क्या है, मतलब क्या मायने रखता है, आप इसे कैसे देखते हैं?
1: जी छाया जी, मेरे नजदीक शायरी या कविता में श्रृंगार के साथ सामाजिक और मानविक मूल्य, कुदरत के प्रति संवेदनशीलता, रिश्तों में आत्मीयता और ईश्वर के प्रति आभार, ये संदेश प्रवाहित होकर ही कविता को कालजयी श्रेणी में रखते हैं। और मेरे नजदीक ये केवल लफाजी का एक तरीका नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मात्र लफाजी तुकबंदी ये कुछ समय के लिए तो प्रभावित कर सकती है, लेकिन वो स्थायी नहीं होती। और जो कविता या गजल या शायरी अगर हमारे समाज को संदेश ना दे पाए तो वो व्यर्थ होती है।
0: क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने और बहुत अच्छा लगा। अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं क्योंकि समय भी हमारे पास कम है। सवाल अगला करेंगे लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे आपका कोई पसंदीदा गजल जो सुनना चाहेंगे हमारे आज के इस विशेष बातचीत में।
1: देखिए, छोटी छोटी बातों से मैं कविता को अपने नजदीक क्या समझता हूँ उसे बताने की कोशिश करता हूँ। हर हंसी भी खुशी का मज़ाहिर नहीं, हर हंसी भी खुशी का मज़ाहिर नहीं, गम तो ऐसे भी हैं जो के जाहिर नहीं, हर हंसी भी खुशी का मज़ाहिर नहीं, गम तो ऐसे भी हैं जो के जाहिर नहीं, जीस्त का मौत से फासला लम्हा भर, जीस्त का मौत से फासला लम्हा भर, इससे बचने में कोई भी माहिर नहीं, इससे बचने में कोई भी माहिर नहीं, हर हंसी भी खुशी का मज़ाहिर नहीं। और गजल में मैं दो तीन शेर आपके बीच रखता हूँ।
0: जरूर जरूर।
1: हाँ तेरी याद चली आई थी कल शाम के बाद, हाँ तेरी याद चली आई थी कल शाम के बाद, और फिर हो गई एक ताज़ा गजल शाम के बाद, हाँ तेरी याद चली आई थी कल शाम के बाद, और फिर हो गई एक ताज़ा गजल शाम के बाद, मेरी बेख्वाब निगाहों की अजियत मत पूछ, मेरी बेख्वाब निगाहों की अजियत मत पूछ, अपना पहलू मेरे पहलू से बदल शाम के बाद, हाँ तेरी याद चली आई थी कल शाम के बाद, और फिर हो गई एक ताज़ा गजल शाम के बाद। और अगला शेर है इसमें कि तू है मसरूफ तेरे दिन के शगल भी होंगे, तू है मसरूफ तेरे दिन के शगल भी होंगे, तू किसी रोज मेरे साथ निकल शाम के बाद, तू किसी रोज मेरे साथ निकल शाम के बाद, और हर नसीहत है बजा आपकी मगर ना से, हर नसीहत है बजा आपकी मगर ना से, हमसे हो पाएगा ना इस पे अमल शाम के बाद, हमसे हो पाएगा ना इस पे अमल शाम के बाद। और फिर गजल का शेर है कि तू नहीं है तो बहारों में कशिश क्या मानी, तू नहीं है तो बहारों में कशिश क्या मानी, कौन देखेगा ये रौनक बेमहल शाम के बाद, कौन देखेगा ये रौनक बेमहल शाम के बाद। और जो ताईद का शेर होता है कि मसाला मेज पे ये सोच के छोड़ आया हूँ, मसाला मेज पे ये सोच के छोड़ आया हूँ, अब ना निकला तो निकल आएगा हल शाम के बाद, अब ना निकला तो निकल आएगा हल शाम के बाद। और हो सियासत की रवायत या मोहब्बत के चलन, हो सियासत की रवायत या मोहब्बत के चलन, रिश्ता बेसाख्ता जाता है बदल शाम के बाद, हाँ तेरी याद चली आई थी कल शाम के बाद, और फिर हो गई एक ताज़ा गजल शाम के बाद।
0: क्या बात है, आपकी जितनी भी रचनाएं हैं इसका मधुर सौंदर्य हमारे सभी श्रोताओं के हृदय को छू रहा होगा और साथ ही साहित्य जगत को भी प्रभावित कर रहा है। चलिए ये तो रही आपकी शायरी की बात, लेकिन कुछ गीत दोहे जो आप सुनाना चाहते हैं, हम चाहेंगे हमारे श्रोताओं को और मुझे कुछ गीत सुनाएं।
1: जरूर, देखिए गजल और शायरी ये अपना शौक है, लेकिन कविता और गीत ये हमारा कल्चर है। तो मैं आपको एक अंचे के साथ, एक मुखड़े के साथ एक गीत के कुछ अंश रखता हूँ।

0: क्या बात है सर, जितनी प्यारी आपकी रचनाएं उतना ही प्यारा आपका गीत।
1: शुक्रिया, धन्यवाद।
0: वैसे हमारे श्रोताओं को भी बहुत पसंद आया होगा और इसका फीडबैक जरूर लेना चाहेंगे कल के शो में। हाँ जी, फिलहाल तो अपने शो की तरफ आगे बढ़ती हैं और अगला सवाल जानते हैं मनोज मनु जी से कि गजल और शायरी लिखते समय क्या आपने किसी प्रशिक्षण का सामना किया है? कैसे आप लिखने के भेद को समाप्त करते हैं या प्रेरणा प्राप्त करते हैं जब आप लिखने में अटक जाते हैं?
1: देखिए, शायरी की तरफ रुझान होना और शायरी कर पाना दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। हर विधा को निखारने के लिए प्रशिक्षण और सतत प्रयास की आवश्यकता होती ही है। और शायरी के बारे में तो ये कि शेर कह पाने की सोच एक ईश्वरीय वरदान का नतीजा माना जाता है। तो अगर आप में शेर कह पाने की खुदादाद सलाहियत नहीं है तो उसके समूचे व्याकरण आदि को जानने के बावजूद भी आपके शेर में वो बात हरगिज पैदा नहीं हो सकती जो उसको मकबूलियत या उसको प्रसिद्धि प्रदान कर सके। दो लाइनों से मैं अपनी बात रखूं कि अब इश्क हो कि शायरी जज्बाती अमल है, अब इश्क हो कि शायरी जज्बाती अमल है, खैरात सा नहीं ये इनायत सा नहीं है, जिसने लहू दिया है वही पाल सका है, ये शौक रईसों की रवायत सा नहीं है, ये शौक रईसों की रवायत सा नहीं है।
0: क्या बात है, क्या खूब आपकी रचनाएं और बोलने का अंदाज भी बहुत अच्छा है, बहुत पसंद आ रहा है हमें, हमारे सभी श्रोताओं को भी।
1: बहुत शुक्रिया।
0: जी जी, अगले सवाल की तरफ आगे बढ़े तो अगला सवाल हमारा आपसे होगा कि क्या कोई कवि या लेखक जो आपके काम पर प्रभाव डाले हों, उन्होंने आपकी रचना और लिखने की प्रकृति को कैसे प्रभावित किया है?
1: जी, मेरे विचार से किसी भी विधा के प्रति आकर्षित होने का ये सबसे पहला स्टेप होता है। जिन्हें हम सुनते हैं या पढ़ते हैं उनमें से बहुत सों से प्रभावित हो जाना एक सामान्य प्रक्रिया है और प्रभावित व्यक्तित्व से रचना कर्म में समानता ही एक सामान्य बात है। शायरी के इस फहरिस्त में जनाब श्री कृष्ण बिहारी नूर साहब, मजाज लखनवी साहब, नरेश कुमार साज साहब और वर्तमान में दादा निजाम हाफतिफ साहब जो मुरादाबाद से ही बिलोंग करते हैं, आदरणीय डॉक्टर कृष्ण कुमार नाथ साहब जो नूर साहब के ही शागिर्द हैं, इन नामों से मैं खासा प्रभावित रहा हूँ। इन्होंने मुझे, इनके रचना कर्म ने मुझे खासा प्रभावित किया है और वो झलक अगर मेरे रचना कर्म में झलकती हो तो इस बात को लेकर मैं अपने आप में गौरवान्वित महसूस करूँगा।
0: अगला सवाल जो मैं आपसे पूछने वाली हूँ बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। कैसे आप गजल और शायरी

0: तो सच के कहने में उस आवाज में जो जोर होता है उसका एक अपना अलग अंदाज हो जाता है।
1: क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। सच बोलने की ताकत सब में नहीं होती है, लेकिन जो सच बोलता है ना उसके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंट दिखाई देता है हमें, एक अलग ही ऊर्जा झलकती है। तो जैसा कि हमने शुरुआत में ही कहा था कि बड़ा अहम सवाल है ये, और इसका जवाब बहुत ही अच्छा मिला हमें। अगले सवाल की तरफ आगे बढ़े। अगला सवाल हमारा आपसे होगा कि आपको लगता है कि आधुनिक लेखों के लिए गजल और शायरी जैसे क्लासिक काव्य के रूप में जोड़ना कितना महत्वपूर्ण है, आधुनिक दुनिया में उनका क्या महत्व है?
0: जी छाया जी, आधुनिक दौर में निसंदेह क्रांतिकारी बदलाव आ रहे हैं, परंतु साहित्य में शायरी से गजल के क्षेत्र में ये बात है कि ये विधा अपनी रवायत के साथ हमेशा से खड़ी रही है और भविष्य में भी इसकी शोहरत कम होने का कोई मतलब ही नहीं उठता है, क्योंकि जब तक इंसान में इंसानियत, रोमानियत और सामाजिकता का जज्बा रहेगा, गजल और शायरी हमेशा जिंदा रहेगी।
1: क्या बात है, आपने बहुत अच्छी बात बताई हमें, हमारे श्रोताओं को। अगला सवाल तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे सभी सुनने वाले श्रोताओं के लिए और हमारे लिए भी। हम सभी एक्चुअली जानना चाहेंगे कि आप क्या मानते हैं गजल और शायरी समाज में क्या भूमिका निभाते हैं।
0: जहाँ तक शायरी और गजल की समाज में भूमिका का प्रश्न है, तो मैं आपको बता दूं कि इस फन को अदब की संज्ञा दी गई है। यानी कि जब कोई बंदा गजल या शायरी या साहित्य से वावस्ता होता है तो वह अदब के क्षेत्र में आ रहा होता है, और जब अदब से रूबरू होना यानी समाज में सकारात्मक योगदान की भूमिका निभाना है, तो पाठकों और सुनने वालों को आकर्षित करने का मादा शायरी में बिल्कुल इस तरह से है जैसे गर्म चाकू पर मक्खन पेवस्त कर दिया जाता हो। यानी आप देखें कि हम जो बात कहना चाहते हैं, शायर जो बात कहना चाहता है शायरी में, वो बात सीधे ही दिल तक उतरती है। तो ये इसकी अपनी खासियत है और इसको सामाजिकता में एक सकारात्मक सहयोग के रूप में, सकारात्मकता के रूप में ही हम देख सकते हैं।
1: क्या बात है, क्या बात है। वैसे हमने पहले ही कहा था कि आपकी रचनाएं हमारे श्रोताओं और हमारे दिल को सीधा ही संपर्क कर रही हैं, और इसी के साथ
0: शुक्रिया।
1: लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये पथकों और सुनने वालों के साथ कितना संपर्क रखता है।
0: जी, मैंने बताया कि सुनने वालों को जो इंटरेक्ट करता है, जो संपर्क रखता है, वो अपने आप में विलक्षण होता है। जैसे हम कभी कोई भी बात अगर प्रोज में या गद्य में पढ़ते हैं तो एक निश्चित समय के बाद वो विस्मृत हो सकती है, लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ शेर जो आज से सदियों पहले कहे गए आज भी बिल्कुल वैसे ही और उसी ताजगी के साथ जिंदा हैं। इसलिए इसका इंटरेक्शन और इसका जुड़ाव यकीनन बहुत अच्छा है।
1: जी जी, जरूर सही कहा आपने। वैसे हमें भी बहुत अच्छा लगता है शायरी और गजल, और इसीलिए आपकी और हमारी मुलाकात हुई है इस विशेष बातचीत में। अगला सवाल ये जानना चाहेंगे आपसे कि क्या आप अपने विचार में गजल और शायरी के भविष्य पर कुछ विचार देना चाहेंगे।
0: जी जी, गजल और शायरी के भविष्य हमेशा से उज्जवल रहा है और हमेशा से उज्जवल रहेगा। हाँ, अगर शायरी केवल बादशाहों के हरम तक ही महदूद रह जाती, वहीं दम तोड़ जाती, तब शायद इसका अस्तित्व कुछ और होता। लेकिन चूंकि अब ये सामाजिक और मानविक मूल्यों के चिंतन से भी जुड़ चुकी है, तो उसके बाद इसका श्रृंगारिक पक्ष और भी वसी और भी विशाल हो गया है। इसलिए इसका भविष्य सुरक्षित है और प्रकाशवान है। आने वाले वक्त में इसकी शोहरत, इसकी मकबूलियत हमेशा बढ़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है।
1: आप जैसे कवि और गजल की रचनाएं करने वाले लोग होंगे तो जरूर, और हमें भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। वैसे सर, जाते जाते, क्योंकि हमारे जाने का वक्त हो रहा है, तो जाते जाते हम चाहेंगे कि हमारे उन सभी दोस्तों को, उन सभी यूथ को जो कम उम्र से ही शेरो शायरी करने का शौक रखते हैं, गजल सुनते हैं, सुनाते भी हैं अपनी रचनाओं के तौर पर, तो उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे।
0: जी छाया जी, बहुत बड़ा विषय है। तो यूथ का जो मेरा संदेश है वो मैं अपने अशार के ही माध्यम से कहना चाहूँगा। किसी के जुल्म से तंग आके डर जाने की बातें क्यों, जमाने के चलन पे यूं असर जाने की बातें क्यों। किसी के जुल्म से तंग आके डर जाने की बातें क्यों, जमाने के चलन पे यूं असर जाने की बातें क्यों। अगर एहसास मर जाए तो बाकी कुछ नहीं रहता, जियो जिंदा दिली से घुटके मर जाने की बातें क्यों। जियो जिंदा दिली से घुटके मर जाने की बातें क्यों। और ये भी संदेश कि रवानी है तुम्हारे खून में थमने नहीं देना, रवानी है तुम्हारे खून में थमने नहीं देना, बुरे हालात से डर कर ठहर जाने की बातें क्यों, बुरे हालात से डर कर

0: शहर जाने की बातें क्यों, और अभी तो शम रोशन है ये जलवा देखना यारो, जवां जब रात बाकी हो तो घर जाने की बातें क्यों, जहां चेहरों पे कायम हो चमक मेहनत कशी की तो, जहां चेहरों पे कायम हो चमक मेहनत कशी की तो, पराई रोशनी लेकर निखर जाने की बातें क्यों, पराई रोशनी लेकर निखर जाने की बातें क्यों, रहवा के रुख के जानी भी पलट जाओ मगर सोचो, जिधर से आग भड़की हो उधर जाने की बातें क्यों। और मनु शीरी जुबा में गुफ्तगू करिए जमाने से, मनु शीरी जुबा में गुफ्तगू करिए जमाने से, किसी के दिल में नश्तर सी उतर जाने की बातें क्यों, किसी के दिल में नश्तर सी उतर जाने की बातें क्यों।
1: मनु शीरी जुबा में गुफ्तगू करिए जमाने से, किसी के दिल में नश्तर सी उतर जाने की बातें क्यों, किसी के दिल में नश्तर सी उतर जाने की बातें क्यों। क्या बात है, क्या बात है। एक बार फिर हम चाहेंगे कि आप इस लाइन को दोहराइए।
0: मनु शीरी जुबा में गुफ्तगू करिए जमाने से, मनु शीरी जुबा में गुफ्तगू करिए जमाने से, किसी के दिल में नश्तर सी उतर जाने की बातें क्यों, किसी के दिल में नश्तर सी उतर जाने की बातें क्यों। और ये गजल के दो मिसरे भी इसमें है कि हो आंखें झील सी आंखों में दरिया हो समंदर हो आंखें झील सी आंखों में दरिया हो समंदर हो, मगर ये आंख के पानी के मर जाने की बातें क्यों, मगर ये आंख के पानी के मर जाने की बातें क्यों, जुबा दे दी अगर तो फिर मुकर जाने की बातें क्यों।
1: क्या बात है, जुबा दे दी अगर तो मुकर जाने की बातें क्यों। बहुत ही खूबसूरत सी आपकी ये रचना
0: जी। जहाँ तक आपने मुझे बताया कि एक यूथ के लिए इस समय क्या संदेश है, तो मैं अपने चंद अशार के साथ ये बात यूथ तक पहुंचाना चाहूंगा आपके रेडियो के माध्यम से कि जमीन पे पांव फलक पे निगाह याद रखो, जमीन पे पांव फलक पे निगाह याद रखो, मियां बुजुर्गों की ये भी सलाह याद रखो, अगर हो गैर से तकरार बात दीगर है, अगर हो गैर से तकरार बात दीगर है, मगर हो भाई से तो बस निबाह याद रखो, मगर हो भाई से तो बस निबाह याद रखो, जमीन पे पांव फलक पे निगाह याद रखो, मियां बुजुर्गों की ये भी सलाह याद रखो, और करी जो नेकियां उनको भुला भी सकते हो, ये मेरा संदेश है, करी जो नेकियां उनको भुला भी सकते हो, मगर गुनाह से तौबा, मगर गुनाह से तौबा गुनाह याद रखो, और नवाजता है वही मत गुमान में डूबो, नवाजता है वही मत गुमान में डूबो, वही कर देगा कभी भी तबाह याद रखो, वही कर देगा कभी भी तबाह याद रखो, और रहम पसंद बनो ये पसंद है उसकी, रहम पसंद बनो ये पसंद है उसकी, मुआफियों में है रब की पनाह याद रखो, मुआफियों में है रब की पनाह याद रखो, और जमीन पे पांव फलक पे निगाह याद रखो, मियां बुजुर्गों की ये भी सलाह याद रखो।
1: क्या खूब, क्या खूब,
0: शुक्रिया।
1: वैसे जाते जाते मेरे जहन में एक और सवाल आ रहा है, सोच रही हूँ पूछ ही लूँ, किस उम्र से आपने लिखना शुरू कर दिया, किस उम्र में आपका इंटरेस्ट रचनाओं में होने लगा।
0: छाया जी, बात दरअसल ये है कि जो परिवेश मैंने जैसे बताया पहले, ये जो परिवेश था मुशायरों का, तो ये टीनेज से ही हमें शौक लग गया था, तो दोस्तों के साथ जब जाते थे, देखते थे, शेर को समझते थे और उस पर शायरों को दाद देते थे, तो वो एक अलग अनुभव महसूस होता था, इसी चीज ने जो रुझान पैदा किया, तो टीनेज से ही ये रोग हमारे साथ है। खैर।
1: जी जी, तो वैसे जाते जाते बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में आ रहे हैं, लेकिन वक्त तो हो गया हमारा जाने का, इसलिए एक आखिरी सवाल जो हम आपसे पूछना चाहेंगे, जिस शहर में आप रहते हैं उस शहर को समर्पित कोई गीत, कोई रचना आपकी जो आप अभी हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहें।
0: जी, क्या बात है, और वाकई जहाँ हम रहते हैं उसका कर संपर होता है, तो मैं जरूर बात रखूंगा, एक गीत के माध्यम से मैं अपने शहर को जो समर्पित करना चाहता हूँ पंक्तियाँ। शहर मेरा पीतल नगरी है, स्वर्णिम आभा लिए हुए,

अब हाल ये हुए। इस गीत में आपको जो इससे संबंधित इतिहास है वो थोड़ा देखने मिलेगा, उसकी झलक मिलेगी। तो जी। मैं रखता हूँ। यहाँ अनेकों रंग समेटे प्रतिभाएं आभामय हैं, विश्व पटल पर धाक जमाने योग्य कुशल हैं तन्मय हैं। यहाँ अनेकों रंग समेटे प्रतिभाएं आभामय हैं, विश्व पटल पर धाक जमाने योग्य कुशल हैं तन्मय हैं। रंग

किए हुए। ये पीतल लकड़ी कहलाता है, विश्वविख्यात है और नक्काशी यहाँ का मेन वर्क है। नक्काशी मीनाकारी अद्भुत है कितनी बतलाएं, हुक्का बर्तन आभूषण प्रतिमाएं क्या क्या दिखलाएं। नक्काशी मीनाकारी अद्भुत है कितनी बतलाएं, हुक्का बर्तन आभूषण प्रति

0: अपने शहर मुरादाबाद को अपने बहुत ही प्यारे शब्दों में पिरोया है और इसका वर्णन किया है। बहुत अच्छा लगा हमें भी और हमारे सुनने वाले श्रोताओं को भी। इस एपिसोड का ये हमारा विशेष बातचीत का कार्यक्रम और इसका पहला एपिसोड आप लोग सुन रहे हैं और इसका पुनः प्रसारण आप कल सुनेंगे 9 बजे से सुबह 10 बजे तक। तो इसका फीडबैक मैं अपने शो यानी छाया गीत के शो में जरूर लेना चाहूंगी आप सभी श्रोताओं से। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये कार्यक्रम बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके और इतना कीमती समय आपने हमें दिया और हमारे सभी श्रोताओं के लिए इतना कीमती समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बहुत बहुत शुक्रिया छाया जी, आपका, रेडियो का और सुनने वाले हमारे सामईन यानी श्रोताओं का भी, आप सभी के तहे दिल से शुक्रिया। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना इतना कीमती समय दिया है।
2: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
1: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
0: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
1: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
0: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
2: मुरादाबाद
0: से संपर्क कीजिए।
1: नियम और शर्तें लागू।
3: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
4: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
3: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
4: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
5: कॉल 7500153841।
6: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: गया ना एक बार नहीं रहना तो नहीं रहना, ओके बाय, मैं जाने।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681। मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
4: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
3: पता लाइन पर प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद, मोबाइल नंबर 7055070552।
5: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
6: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे आरजे आनंद को। प्रोग्राम में आप सभी का फेवरेट हेलो डॉक्टर, और आज इस प्रोग्राम में मैं हूं आपका दोस्त आरजे आनंद। और आज हमारे स्टूडियो में एक बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। आज हम उनसे ढेर सारी बातचीत करने वाले हैं। किस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में एक खास मेहमान को इन्वाइट किया है, आमंत्रित किया है, जरूर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, आंखें हमारे शरीर का सबसे अनमोल हिस्सा है, लेकिन अक्सर हम उन्हीं की देखभाल को नजरअंदाज कर देते हैं। उन्हीं पूरी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर संजय चंदा, कॉर्निया स्पेशलिस्ट सीएल गुप्ता आई इंस्टीट्यूट से मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 के स्टूडियो में। कैसे हैं आप, सबसे पहले ये बताइए।
1: थैंक यू आनंद, मेरा नाम डॉक्टर संजय चंदा है
0: जी।
1: मैं सीएल गुप्ता आंखों के संस्थान में कॉर्निया डिपार्टमेंट में स्पेशलिस्ट हूं
0: जी। सर
1: मेरी ट्रेनिंग एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट हैदराबाद में हुई, जहां पे मैंने हाई वॉल्यूम कॉर्नियल ट्रांसप्लांट सर्जरी, रिट्रैक्टिव सर्जरी और कैटरेक्ट सर्जरी में काफी दक्षता हासिल करी है।
0: अरे वाह, ब्यूटीफुल। सर ने बहुत ही मतलब प्यार के साथ जो है अपना इंट्रोडक्शन दिया है मुरादाबाद वालों को। सर सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, आपको हमारे एफएम स्टूडियो में आके कैसा लग रहा है, मुरादाबाद के रेडियो में आके कैसा लग रहा है आपको?
1: जी, मैं बहुत खुश हूँ, आज अपने आप को बहुत गर्व भी महसूस करता हूँ।
0: अरे वाह, वेरी नाइस,
1: हम आपसे जुड़ सके हैं और इसके जरिए हम बाकी लोगों से भी अपने प्रिय बाकी सबसे जुड़ेंगे। इस बात में बहुत देर सारी खुशी।
0: क्या बात है, थैंक यू सो मच संजय जी। सर आप यहाँ पर इतना कीमती समय निकल कर आए हैं डॉक्टर संजय जी। सर मैं आपसे यहाँ पर डेफिनेटली सवाल जवाब करूंगा, लेकिन उससे पहले अभी मैंने अपने लिसनर्स के साथ किया था, उनसे मैंने साझा करी कि हमारी शरीर की सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे खूबसूरत चीज होती है हमारी आंखें, जिनको हम अक्सर अवॉइड कर देते हैं ना, उसका ध्यान नहीं रखते हैं। तो आप मुझे सबसे पहले यही बताइए कि हमारे शरीर का कितना महत्वपूर्ण अंग है हमारी आंखें, जिनसे हम पूरी कायनात, पूरी ये दुनिया देखते हैं खूबसूरत।
1: जी, आपने बखूब कहा कि आंखें हमारी एक महत्वपूर्ण इंद्रियों में से है।
0: बिल्कुल,
1: और सटीक जानकारी, समय पे चेकअप और अपनी सूझबूझ के जरिए हम अपनी आंखों की सेहत को लंबे समय तक अच्छी सेहत में रख सकते हैं। इन विषयों पे हम आपसे चर्चा करेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल। सो देखिए, हम साथ डॉक्टर संजय चंदा जी मौजूद हैं। आज आपको बहुत सारे आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। एंड ऑफ कोर्स जब बात आती है हमारे सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट की, तो डेफिनेटली आंखों की बातें होना तो बनता है। फिलहाल डॉक्टर साहब आपका हम वंस अगेन वेलकम करेंगे। और लिसनर्स, चलिए सर से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को बताएंगे कि आंखों को स्वस्थ रखने के लिए हमें रोजाना कौन कौन सी चीजें हैं जिनको अपनी रूटीन में डेफिनेटली ध्यान में रखना चाहिए।
1: देखिए आनंद, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हमें आंखों की सेहत को शारीरिक स्वास्थ्य से अलग नहीं देखना चाहिए।
0: ट्रू,
1: 100%। डेली अच्छी नींद लेना, पौष्टिक आहार करना, समय पे आंखों की चेकअप करवाना, ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। साथ ही साथ जो लोग लंबे समय पे स्क्रीन पे काम करते हैं, वो अपनी आंखों को मसले नहीं और टाइम टू टाइम अच्छे ब्रेक ले, रिलैक्स हो। जो कड़ी धूप में आउटडोर एक्टिविटी करते हैं, वो अपनी धूप में सन प्रोटेक्शन करें। बच्चे या युवा जो लंबे समय तक अपनी आंखों की चेकअप नहीं कराए, वो अपने रिफ्रेक्टिव करेक्शन की अच्छी जांच कराए। एट द सेम टाइम हमारे लिए ये भी जरूरी है कि आप पौष्टिक अच्छे खाना खाएं, जिसमें से विटामिन ए रिच जाए, जैसे दूध हो गए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, या फिर वो सारे जो आंखों की सेहत के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसमें आती है कि जितने लाल पीले आपको फ्रूट्स या सब्जियां दिखे, जिनमें से पपाया, मैंगो, कद्दू, ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीजें हैं।
0: अच्छा, कैरेट्स का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है?
1: जी जी, आपने सही कहा, कैरेट्स एक विटामिन ए रिच एक अच्छी सब्जी और अच्छी हमारी आंखों की हेल्दी मेंटेनेंस के लिए जरूरी है। टाइम टू टाइम इसका भी आप सेवन करते हैं तो हमारी आंखों को विटामिन ए की पर्याप्त परिमाण मिलती है, जिससे आंखें बिल्कुल सेहतमंद रहती है।
0: डॉक्टर साहब, कहा जाता है गाजर खाने से हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है, तो क्या सच में ये जेन्युइन है?
1: जी जी जी, गाजर में अच्छी परिमाण में विटामिन ए है और विटामिन ए हमारे विजुअल साइकिल को बनाए रखने में बेहद मदद करती है। ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है केवल गाजर ही नहीं, जो आपको गाजर ना मिले तो सारे लाल पीली सब्जियां जिसमें सारी भरपूर परिमाण में विटामिन ए होती है, उन सारी चीजों का, फ्रेश वेजिटेबल्स का अच्छे से सेवन करिए, इससे आंखों की सेहत अच्छी बनी रहे।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे आरजे आनंद को। प्रोग्राम आपका फेवरेट है हेलो डॉक्टर, और आज इस प्रोग्राम में हमारा साथ दे रहे हैं डॉक्टर संजय चंदा जी, जो कॉर्नियो स्पेशलिस्ट हैं सीएल गुप्ता आई इंस्टीट्यूट में। हमारे साथ आज स्टूडियो में उपस्थित हैं, ढेर सारी बातें कर रहे हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आप इतना टाइम निकाल के आए हैं, और सवालों की जो ढेर सारी मैंने एक पूरी चिट्ठी रखी हुई है आपके लिए, एंड आई एम श्योर आप इन क्वेश्चंस का डेफिनेटली देंगे। और बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो मेरे नहीं, हमारे लिसनर्स की भी है। तो दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको पता है डॉक्टर साहब आजकल ना कम उम्र के जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनमें चश्मे लगने का जो मामला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ोतरी होती जा रही है, तो आखिर ये क्यों हो रहा है, क्या इसको रोका जा सकता है?
1: जी आनंद, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। हमारा ये मानना है कि देखिए आज के बच्चे और युवा बहुत ज्यादा अपना टाइम लैपटॉप, मोबाइल, टीवी स्क्रीन पे बिताते हैं, तो इससे क्या होता है इनकी आउटडोर एक्टिविटी बिल्कुल कम हो गई, बाहर खेलना कूदना और ये वक्त बिताना उनका बिल्कुल कम हो गया है।
0: राइट,
1: देखिए एक 2024 में जर्नल में आर्टिकल आई है जिसपे उन्होंने अनुमान लगाया कि 2050 तक लगभग आधी मानव जाति 50% ह्यूमन पॉपुलेशन चश्मा लेकर पहन के बाहर घूमते रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ आप और हम जब सड़क चलेंगे हर दूसरे आदमी की आंखों में चश्मा होगा, और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज के दिन अगर हम चाइना में देखें तो कक्षा 10 में पास होते हुए बच्चों में 100 बच्चों में से केवल 10 ही बच्चे ऐसे नॉर्मल होंगे जो बिना चश्मे से, 90% चश्मे पहन रहे। और हमें उन देशों से भी सीखना चाहिए जो आर्थिक तरीके से पूरे सशक्त है। जैसे मैं ये उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे स्वीडन, आज से कुछ सालों पहले उन्होंने ऐसी मुहिम चलाई कि वो पेपरलेस हो चुके और 100% डिजिटल रिवॉल्यूशन को अपनाया। सारी पढ़ाई लिखाई, जॉब और सारी चीजों में उन्होंने डिस्प्ले स्क्रीन इंट्रोड्यूस कर दिया। इसका उन्हें भारी खामियाजा भुगतना पड़ा। आज के जमाने में जितने युवा निकले, न केवल उनकी मेमोरी रिटेंशन कम हो गई, उनकी अटेंशन स्पैन कम हो गई और सारे सबको चश्मा लगना चालू हो गया। ये एक सरप्राइजिंग घटना है कि जिससे हमें सीख लेनी चाहिए कि एक्चुअली अब उन्होंने हजारों करोड़ की लागत से ये नया मुहिम चलाया कि अब उनको वापस पेन एंड पेपर पे वापस जाना है। और एट द सेम टाइम हमें भी ये सोचना होगा कि इन सारे चीजों के पीछे अल्टीमेटली गोल क्या है। आप अपने मानव जाति को क्या चश्मे के साथ देखना चाहते हैं या उतना स्वस्थ देखना चाहते हैं? देखिए अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजी ये कहती है कि कोई भी बच्चा अगर 2 साल से नीचे है तो उसकी स्क्रीन टाइम एब्सोल्युटली 0 होनी चाहिए। उसके हाथों में बिल्कुल कोई भी डिस्प्ले स्क्रीन नहीं दिया जाना चाहिए। अगर 2 से 5 साल के बीच में तो दिन में महज 30 मिनट या उससे ज्यादा नहीं। इसका रिलेवेंस ये कि देखिए एक्सेप्शंस भी है। आजकल वर्किंग वुमेन है, अपने बच्चों को घर रख के जाते हैं तो अपने मम्मी नाना नानी से कुछ समय के लिए तो वीडियो कॉल में जरूर वो मिल सकते हैं।
0: एब्सोल्युटली।
1: और आगे की मुहिम ये कि हमारे सेल गुप्ता आंखों के अस्पताल में हमने मायोपिया क्लिनिक बनाई है। मायोपिया क्लिनिक में उन बच्चों को अब दिखा जाता है जिसमें उनके चश्मे चढ़ते हैं, उनके लिए हम ग्लासेस देते हैं ताकि वो 100% अच्छी रोशनी दिख पाए। न केवल वो रोशनी को अच्छा एंजॉय कर पाए पर हमारे पास वो सिस्टम है जिससे हम उन बच्चों को ढूंढ निकालते हैं जिनमें मायोपिया प्रोग्रेस होने के चांसेस है, जिसमें चश्मे के नंबर बढ़ने के चांस। ऐसे हालात में हम उनको अगर चुनिंदा बच्चों को DIMS जो कि डिफोकस इंड्यूस मायोपिक सेगमेंट ग्लासेस देते हैं, लो डोज एट्रोपिन की आई ड्रॉप्स देते हैं, इनसे दिखा गया कि आगे जाके उनके चश्मे के नंबर बढ़ने के तादाद कम हो जाते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप मुझे पूछते हैं कि ये क्या तरीका रहेगा जिससे हम आंखों के नंबर कम कर पाएंगे, तो डेफिनेटली आपको स्क्रीन टाइम कम करना होगा, बच्चों को धूल मिट्टी धूप में खेलने देना होगा और जिनमें चश्मे चढ़ गए हैं उनको जरूर आंखों के चेकअप के लिए अस्पताल तक आंखों की स्क्रीनिंग या चेकअप के लिए आना पड़ेगा।
0: लगातार उनको कंसल्ट करना पड़ेगा, अपने डॉक्टर से विजिट करना पड़ेगा। तो देखिए बहुत ही कमाल की जानकारी जो है आज आपको मिल रही है हमारे स्टेशन के जरिए। आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो डॉक्टर, और आज हमारे साथ संजय चंदा जी मौजूद हैं स्टूडियो में जो ढेर सारी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आपकी आई से जुड़ी आज हम बात कर रहे हैं। हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होती है हमारी आंखें, जिस पर हम बहुत कम ध्यान दे पाते हैं। तो आज बस उसी सारी प्रॉब्लम्स जो आप बड़ी क्वेश्चंस भी हमें भेजते हैं, आज उन्हीं को हमने सोचा सर के साथ में जो हम पूछेंगे और सर से उन सारे सवालों के जवाब लेंगे। इस वक्त CL गुप्ता आई इंस्टीट्यूट से हमारे बीच में डॉक्टर संजय जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। इसी बीच एक और सवाल, लगातार आपको भी पता है मोबाइल, लैपटॉप, टीवी और तमाम सारी टेक्नोलॉजी जिस पर आजकल हमारा यूथ बहुत समय बिताता है, क्या लगातार हम जब स्क्रीन पे रहते हैं तो इससे हमारी आंखों पे कोई फर्क पड़ता है? जो मोबाइल की लाइट है, जो लैपटॉप की लाइट है, जो हमारी स्क्रीन की लाइट है, वो कैसे हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाती है?
1: जी देखिए इसके 2 पहलू है।
0: जी
1: आजकल ज्यादातर लोग, युवा या प्रोफेशनल लोग, सभी ज्यादातर वक्त अपना डिस्प्ले मॉनिटर्स पे काम करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: बच्चे कहिए, वो स्कूल के होमवर्क, या फिर प्रोफेशनल लोग करिए, लंबे घंटों तक डिजिटल आई स्ट्रेन के शिकार है। डिजिटल आई स्ट्रेन या फिर कंप्यूटर विजन सिंड्रोम वो स्थिति है जिसमें आप लंबे समय कंप्यूटर्स पे बिताने के कारण आपकी आंखें ड्राई हो जाती है, जैसे सूखापन, आंखों में जलन होना और धुंधलापन की शिकायत होती है। और यही जब लंबे समय तक चले तो आंखों में साथ साथ आपको सरदर्द होने लगती है, कंधे में दर्द, और इसके साथ अलग अलग तरह की शिकायतें आनी शुरू होती है आपको।
0: जी जी।
1: तो देखिए इसके 2 पहलू है। पहली बात है एक तो मनोरंजन और दूसरी बात है जरूरत। आज अगर हम देखेंगे तो ज्यादातर बच्चों ये एक लत लगी हुई है कि वीडियो गेम, कार्टून और इन चीजों पे वो बहुत जरूरत से ज्यादा वक्त बिताते हैं।
0: एडिक्शन होने लग गई है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और जरूरत एक ऐसी चीज है जिसमें हम चीजों को चाहते हुए भी अवॉइड ना कर पाए।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि जमाने के साथ साथ एडवांस रहने करने के लिए आप टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से नकार नहीं सकते।
0: एब्सोल्युटली सर।
1: अब ऐसे हालात में हमारे पास एक ही तोड़ बचता है, जो लंबे समय तक स्क्रीन पे बचे हैं वो 20-20-20 रूल को फॉलो करें। हर 20 मिनट पे एटलीस्ट 20 सेकंड के लिए 20 फुट की दूरी पे आपको ध्यान देना है। इससे क्या होगा कि आपकी आंखें जो कंस्टेंटली एक जगह स्क्रीन पे फोकस कर रही है वो साइकिल ब्रेक होगा। और देखिए, आप और हम जैसे सहज भाषा में बात कर रहे तो हर मिनट में जाने अनजाने हमारी पलकें लगभग 17 या 18 बार ब्लिंक कर रही है।
0: ओके।
1: लेकिन जब हम ध्यान से एक ही जगह पे फोकस कर रहे हैं तो पूरे मिनट में केवल वो 2 या 3 बार ब्लिंक करती है।
0: करेक्ट।
1: इससे ये होता है कि आंखों के सामने आए हुए जो आंसू के परत है पूरी तरह से सूख जाते हैं और ये सारी समस्या उससे जुड़ी हुई है। आंखों का थक जाना, लाल हो जाना, बर्निंग सेंसेशन आना, ये सारी कंप्यूटर विजन सिंड्रोम की शिकायतें हैं। देखिए, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम को डील करने के लिए या डिजिटलाइज स्ट्रेन को डील करने के लिए आपको नियमित आंखों की चेकअप की जरूरी होगी। अगर सूखेपन की शिकायत होगी तो आपको डॉक्टर के पास आके लुब्रिकेंट की दवाइयां इस्तेमाल करनी होगी, आई ड्रॉप्स इस्तेमाल करना होगा। अगर डिस्प्ले यूनिट पे लंबे समय पर आप है तो ब्लू कलर ग्लासेस का इस्तेमाल करना होगा जो आपकी डिजिटल आई स्ट्रेन को कम कर सकती है। इसके साथ ही आपकी सिटिंग पोजीशन, जिसे हम कहते हैं एर्गोनॉमिक्स, आपकी स्किन की ब्राइटनेस इतनी कम होनी चाहिए कि आंखों को तकलीफ ना दे। सिटिंग पोजीशन ऐसी हो ताकि आपकी आंखों के लेवल से नीचे डिस्प्ले यूनिट हो। एक ही साथ अपने बैठने की कला, कंप्यूटर स्क्रीन को एटलीस्ट एक हाथ दूरी पे रखें, ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है। अगर इन चीजों को बारीकी से हम ध्यान दें, आपके डिस्प्ले यूनिट या कंप्यूटर सिस्टम के आसपास मॉइस्चर बनाए रखने के लिए अगर ह्यूमिडिफायर इस्तेमाल करें, और एक ही साथ हम ये भी ध्यान दें कि कोई तेज गति में चलता हुआ एसी या पंखा आपके चेहरे या आंखों पे डायरेक्टली हवा ना डाले, इन सारी चीजों को अगर हम फॉलो कर सकते हैं तो डिजिटल आई स्ट्रीन या लैपटॉप या स्क्रीन से आते हुए दिक्कतों को हम ओवरकम कर सकते हैं।
0: देखिए डॉक्टर साहब ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो है आपके साथ साझा करी है। लिसनर्स, इस वक्त आप आनंद के साथ हैं और ऐसी तमाम सारी जानकारियां जो है आज लगातार आपको मिलती रहेंगी इस प्रोग्राम में। और अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने नाम के साथ अपना सवाल 9837968। ये मेरे स्टूडियो का नंबर है, इस स्टूडियो के नंबर पे आप जो भी कुछ पूछना चाहते हैं वो डेफिनेटली पूछ सकते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, आज हम सर से ढेर सारी बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मानसून का मौसम है और ऐसे में जो है बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कहीं ना कहीं हमारी आंखों के लिए हम खतरनाक हैं, लेकिन हम अक्सर अवॉइड करते हैं। मॉनसून का मजा लेने के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं, बट हमें पता ही नहीं होता है कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी आंखों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। कई बार हम बारिश से आते हैं, हमारी आंखें लाल होती है, हम अवॉइड कर देते हैं, हमें लगता है कि नहीं ये तो नॉर्मली पानी आंख में चला गया। इसलिए सच में मॉनसून में भी हमारी आंखों को कोई प्रॉब्लम हो सकती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल आनंद, आपने जो पॉइंट उठाया, मॉनसून और ये बारिश हमारे लिए सजा भी है और मजा भी।
0: ये तो टैगलाइन बनी, सजा और मजा।
1: जैसे मई जून के महीने में कड़ाके की गर्मी होती है और तुरंत बारिश,
0: राइट,
1: बारिश के बाद सडनली टेम्परेचर कम हो जाना, ऐसे ही माहौल में प्रचंड परिमाण में चारों और एनवायरनमेंट में, पर्यावरण में ये वायरसेस का फैलना चालू होता है।
0: जी जी।
1: इसमें सबसे कॉमन है वो एडिनोवायरल कंजंक्टिवाइटिस, जिसे भाषा में हम कहते हैं कि आई फ्लू। ऐसे जब लोगों को आई फ्लू हो जाए, आंखों में लाली होना, आंखों में पानी आना, सूजन आना और एक ही साथ में धुंधलापन होने की शिकायत होती है।
0: जी जी।
1: आई फ्लू एक ऐसी स्थिति है जिसमें छुआछूत की परिस्थिति रहती है।
0: ओके।
1: आपको ये ध्यान देना होगा कि इसी बरसात के मौसम में हम देखते हैं ज्यादातर स्कूलों में, कॉलेजों में या फिर कोई भी प्रतिष्ठानों में जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं, इनमें एक दो लोगों को अगर आई फ्लू हो जाए, साथ में सबको एक ही साथ वो देती हुई जाती है, एक के बाद एक सबको होता रहता है। इसका सबसे कॉमन कारण है ये कम्युनिकेबल डिजीज है। आपको इसके लिए कुछ सावधानियां बरतनी होगी, बार बार आंखों को छूना नहीं है, हैंड वॉश करते रहना है, जिनकी आंखें लाल हो उनसे थोड़ी दूरी बनाए रखनी है, उनके इस्तेमाल किए हुए तौलिए, गमछे या प्लेट, इन सारी चीजों को दूरी बनानी है। और अगर आंखें लाल के साथ होने साथ साथ आपको दर्द भी होता है तो डॉक्टर की चेकअप जरूर करानी है। कॉमन आई फ्लू के सिवा कुछ चीजें और है, जैसे लोग मैदानों में कीचड़ में अगर फुटबॉल खेले, क्रिकेट खेले, ऐसे में कोई कीचड़ आंखों में आ जाए तो माइक्रोस्पोरिडियल कंजंक्टिवाइटिस, ये भी एक स्थिति है जो आंखों में रोशनी धुंधलापन और यही फ्लू जैसे लक्षण लाते हैं। अक्सर इन चीजों में डिफरेंशिएट कर पाना मुश्किल होता है, तो अगर आपके पास कोई भी ऐसी परिस्थिति हो जो 2 दिन से ज्यादा आंखों में दर्द, दुखन, लाली लाए, तो आप बेझिझक आपकी आंखों के डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि यही मानसून का सीजन है जो हमें इस सारी चीजों में दिखते को मिलता है कि सबसे ज्यादा आंखें इन्हीं चीजों से परेशान रहती है।
0: देखिए मानसून में आप डेफिनेटली एंजॉय कीजिए, बारिश में भीगना सभी को पसंद है, आप जरूर भीगिए, आप चाय पकौड़ों का भी आनंद लीजिए, लेकिन अपनी हेल्थ के साथ साथ अपनी आंखों की हेल्थ का भी विशेष कर ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है और इसको रखना ही पड़ेगा। डॉक्टर साहब ने अभी आपके साथ बहुत सारी बातें बातें साझा करी, तो उन बातों को अवॉइड नहीं करना है। ये बहुत ही काम की चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें, अक्सर हम इनको अवॉइड करते हैं, बट वही चीजें होती हैं जो बाद में हमारे ऊपर बहुत ज्यादा मुश्किलें लेकर आ जाती हैं। क्यों डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, मेरा सवाल रहेगा, मोतियाबिंद और काला मोतिया, इन दोनों में क्या अंतर है? क्या काला मोतिया बिना लक्षण के भी हो सकता है? कई लोगों में ये मिथ होता है कि नहीं, बिना सिम्टम्स के तो होगा ही नहीं।
1: जी जी जी आनंद, जब हम जन्म के साथ आते हैं, कुदरती तौर पे हमारी आंखों की जो लेंस होती है वो बिल्कुल पानी की तरह स्वच्छ या पारदर्शी होती है, कांच की तरह, जिसमें 100% रोशनी आर पार जाती है और हमें साफ दिखता रहता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती रहती है, लगभग 50 के दशक में वही जो पारदर्शी ह्यूमन क्रिस्टलिन लेंस है वो धीरे धीरे सफेद बनने चालू होती है, और एक वक्त ऐसा आता है जब वो मोमबत्ती जैसी सफेद बनने लगती है। अब क्या होता है, जो पहले 100% रोशनी आंखों के अंदर जा रही थी, केवल 10% या 20% रोशनी पहुंच पाती है और इससे आंखों में धुंधलापन जाता है। यही है सफेद मोतिया या जिसे कैटरेक्ट कहते हैं। कैटरेक्ट एक बार उम्र के साथ बन जाए तो उसकी आई ड्रॉप, चश्मे, गोलियां और एक्सरसाइज से कोई इलाज नहीं हो पाता। इसका एक ही तरीका है कि आपको ऑपरेशन करा के सही चश्मों का इस्तेमाल करना। जबकि ग्लूकोमा एक ऐसी स्थिति है जिसमें आंखों की ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचता है। अक्सर ये प्रेशर से जुड़ी हुई हालात होती है जिसमें आंखों में टे हुए आंखों की प्रेशर जो बढ़ी हुई रहती है नसों को इतनी डैमेज कर देती है कि उसके रोशनियां कम हो जाती है। अब सवाल ये कि ऐसी हालात में इसके कोई लक्षण नहीं होते
0: जी।
1: जब तक आपकी आंख की रोशनी उतनी ना कम हो जाए कि आपको महसूस हो कुछ गड़बड़ हो, तब तक आपकी ये ग्लॉकोमा काफी आगे बढ़ चुका होता है। इसलिए इसे थीफ ऑफ विजन भी कहा जाता है या रोशनी की चोर भी कही जाती है। हर इंसान के लिए ये जरूरी है कि अगर आपके परिवार में कोई ग्लॉकोमा के पीड़ित है, जैसे मम्मी, पापा, भाई बहन, तो आपके लिए अनिवार्य है कि आंखों की चेकअप करके ग्लॉकोमा को ढूंढ निकालना। और कोई भी व्यक्ति जो 40 साल की उम्र से ऊपर है, उनकी नियमित साल में एक बार चेकअप जरूर हो, ताकि अगर ग्लॉकोमा उनमें छुपी हुई हो तो वक्त से पहले न केवल हम जांच से ढूंढ निकाले बल्कि सही इलाज करके उनको घटती हुई रोशनी से रोक सके।
0: डॉक्टर साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने साझा करी, थैंक यू सो मच। एक और सवाल मेरे जहन में है, मैं चाहूंगा सीधा आपसे पूछ लेता हूँ, बिना इधर उधर बातें घुमाए। डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर का जो मतलब आंखों की रोशनी पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? जो इसके पेशेंट होते हैं उनकी आंखों पर क्या इसका कोई फर्क पड़ता है सर? और कितने समय में उसको अपनी आंखों की जांच करानी चाहिए अगर वो मरीज इससे ग्रस्त है तो?
1: जी, डायबिटीज और हाइपरटेंशन दोनों ही एक ऐसी परिस्थिति है जो उम्र के साथ लगभग सबको आती रहती है।
0: ठीक है,
1: अब ऐसी परिस्थिति में ये दोनों ही डायबिटीज और हाइपरटेंशन आंखों की रक्त नलिका या फिर ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करती है। डायबिटीज में छोटे छोटे ब्लड वेसल से लीक होने लगते हैं जिसके कारण पर्दों में या फिर रेटिना में खून के धब्बे आ जाते हैं। आंखों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है मैकुला, पर्दे का एक अंग, उसमें सूजन आ जाती है जिसे डायबिटिक मैकुलर एडिमा कहते हैं। अक्सर प्रेशर बढ़ने के कारण खून की नसें जो अंदर में फट जाती है जिससे खून और रक्त प्रवाह रुक जाती है, इसे वास्कुलर ऑक्लूशन कहते हैं, जो कि ब्रांच रेटिनल वेन या सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूशन हो सकती है। आपके लिए जरूरी है कि अगर आपको बीपी और शुगर की डायग्नोसिस बनी है, अगर आपकी नियमित चेकअप नहीं हुई, तो साल में एक दफा जरूर आंखों की पर्दे की चेकअप करें क्योंकि ये पर्दे को नुकसान देती है। और अगर पहले से ऑलरेडी आप डायग्नोस हो चुके हैं कि आपकी डायबिटिक रेटिनोपैथी या बीपी के कारण कुछ परिवर्तन आ चुके हैं, तो डॉक्टर के कहे अनुसार आपको साल में हर 6 महीने में या उनके कहे मुताबिक और ज्यादा चेकअप की भी जरूरत।
0: ओके, बहुत ही बेहतरीन। डॉक्टर साहब, अगर आंखों में चोट लग जाए या आंखों में धूल, केमिकल या कोई बाहरी चीज चली जाए, तो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो बरतनी चाहिए और इसका असर क्या होता है, इसका कारण क्या होता है, इस पे भी आप बताइए। जैसे कॉर्नियल अल्सर क्या है, इसके बारे में भी मैं जानना चाहूंगा।
1: जी जी नंदी, आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है, क्योंकि बच्चे और बड़े युवा सब में हमने कभी ना कभी आंखों में चोट को महसूस किया है। अब ऐसी परिस्थिति में सभी हम ये थोड़े हक्के बक्के रह जाते कि आगे हमें क्या करना है। देखिए, छोटे धूल कण और धूल मिट्टी आंखों में आ जाए तो उसे साफ पेयजल से आप इसे आंखों को साफ करिए। अगर इससे ज्यादा कुछ है, मान लीजिए आंखों में नुकीले कुछ चीजें चुभ गई है और उससे आपको बहुत दर्द हो रहा है, तो ऐसी में इसमें आपको आंखों के चेकअप के लिए डॉक्टर के पास आना ही जब पड़ेगा, ताकि आप इसे कोई जाने अनजाने में आंखों को कुछ एक्स्ट्रा नुकसान ना दे दे। देखिए, केमिकल पड़ जाना भी बहुत एक स्वाभाविक तरीका है। जैसे बच्चे खेलते खेलते हुए फेविकॉल गिरा देते हैं, वॉल की पेंटिंग चल रही है वो टर्पेंटाइन ऑयल गिरा देते हैं, चूने आंखों में लगा देते हैं। दिवाली में हमने देखा कि सबसे ज्यादा उन्होंने कार्बाइड गन से अपनी आंखों को इंजरी किया। अक्सर बड़े अपने वॉशरूम या टॉयलेट क्लीन करते हुए तेजाब आंखों में गिरा देते हैं। ये हर्पिक जैसी चीजें जिससे टॉयलेट क्लीन कर जाते हैं वो भी आंखों में गिर जाए तो बहुत खतरनाक नुकसान आंखों को दे सकते हैं। देखिए, ऐसी कोई भी परिस्थिति आ जाए तो बेझिझक आप अपने सेफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर से आंखों को ज्यादा समय तक, एटलीस्ट 15-20 मिनट अच्छे से धोइए, और बिना कोई वक्त गवाए आप एटलीस्ट डॉक्टर की चेकअप में आइए ताकि इसके जुड़े हुए आगे जो नुकसान है उसको हम तुरंत झेलने से बच सके।
0: बहुत ही इम्पोर्टेंट बात अभी डॉक्टर साहब ने हमारे साथ साझा करी। डॉक्टर साहब वंस अगेन थैंक यू, और सच में आप बहुत ही तमाम ऐसी खास जानकारियां और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आज आप हमारे रेडियो के जरिए तमाम शहरवासियों को आप साझा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके इंस्टीट्यूट का जिन्होंने इतना इम्पोर्टेंट टाइम और ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वाला सेगमेंट हमारे साथ शेयर किया। वेरी वेरी हैप्पी। डॉक्टर साहब ये लेजर रिफ्रैक्टिव सर्जरी क्या है, लेजर रिफ्रैक्टिव सर्जरी के उम्मीदवार कौन होते हैं और इसमें उन्हें क्या लाभ मिलता है, थोड़ा सा इसके विषय में भी आप बताइए।
1: जी आनंद, लेजर रिफ्रैक्टिव सर्जरी वो प्रक्रिया है जिससे हम आंखों के सामने कॉर्निया की शेप बदल देते हैं। इसका मेन फायदा ये है कि जो लोग लंबे अरसे से चश्मा पहन रहे हैं,
0: हाँ जी,
1: और वो चाहते हैं कि वो अपने चश्मे हटाकर बिना चश्मे से अपनी पूरी रोशनी देख पाए।
0: जी
1: देखिए, लोगों की अपनी अपनी जरूरतें हैं। जैसे कुछ लोगों का शौक है कि मुझे स्विमिंग, हैवी स्पोर्ट्स, फुटबॉल, क्रिकेट खेलना है। कुछ लोगों के लिए ये जरूरी है कि मेरी शादी है, मेरी शूटिंग है जिसमें मेरा चेहरा सुंदर दिखना है। कुछ लोगों की ये जरूरत है कि मेरी सिलेक्शन हो गई है आर्मी, डिफेंस, पुलिस, नेवी, और मेरा एग्जाम फिट आया, लेकिन अब मुझे मेडिकल फिटनेस में इतना दिखाना है कि मेरी रोशनी बिना चश्मे से फुल 6x6 या 100% है। ऐसे हालात में उन कैंडिडेट्स के लिए बिल्कुल एक नायाब तरीका है जिसमें हम लेजर की प्रक्रिया से आंखों की पुतली में ऐसी परिवर्तन लाते हैं जिससे आप जो भी माइनस नंबर हो, प्लस नंबर हो, उसे लेसिक पीआरके जैसी पद्धति से आपकी रोशनी को फुल बिना चश्मे या कॉन्टेक्ट लेंस से पूरी रोशनी दिलाने की प्रयास करते हैं। इसके लिए ये जरूरी है कि जो भी कैंडिडेट अपनी ये ऑपरेशन कराना चाहे वो अपनी आंखों की स्क्रीनिंग करे। इसमें हम मेनली ये देखना चाहते हैं कि क्या आपकी पुतली में उतनी ताकत है कि वो इस तरह के ऑपरेशन को झेल जाए। अक्सर पुतली के मोटापे पे ये निर्भर करता है। अगर वो लेसिक या पीआरके के लिए सुटेबल ना निकले तो उनमें दूसरी पद्धति जैसे आईसीएल जैसी पद्धति से हम पूरी रोशनी दिला सकते हैं। अक्सर इसके लिए ये जरूरी होता है कि उनकी उम्र 20-21 साल से ऊपर हो और पुतली में अच्छे मोटापे हो। सो लेजर डिफेक्टिव सर्जरी की पद्धति से हम उन सारे तमाम लोगों को वो नई उम्मीदें देते हैं जो लंबे समय तक कॉन्टेक्ट लेंस और मोटे चश्मे पहनकर थक चुके हैं और अपनी कॉन्फिडेंस और जिंदगी को वापस पाना चाहते हैं।
0: बेहतरीन सर, बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपने शेयर करी। डॉक्टर साहब मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा इसी बीच, नेत्रदान बेसिकली क्या है और कौन है जो अपनी आंखों को दान कर सकते हैं और नेत्रदान से किस प्रकार के मरीजों को जो है मतलब लाभ होता है?
1: जी आपने ये बहुत एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। देखिए, नेत्रदान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोगों की मृत्यु के पश्चात वो अपनी आंखें किसी और को दान दे जाते हैं ताकि उनकी जिंदगी में दोबारा रोशनी बन सके।
0: बिल्कुल।
1: देखिए, भारत में आज के दिन लगभग 13 से 14 लाख लोग ऐसे हैं जो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस के शिकार हैं। कॉर्नियल ब्लाइंडनेस एक ऐसी अंधता है जिसमें आंखों की काली पुतली जो पारदर्शी होती है उसमें किसी प्रकार की सफेदी आ जाती है। वो अलग अलग कारणों से हो सकती है, कभी घाव लग जाना, चोट लग जाना या जन्मगत आए हुए कुछ कृत्रिम या विकृतियों के कारण उनकी आंखों की पुतली स्वच्छ नहीं रह पाती।
0: जी
1: देखिए, नेत्रदान कोई भी कर सकता है मृत्यु के पश्चात। इसके लिए कोई भी उम्र का, कोई भी ब्लड ग्रुप वाला, कोई भी लिंक हो, इसमें किसी तरह की परहेज नहीं होती। राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1919 पे आपको फोन करना है। वो राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर से जो कोऑर्डिनेटर होते हैं आपके सबसे नजदीकी आई बैंक को सूचित करते हैं। जब भी आपके प्रियजनों की किसी मृत्यु होती है तो आप उनसे संपर्क करें। जो नजदीकी आई बैंक के टेक्नीशियन है वो बेझिझक आपके घर पहुंच जाएंगे और हम आपकी आंखों में से कॉर्निया, केवल नेत्रदान में हम आंखों की कॉर्निया को ही लेते हैं जिसमें चेहरे में किसी किस्म की विकृति नहीं होती, ना ही कोई खून बहता है और ना ही चेहरा खराब लगता है। ऐसे हालात में आए हुए उन दो पुतलियों से हम एटलीस्ट दो लोगों की जिंदगी को नई रोशनी दे सकते हैं। अब ये नेत्रदान के फायदे उन लोगों को होता है जो कॉर्निया रिलेटेड ब्लाइंडनेस से सफर कर रहे हैं। तो नेत्रदान एक महादान है बाकी सब दानों में, जिसमें हमारी आज के दिन में जो इंडिया की मौजूदा स्टैटिस्टिक्स है इसमें साल में 30,000 से ज्यादा नए पुतली की जरूरत वाले मरीज जुड़ते चले जा रहे हैं, जबकि ट्रांसप्लांट केवल 20 या 25 लोगों को हो पा रहा है। तो नेत्रदान की आज के दिन में हमें बहुत आवश्यकता है जिसमें लोगों की जागरूकता कम होने के कारण हम इस प्रक्रिया को पूरी नहीं कर पा रहे। तो मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को आग्रह करूंगा कि वो नेत्रदान के विषय में अपनी जागरूकता बढ़ाए और अपने प्रियजनों की मृत्यु के बाद राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1919 पे जरूर कॉल करें ताकि एक अंध व्यक्ति की जिंदगी में हम दोबारा कॉर्निया ब्लाइंडनेस से जुड़ी हुई तक उन कमियों को कमियों को निकाल के हम उनकी अच्छी रोशनी दिला सके।
0: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत जो है एक संदेश भी था सोशली लोगों के लिए और बहुत ही अच्छा आपने जो है कहीं ना कहीं इसको ये भी आपने एक संदेश दे दिया है कि सिर्फ आंखें हमारे लिए नहीं होती, हमारे जाने के बाद किसी और की जिंदगी को भी वो रोशन कर सकती हैं। बहुत ही खूबसूरत। तो दोस्तों कहते हैं ना कि कर दिखाइए कुछ ऐसा ये दुनिया करना चाहे आपके जैसा, तो वो चीज आप भी कर सकते हैं, बस जरूरत है सही जज्बे की, है ना। और डॉक्टर साहब इसी बात के साथ मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा, कॉर्निया प्रत्यारोपण के बारे में मैं

0: आगे की लेयर पे है, ऐसे परिस्थिति में हम एंटीरियर लेमेला केराटोप्लास्टी करते हैं जिनमें पहले हो चुके मोतियाबिंद ऑपरेशन या पुतली की अंदरूनी लेयर जिसे एंडोथेलियम कहते हैं उसकी कमजोरी के कारण अंदरूनी लेयर में कुछ कमजोरी आ गए तो सिलेक्टिवली केवल 10 से 15 माइक्रोन की अंदरूनी लेयर बदलते हैं जिसे एंडोथेलियल केराटोप्लास्टी कहते हैं, जिसके तरीके डिसेक्ट डिमेक हो सकते हैं और जिनको पूरी कॉर्निया टोटली आपकी सफेद हो चुकी है या पूरी के सारे लेयर्स पड़ चुके हैं उनके हम फुल थिकनेस पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी करते हैं। तो एक दान में मिली कॉर्निया से आगे की लेयर से हम एक आदमी की आगे की परत को बदल सकते हैं, उसी दान में मिली पुतली की पीछे के लेयर से एक दूसरे बंदे की पीछे खराब हुई लेयर को बदल सकते हैं। अब उनके दान में मिली पुतली में जो स्टेम सेल होते हैं उससे किसी ऑकुलर सर्फेस रिकंस्ट्रक्शन में भी हमें मदद मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं आप अगर समझे कि एक पुतली एक कॉर्निया से शायद हम दो से ज्यादा लोगों की जिंदगी में उजाले की उम्मीद रख सकते हैं।
1: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। डॉक्टर संजीव चंदा जी जो कॉर्निया स्पेशलिस्ट हैं सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट से आज हमारे स्टूडियो में मौजूद थे, तमाम जानकारियां उन्होंने आज आपके साथ हमारे मुरादाबाद के लिसनर्स के साथ साझा करी। इनफैक्ट मुरादाबाद के बाहर भी लोग हमें सुनते हैं, तमाम सुनने वालों के साथ ये छोटी छोटी जानकारी जो शायद मुझे और आपको पता भी नहीं थी वो तमाम जानकारियां आज डॉक्टर संजय जी ने हमारे साथ साझा करी। सर आपका FM मुरादाबाद RJ आनंद दिल से थैंक यू करता है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड वंस अगेन वंडरफुल टॉकिंग टू यू। बहुत मजा आया आपके साथ बातचीत करके एंड बहुत अच्छे से आपने इन्फॉर्मेशन को डिलीवर किया। जाते जाते हमारी तमाम मुरादाबाद की जनता को या जो लोग हमें मुरादाबाद के बाहर भी सुन रहे हैं उनको आप क्या संदेश देंगे जाते जाते अपनी ओर से, कोई एक मैसेज जो आपको लगता है बहुत जरूरी है जनता के लिए?
0: देखिए मैं सभी से ये कहना चाहूंगा कि आंखें और ये विजन की सेंस एक दुर्लभ इंद्रियों में से है जो हमारे पास एक बहुत बेशकीमती है। अब हमें इस चीज की जिम्मेदारी अपनानी होगी कि आपकी रोशनी के लिए आप अपना बहुत ज्यादा अच्छे से ख्याल रखें और साथ ही में समाज में जो लोग डिप्राइव्ड है जिनकी रोशनी कम है उनके प्रति भी थोड़ी सेंसिटिविटी दिखाए। नेत्रदान जैसी चीजों को आप बहुत ज्यादा बढ़ावा दीजिए। हमको ट्रांसप्लांट करने में सक्षम है लेकिन हमें ट्रांसप्लांट के लिए उचित परिमाण में कॉर्निया नहीं मिल पा रही, जिसके लिए सोशल अवेयरनेस एक बहुत जरूरी चीज है। आप जितनी ज्यादा अवेयरनेस करेंगे उतनी ज्यादा हमें आई डोनेशन मिलेगी, उतनी ही ज्यादा जिंदगियों में हम रोशनी भर पाएंगे। और जब जब हमें मायोपिया लेसिक लेजर रिफ्रेक्टिव सर्जरी इन सारी चीजों की जरूरत होगी आप जरूर याद करिए वर्ल्ड क्लास अरेंजमेंट के साथ सीएल गुप्ता आंखों के इंस्टीट्यूट में ये सारी उपलब्धियां हैं और आप हमसे जरूर मिले जब जब आपकी ये जरूरत होगी। हम आपको बेशक बिल्कुल दिल से पूरी सर्विसेज देंगे और इसके साथ आप सभी लोगों को ढेर सारा प्यार और मैं सबको सभी स्वस्थ रहे अच्छे रहे आपका दिन शुभ हो।
1: थैंक यू सो मच डॉक्टर संजय चंदा जी कॉर्निया स्पेशलिस्ट सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट से हमारे बीच में मौजूद थे। डॉक्टर संजय चंदा जी का हम दिल से थैंक यू करना चाहते हैं, आज तमाम जानकारियां उन्होंने FM मुरादाबाद 89.6 FM के माध्यम से हमारे तमाम लिसनर तक पहुंचाई ये छोटी छोटी जानकारियां। मुझे उम्मीद है श्रोताओं आपको ये जानकारियां जरूर पसंद आएंगी और डेफिनेटली आप इन जानकारियों को अपनी लाइफ में जरूर ऐड करेंगे। श्रोताओं छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती है अक्सर जैसे कि मैंने पहले भी कहा भूल जाते हैं, तो हमें इन जानकारियों को बिल्कुल नहीं भूलना है। और जैसे कि डॉक्टर संजय चंदा जी ने बहुत ही उपयोगी जानकारियां आपके साथ साझा की, आंखों की देखभाल के बारे में जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दी है, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की हमारी बातचीत डेफिनेटली पसंद आएगी। श्रोताओं तो आप अपनी आंखों का और भी बेहतर ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड अभी के लिए मैं लेता हूं आपसे जाने की इजाजत, एक बहुत ही बेहतरीन ट्रैक छोड़ के जा रहा हूं। वंस अगेन थैंक यू करना चाहता हूं सीएल गुप्ता आई इंस्टीट्यूट का जिन्होंने इतना इंपॉर्टेंट सेशन हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच वंस अगेन डॉक्टर संजय चंदा जी, आपका भी दिल से थैंक यू। सो गाइस चलिए बाय बाय, टेक केयर, सुनते रहिए आप FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए, फिर मिलेंगे एक और नए सेगमेंट में कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
2: ओहो ना जाने ये खांसी कब पीछा छोड़ेगी।
1: अरे सिर्फ खांसी ही क्यों, अपनी सेहत से जुड़े सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए हर रोज दोपहर 12:30 FM मुरादाबाद का स्पेशल प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। यहाँ आपको मिलेंगे शहर के जाने माने अनुभवी डॉक्टर्स, तो सुनना मत भूलिए हर रोज दोपहर को 12:30 प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए।

0: सभी पार्टियों ने विरोध के तौर पे सर्वदलीय बैठक से वॉकआउट किया, क्योंकि एनसीपीआई मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है। इन कथित 20 बागी सांसदों के विलय को सभापति की मंजूरी नहीं मिली तो किस आधार पे संसदीय कार्य मंत्री ने इन 20 बागी सांसदों को आमंत्रित किया? इसके खिलाफ हमने विरोध दर्ज कर बैठक से वॉकआउट किया।
1: एनसीपीआई के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने सर्वदलीय बैठक का विरोध करने पर विपक्षी दलों की निंदा की। उन्होंने कहा कि एनडीए में एनसीपीआई अब दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है।
2: कभी नहीं देखा ऑल पार्टी लीडर्स मीटिंग में वॉकआउट होता है। मैंने भी डिमांड दिया जो पार्टी का जहां पोजीशन वो दो, एंड हाउस बिलोंग्स टू द अपोजिशन, दे हैड टू बी गिवन चांस, एंड गवर्नमेंट शुड ऑल्सो फील टू रन द हाउस इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट इन आवर हाउस इट हैज बिकम रेगुलर प्रैक्टिस टू डिस्टर्ब द हाउस एंड नॉट अलाउ द हाउस टू रन।
1: आज की सर्वदलीय बैठक से सरकार को उम्मीद है कि सभी राजनीतिक दल संसद की कार्यवाही के सुचारू संचालन में सहयोग करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मॉनसून सत्र से पहले आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। बैठक के दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। बैठक को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के सफदरजंग अस्पताल में चल रहे इलाज में दखल देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि वांगचुक को जंतर मंतर से अस्पताल में भर्ती कराने के सरकार के फैसले को मनमाना नहीं कहा जा सकता। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने कहा है कि वांगचुक को किसी निजी अस्पताल में भेजने की तत्काल आदेश देने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर उनकी हालत पर नजर रखे हुए हैं और उनकी सहमति से ही इलाज किया जा रहा है। न्यायालय में वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगो की उस याचिका पर सुनवाई हो रही थी जिसमें वांगचुक को निजी अस्पताल में भेजने की मांग की गई थी। न्यायालय ने केंद्र सरकार, सफदरजंग अस्पताल और दिल्ली पुलिस से इस मामले में 3 दिन में जवाब देने का नोटिस जारी किया है। श्री वांगचुक को उनकी भूख हड़ताल के 21वें दिन कल पुलिस ने सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉक्टर मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति की पूर्वी यूरोपीय देशों की यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। आकाशवाणी से बातचीत में डॉक्टर महापात्रा ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी।
3: यह किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की पहली यात्रा है। इसी तरह रोमानिया की यात्रा 3 दशकों से अधिक के बाद होगी, तो इस महत्व को देखते हुए यह ऐतिहासिक है। दोनों देशों के बड़े नेताओं के साथ हम अपने मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। हम प्रमुख क्षेत्रों की भी पहचान करेंगे। माननीय राष्ट्रपति के साथ एक व्यापार प्रतिनिधि मंडल भी है। इसी तरह माननीय राष्ट्रपति रोमानिया और मोल्दोवा में उनकी संसद का दौरा करेंगे, जिससे में संसदीय संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
1: सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इस परियोजना का विकास कर रहा है। इसकी कुल लागत 8,000 करोड़ रुपए से अधिक है। यह राजमार्ग खुर्दा, पुरी, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर जिलों से होकर गुजरेगा। इसे सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटन और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों के बीच बेहतर और सुगम संपर्क स्थापित होगा। यह परियोजना स्थानीय लोगों के लिए भी नए असर लेकर आएगी। राजमार्ग के किनारे होटल, होमस्टे, रेस्तरां, हस्तशिल्प बाजार और पर्यटन से जुड़े अन्य कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। यह राजमार्ग 9 आर्थिक केंद्रों और 5 लॉजिस्टिक केंद्रों को भी जोड़ेगा, जिससे ओडिशा का आर्थिक नेटवर्क और मजबूत होगा। समर्थ के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत परिवहन क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 12 पायलट परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत 70 हाइड्रोजन चालित भारी वाहनों को तैनात किया जाएगा और 16 हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन द्वारा इन्हें सहायता प्रदान की जाएगी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये पायलट परियोजनाएं देश भर के कई रणनीतिक मार्गों को कवर करते हुए भारत के राजमार्गों और शहरी परिवहन गलियारों में शून्य कार्बन उत्सर्जन गतिशीलता का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उन 41 रेस्तरां के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है जिन्होंने उपभोक्ताओं से अनधिकृत सेवा प्रभार वसूल किए हैं। इस बारे में प्राधिकरण को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिए शिकायत मिली थी। केंद्रीय उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्राधिकरण ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे अनधिकृत सेवा शुल्क न लगाएं। श्री जोशी ने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 के जरिए ऐसे मामलों की सूचना दी जा सकती है। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ में आज सुबह से ही मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में 11 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग लापता है। सबसे अधिक हताहत और नुकसान पुंछ जिले के सुरनकोट तहसील में हुआ है। राहत और बचाव कार्य जारी है तथा गुमशुदा लोगों की तलाश की जा रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत और सहायता पहुंचाएं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दिल्ली यात्रा बीच में ही छोड़कर आज दोपहर बाद जम्मू वापस चले गए। नागालैंड के मोन जिले में भी मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा में 9 लोगों की मौत हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने कल हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कर्नाटक, रायलसीमा, तेलंगाना, राजस्थान, विदर्भ और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कल बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक के तूफान का भी पूर्वानुमान व्यक्त किया है। अमरीकी सेना ने आज ईरान पर हवाई हमले किए। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इन हमलों में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को निशाना बनाया गया। फुटबॉल के सबसे भव्य मंच फीफा विश्व कप 2026 के रोमांचक फाइनल के लिए तैयार है, जहां आज रात 12:30 बजे न्यूजर्सी में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन की टीम आमने सामने होंगी।
5: अर्जेंटीना फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे सफल टीमों में से एक है, जिसने 3 बार विश्व कप जीता है। लियोनेल मेसी की टीम 1958 और 1962 में ब्राजील के बाद फीफा विश्व कप खिताब का सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बनने की कोशिश करेगी। दूसरी ओर स्पेनिश टीम 2010 के बाद अपना दूसरा फीफा विश्व कप खिताब जीतने के इरादे से उतरेगी। अर्जेंटीना को सबसे अधिक उम्मीदें अपने स्टार खिलाड़ी मेसी से हैं, जो 8 गोल और 4 असिस्ट के साथ टीम का नेतृत्व कर रहे हैं और गोल्डन के प्रबल दावेदार है। लोटारो मार्टिनेज ने 3 गोल और एंजो फर्नांडीज ने 2 गोल करके अर्जेंटीना के आक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मिकेल ओयर्ज़बल इस विश्व कप में स्पेन के लिए 5 गोल के साथ शीर्ष स्कोरर है। रॉड्री ने टूर्नामेंट में सबसे अधिक 648 पास पूरे करके मिडफील्ड में शानदार खेल दिखाया है। दुनिया भर के खेल प्रेमी इस रोमांचक मैच के लिए बेहद उत्साहित है। भारत में भी इस फाइनल मैच के लिए कई तैयारियां की गई है। मेघालय, मणिपुर और केरलम जैसे राज्यों ने देर रात होने वाले इस मैच को देखते हुए सोमवार को स्कूल और कॉलेजों में अवकाश घोषित किया है। राजधानी दिल्ली में भी रेस्तरां, कैफे और अन्य कई प्रतिष्ठान सुबह 4 बजे तक खुले रहेंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: इंग्लैंड ने भारत को लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में 388 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 14वें ओवर में बिना विकेट खोए 78 रन बना लिए हैं। 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कल से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आयोजित की। सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन में 11 लोगों की मौत। नागालैंड में तेज बारिश से अचानक आई बाढ़ में 9 लोग मारे गए। अमेरिका ने जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौत के जवाब में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: गुड इवनिंग,
7: मुरादाबाद
6: में बड़ी आकाशवाणी।
7: स्वस्थलीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
8: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
9: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम है आप सभी का एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने प्यारा सा ट्रैक सुना अरिजीत सिंह जी की खूबसूरत सी आवाज़ में फ्रॉम द मूवी सिटी लाइट से। एंड खुशी भी आ गई है आपका अपना फेवरेट शो लेकर। ओहो, भूल गए हो आप नाम, मैं बता देती हूँ, गीत आपके नाम से कार्यक्रम का नाम है। और ये ब्यूटीफुल ट्रैक अभी आपने सुना मुस्कुराने की वजह तुम हो, उसने दिल को एक प्यारी से स्माइल दे दी है। दोस्तों, जब इतना प्यारा गाना सुनते हैं ना, और कभी कभी जिंदगी में ना कोई इंसान, एक याद या फिर एक एहसास ही हमारी हैप्पीनेस का रीजन बन जाता है। और वही छोटी छोटी वजह लाइफ को ब्यूटीफुल बना देती है। तो बाप की शाम को ब्यूटीफुल बनाने के लिए खुशी भी यहाँ पर आ गई है। मुझे पता है कुछ श्रोता तो अभी अंधविकार में हैं और कुछ अभी कुकिंग करने में बिजी हैं, खाना बनाने में, तो कुछ खाना खाकर आराम से हमारा इंतजार कर रहे थे कि खुशी जी आएंगी, हम फोन लगाएंगी। हाँ, तो लगा सकती हो एवरीवन। कॉल लगाने के लिए नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 9837896896। और वक्त मैं बताती हूँ अभी आपको, यहाँ पर समय हुआ है 9:08। तो जल्दी से कॉल कीजिएगा, तब तक मैं सुनवाती हूँ आपको एक बहुत ही प्यारा सा गाना, उसके बाद करेंगे आपसे भी बातचीत। एवरीवन, मुझे पता है आप भी कॉल लगा रहे हैं, तो चलिए लगाते रहिए, मुझे उम्मीद है कि आपका कॉल जल्दी से लग जाएगा। और सुनिएगा ये प्यारा सा ट्रैक आज की इवनिंग एफएम मुरादाबाद 89.6 पर।

0: बिल्कुल दोस्तों, हम आपको भूल ही नहीं देंगे तो आप कैसे भूलेंगे हमें। हाँ, गुड इवनिंग, वंस अगेन वेलकम बैक, आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर संडे की शाम में। वक्त हुआ है 9:15, खुशी है आपके साथ। और दोस्तों, शो का नाम है गीत आपके नाम से। शाम की खामोशी में जब संगीत घुल जाता है ना, तो हर दिल की धड़कन एक नई कहानी कहने लगती है। उम्मीद है कि आपको ये शो अच्छा लग रहा होगा और शाम मुस्कुराहट हो, सुकून हो, ढेर सारी खुशियों से भर जाए। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। एंड दोस्तों, क्योंकि जिंदगी की सबसे खूबसूरत धुन वही है जो दिल से महसूस की जाए। दोस्तों, ढलती शाम का रंग भी कितना खास होता है ना, हर पल में छुपा एक नया एहसास होता है। तो मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि आपकी मुस्कान से ही हर मौसम खास होता है। और अभी हम बात करते हैं अपने कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुई है। हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी मैम, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम गौरी है, मैं पार्टनर से बात कर रही
0: हूँ। गौरी बात कर रहे
1: हैं
0: जी, बताइएगा।
1: मैं 25 में बात कर रही हूँ, कॉलेज में पढ़ती हूँ, 5th क्लास में।
0: ओके, 5th क्लास में आप स्टडी करते हैं, बताइएगा आज क्या सुनेंगे आप आज की शाम? ये किसकी पसंद का गाना सुनना चाहते हो आप?
1: ये पापा जी पसंद का।
0: अच्छा, आपके पापा जी की पसंद का। ओके, और बताओ, डिनर किया आपने? हाँ जी, अच्छा, ये किसने बताया आपको कि राज मूवी का गाना है, आपको पता है? ओके, चलो ये गाना आपको सुनवाते हैं, थैंक यू कॉल करने के लिए। हाँ हाँ, श्योर। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं ट्रैक फ्रॉम द मूवी राज, उदित नारायण जी। और नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी सॉरी, मिस्टेक हो गई भैया, हम बता देते हैं आपको, अभिजीत और साथ में अलका यानी जी की बड़ी प्यारी सी आवाज़ में प्यारा सा ट्रैक आप सुनने वाले हैं, फ्रॉम द मूवी राज। लौट कर आती हूँ मैं। और आपने क्या आज की शाम राज छुपाए हुए हैं, बताइए हमें। हाँ, फटाफट से कॉल करूँ, नंबर है 9837896896।

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
2: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम। पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
4: कॉल 7500153841।

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। इस खूबसूरत इवनिंग को प्यार, अपनेपन और प्यारे प्यारे गीतों के नाम करते हैं। जहाँ भी हैं मुस्कुराइए, क्योंकि कोई ना कोई आपकी मुस्कान की वजह ज़रूर बनना चाहता है। और अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ में कनेक्ट हुई हैं। हेलो हेलो, हाय, क्या नाम है आपका? इतना स्लो बात कर रहे हो आप, इतना धीरे क्यों बात कर रहे हैं आप? खाना नहीं खाया अभी आपने?
1: मेरा खाना हो गया।
0: अच्छा, फिर इतना धीरे धीरे बात क्यों कर रहे हो? एनर्जी आनी चाहिए ना बॉडी के अंदर। फुल एनर्जी है, लेकिन आवाज़ इतनी स्लो क्यों आ रही है? पता नहीं
1: मैम, ये मेरा फोटो वाला फोन है ना, इतनी आ रही है।
0: ओके, कोई बात नहीं, स्टो के लिए इतनी तो समझ आ रही है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, वो हम सुन पा रहे हैं। डियर, बताइएगा क्या नाम है आपका?
1: मैम, मेरा भी बात
0: है। अच्छा, और बताइएगा कैसे हैं आप? आज तो मौसम बहुत प्यारा था ना?
1: मैम, आज तो मजा ही आ गया।
0: आज पूरे दिन क्या किया आपने, बताओ मुझे। ओ हो, हाँ, पर तो तुमने इंजॉय किया है मिलकर।
1: बहुत अच्छा लगा आज का मौसम।
0: हाँ, आज का मौसम, आज का दिन भी बहुत प्यारा था, है ना? और कैसे कंप्लीट हो गया ये भी नहीं पता चला। अच्छा, ये बताओ आप क्या सुनोगे आज?
1: मैं
0: हाँ बताइए। हेलो,
1: हम सफर चाहिए।
0: अच्छा, हम सफर चाहिए, चलो ठीक है, गाना आपको सुनवा देते हैं। ठीक है, ओके, ज़रूर कॉल करेंगी, सुन रही होंगी तो बिल्कुल। तो चलो एवरीवन, ये प्यारा से गाना सुनते हैं, उसके बाद आपसे भी बात करने के हमें हम आपको मौका देना, तो जल्दी से हमें कॉल लगाइएगा।

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग वंस अगेन, वेलकम बैक। दोस्तों पता है दिल पे छुरियां कब चलती हैं? जब चलती हैं जब हम फोन चार्ज पर लगाते हैं और स्विच ऑन करना भूल जाते हैं और सुबह उठकर फोन को चेक करते हैं, ओहो हो ये तो 1% ही चार्ज है, तब बहुत तकलीफ होती है ना। आप सभी का वेलकम है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है गीत आपके नाम से, खुशी यहाँ पर है आपके साथ। और एवरीवन वक्त मैं आपको बता देती हूँ, 9:37 हो चुके हैं। हमारे साथ एक लिसनर और जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, जानेंगे उनसे। हेलो
1: हाँ जी, मोहम्मद उस्मान साकिबुल्लाह की जारत के पीछे नदी पे से बोल रहा है। मोहम्मद उस्मान
0: जी, उस्मान जी बताइएगा कैसे हैं आप? सो जी बताइएगा कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: अमराज पिक्चर का,
0: हमराज मूवी का कौन सा गाना आपको सुनना है ये तो बताइएगा। अच्छा ठीक है उस्मान जी, सुनवाते हैं ये गाना। आपने कॉल किया उसके लिए शुक्रिया आपका। तो चलिए एवरीवन, हम तो साथ देने के लिए यहाँ पर हैं, अब आपको साथ निभाना है तो कॉल करना होगा हमें। जल्दी से कॉल कीजिएगा, मोबाइल नंबर मैं आपको बता देती हूँ 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और ये प्यारा सा गाना आप सब मिलकर एंजॉय कीजिएगा।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है ZIGG प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। ZIGG करो, स्वच्छता की जिद करो।
2: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
3: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
2: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
3: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
0: मुरादाबाद
2: से संपर्क कीजिए।
3: नियम और शर्तें लागू।
4: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
5: कोई मिल गया,
0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो हाय गुड इवनिंग माय डियर लिसनर्स, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और यहाँ पर अभी वक्त हुआ है 9:47। जी हाँ, 9:47 स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है राइट नाउ। एंड अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गाना सुना, तुम अगर साथ देने का वादा करो मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। और देखिए, हमने तो आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आएंगे, अब आप भी अपना वादा निभाइए, हमें कॉल कीजिए। और बात करते हैं अभी नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ में कनेक्ट हुई है। हेलो, हाय, आपको भी आदाब, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताओ आप कैसी हो?
0: हाँ जी, आई एम हैप्पी, आई एम गुड, आप बताओ।
1: कुछ नहीं थी, बस आपका प्रोग्राम सुन रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, हमने सोचा हम भी कॉल कर लें।
0: बहुत ही अच्छा किया आपने हमें कॉल किया, अपना नाम तो बताइए।
1: दीदी, मैं अच्छा
0: संतोष
1: नामुरादाबाद से अफरोज फातिमा बोल रही हूँ, रेडियो की दीवानी।
0: अफरोज फातिमा, रेडियो की दीवानी, अरे भाई नाम बड़ा ही प्यारा है, रेडियो की दीवानी जो आपने ऐड किया है ना, बहुत ही खूबसूरत है।
1: दीदी, क्योंकि हमें भी मतलब बचपन से हमारे घर पे रेडियो है ना, तो इसलिए हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो हमें बहुत शौक है और हमें बहुत अच्छा भी लगता है रेडियो सुनना।

0: अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आप गाने मतलब सुनने के लिए, रेडियो सुनने के लिए आपने कुछ काम मिस कर दिया और फिर आपको पीछे से मम्मी की आवाज आ रही है कि अभी तक तुम्हें ये काम करने के लिए बोला था? हाँ, पूरे दिन रेडियो में लगी रहती हो, कभी कुछ काम कर भी लिया करो।
1: हाँ दी, ऐसा तो होता है, लेकिन भी मतलब ऐसे डांट तो नहीं पड़ती, क्योंकि
0: हाँ।
1: हम काम के, हम रेडियो के साथ साथ अपना काम करते रहते हैं और रेडियो सुनते रहते हैं।
0: नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है जब अपना फेवरेट शो आता है ना, तो आराम से बैठकर मैं क्या किया करती थी, मतलब अभी भी रेडियो सुनती हूँ, लेकिन पहले जैसे कोई फेवरेट शो आता था हमारा, तो हम वहीं पर आराम से बैठकर सुना करते थे। मम्मी कहती थी बेटा खाना खा लो, उसके बाद आराम से रेडियो को अपने साथ में रख लो। कहते थे नहीं मम्मा, हमें डिस्टर्ब मत करो, हमें सुनने दो ना। वो चीजें
1: हाँ
0: होती थी।
1: हाँ जी, ऐसा मतलब नहीं, ऐसा तो नहीं होता, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, हम मिस कर देते हैं कोई सा शो सुनना, तो मतलब नींद की वजह से सो जाते हैं, तो मतलब इसलिए सुन नहीं पाते, इसलिए
0: हाँ,
1: मिस हो जाता है।
0: लेकिन बाद में उठते हो तो सोचते हो ओहो, ये नींद को भी अभी आना था क्या।
1: क्योंकि मतलब थकान की वजह से नींद आ जाती है,
0: हाँ,
1: तो
0: काम बहुत
1: सोचते
0: ज्यादा
1: हैं,
0: होते हैं ना इसी वजह से।
1: लेकिन सोचते हैं हमने तो मिस कर दिया, पता नहीं किसकी कॉल आई होगी, हमारी दोस्त ने की होगी या नहीं।
0: अच्छा, ये सारे थॉट आते हैं आपके माइंड में ना।
1: हाँ भी आते हैं, कुछ
0: तो आप बताओ, आप क्या कर रहे थे इस वक्त अभी?
1: नहीं, बस दोस्त से बात चल रही थी, वो फिर मैंने दोस्त की बात की, बोली वो लाइव बोली कि चलो आज प्रोग्राम में कॉल करते हैं, वो सब साथ में करेंगे, दरक्षा की भी कॉल आएगी, तो राबिया ने किया भी आपके पास,
0: हाँ जी,
1: दरक्षा
0: हाँ
1: की
0: जी,
1: सिस्टर ने,
0: हाँ।
1: फिर मैंने भी कर लिया, पता नहीं लाइव का कॉल लग पाएगा या नहीं,
0: देखिए,
1: और बस।
0: देखते हैं लक कितना साथ देता है।
1: हाँ दी,
0: बाकी आप बताइएगा, आप क्या सुनना चाहती हो आज?
1: आज मैं सॉन्ग सुनूंगी, इकरार हो ना जाए, इजहार हो ना जाए, ऐसे मौसम में मुझे प्यार हो ना जाए।
0: अरे वाह, गाने बहुत डिसाइड करते हो ना।
1: हाँ दी, जो माइंड में आ जाता है ना, मतलब वही सुन लेते हैं दी, लेकिन मुझे 90s के सॉन्ग बहुत पसंद आते हैं। हाँ,
0: सेम पेंच, मेरे को भी 90s के ट्रैक बहुत अच्छे लगते हैं।
1: बस आज मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, मैंने सोचा ये मौसम जैसा हो रहा है ना, ये सॉन्ग फिट बैठता है।
0: ओके, और बताइए, कोई शायरी वगैरह सुनाना चाहते हो आप?
1: हाँ दी, क्योंकि बिना शायरी के तो अफसोस स्वाति माँ की कोल अधूरी लगेगी ना।
0: हाँ, तो सुनाइए।
1: जी, एक शायरी सुनाना चाहती हूँ।
0: इरशाद।
1: मुझे ये लोग कहते हैं कहाँ तू छोड़ आई हो, मुझे लोग कहते हैं कहाँ तू छोड़ आई हो, न बनती ना सबरती ना कोई बात करती हो, भरी महफिल में भी अक्सर बड़ी चुपचाप रहती हो, बड़ी खामोश रहती हो, उदासी आंख में लेकर, किसी की याद आती है तो ठंडी आंख भरती हो, किसी की याद आती है तो ठंडी आंख भरती हो, तो खुल के क्यों नहीं कहती किसी से प्यार करती हो, तो खुल
0: अरे
1: के
0: वाह, बहुत
1: किसी से प्यार करती हो। जी,
0: खूबसूरत, आपने लिखा है ये?
1: मैंने लिखा तो नहीं है, लेकिन मैंने चुराया जरूर है ये। हाँ
0: लेकिन जिस अंदाज में आपने पेश किया, बहुत ही खूबसूरत था।
1: दी, बस शायरी करने का शौक है दी, ये शौक रखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है शायरी
0: हाँ,
1: करना।
0: आप जो लाइनें रीड करते हो ना, लगता नहीं है रीड करते हो, ऐसा लगता है कि फील करके आप उन चीजों को एक्सप्लेन करती हो, तो बहुत ही अच्छा लगता है।
1: थी, क्योंकि अच्छा लगता है दी, और मेरी दोस्त भी कहती है अफसोस वाकई में बहुत अच्छा, मतलब अच्छी शायरी करती हो, और जब तुम करती हो तो बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा लगता है। एग्जैक्टली राइट।
1: हाँ
0: अब बताइएगा, ये गाना हम आपको सुनवा दें?
1: जी दी, बिल्कुल। थैंक
0: ठीक है, थैंक यू कॉल करने के लिए।
1: यू, बाय बाय।
0: बाय, गुड नाइट, टेक केयर। तो चलिए व्यूवर्स, सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक अफरोज की रिक्वेस्ट पर, और फिर हम आपसे बातचीत करेंगे। आप कहीं मजाइए, यूं ही मुस्कुराइएगा।

0: हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है। और अभी आपने प्यार से गाना सुना अलका जी की आवाज़ में। और जाते जाते बात करते हैं अभी लास्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो हेलो,
1: हेलो गीत, आपके नाम से
0: हाँ जी सर, नमस्कार। क्या नाम है आपका?
1: सबसे पहले खुशी जी को मेरा मोहब्बत भरा नमस्कार।
0: जी आपको भी नमस्कार सर, अपना नाम बताइएगा।
1: मैं जिला रामपुर ग्राम जहांगीरपुर से आपके नाम सौदा मोहम्मद इशरत आप साथ कर रहा हूँ।
0: जी बताइए इशरत जी, कैसे हैं आप?
1: मैम बहुत अच्छे हैं। प्रोग्राम सुन रहे थे आप, चार चांद लगा रही थी प्रोग्राम में, तो मैंने सोचा कॉल लगा ली जाए। आज के दिन में मेरी लास्ट कॉल थी और आज भी काफी अच्छा लग रहा है।
0: जी बताइएगा आप क्या सुनेंगे सर?
1: मैम आज बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, तो है 17-18 साल की। मैम आज के सॉन्ग में यारा सॉन्ग प्ले कर देना।
0: ठीक है सर, सुनवा देते हैं गाना। शुक्रिया आपने कॉल किया हमें।
1: थैंक यू, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, मोस्ट वेलकम आपको भी। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं ईश्वर जी की पसंद पर गाना। और अभी मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति। मैं मिलूँगी आपको सेम टाइम सेम जगह टुमारो मॉर्निंग। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल और यूं ही मुस्कुराते रहिए, अपनों के साथ रहिए, इंजॉय कीजिएगा हर एक पल को, हर एक मोमेंट को। एंड जिंदगी बहुत प्यारी है। गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि, शब खैर, शुभ खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट, बाय बाय।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: आइए आप भी भागीदार बनिए, वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 से जुड़िए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
2: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।

जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

0: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
1: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में
1: चाहे फार्मेसी हो मैनेजमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी लॉ एग्रीकल्चर साइंस एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077

0: कर यार, नाटक ना कर, नच ना यार, नच ना।
1: अरे अरे छोड़ो यार, मैं नहीं नाचूंगा वाचूंगा।
2: ओए पुत्तर नच ना, भैन की सगाई च भाइनू नचना ही पैंदा है।
1: हाँ हाँ, तो फिर बड़े भैया को नचाओ ना।
3: क्यों, तेरी भी तो भैन है।
4: ए गल चंगी बोली।
5: ओ कम ऑन शेखर, नाचो ना।
1: नहीं नहीं, मुझे नहीं नाचना।

0: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
1: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में
1: चाहे फार्मेसी हो मैनेजमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी लॉ एग्रीकल्चर साइंस एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077